श्रोताओं, आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। अनुमान है कि आज बारिश हो सकती है और आसमान हालांकि बहुत हद तक साफ रहेंगे, पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं बात करें अधिकतम तापमान की, तो अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95 प्रतिशत और दोपहर में 50 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। यह है मौसम का हाल, मौसम का मिजाज। आप आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। श्रोताओं, आइए अब सुने एक भजन।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: You choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under ₹1 per km. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
3: Nexa.
4: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। और कार्यक्रम में श्रोताओं, हमने बहुत सी बातें की हैं और बहुत सारे भजन भी सुने। और अभी इस अंतराल के पहले जो आप भजन सुन रहे थे, उस भजन को लिखा था तुलसीदास गोस्वामी ने और भजन आपने सुना सुशील ठाकुर के स्वर में। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सी ट्रेन सही समय से चल रही है, कौन सी ट्रेन लेट है। जी हाँ, ट्रेन संख्या 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस सुबह 7:50 पर भागलपुर से रवाना होगी। 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस 7:45 पर भागलपुर आएगी। 12368 आनंद बिहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस 8:15 पर भागलपुर पहुंचेगी। 15658 ब्रह्मपुत्र मेल अपने निर्धारित समय से 3 मिनट की देरी से चलते हुए 8:08 पर भागलपुर आएगी। 53416 बिल्कुल सही समय पर, यानी कि 8:37 पर जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर भागलपुर आएगी। 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस बिल्कुल अपने सही समय से, यानी कि 9 बजे भागलपुर पहुंचेगी। 12253 यशवंतपुर भागलपुर अंग एक्सप्रेस अपने सही समय से चलते हुए 9:20 पर भागलपुर आएगी। 63431 साहिबगंज जमालपुर मेमू 9:15 पर भागलपुर आएगी। 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी बिल्कुल राइट टाइम है, ये 9:35 पर भागलपुर आएगी। 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी अपने सही समय से चलते हुए 10:15 पर भागलपुर आएगी। 12367 भागलपुर आनंद बिहार विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय यानी कि 11:55 पर भागलपुर से रवाना होगी। ये था ट्रेनों का हाल, ट्रेनों का मिजाज। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं संस्कृत वार्ता विदेशु वर्षा वर्जनम। वार्ताकार हैं डॉक्टर रतीश चंद्र झा।
5: वेदेशु वर्षा वर्णनम जनजीवने वयं पश्यामः सर्वत्र प्रदूषितं वारि बहति ओषजनं न तत्र दृश्यते न वा आपः शिवाः शिवतमाः कुर्वन्तु वो भेषजं यथा वेदवर्णितं विद्यते नगरेषु मूत्रपुरीशं सर्वं प्रणालिकासु वहति औद्योगिकपरिसरेषु दूषितं विषमयं सर्वं प्रदूषणं जले वहति अतः सर्वं विषमयं जलं दुर्गंधं वहन् जीवजन्तूनां विनाशं समाचरति जले यत् ओषजनं वायुः सान्द्रीभूतम् आसीत् पूर्वं तत् नष्टमिव प्रतिभाति अतः नदीषु स्नानं व्यर्थीभूतं जातं नदीषु दूषितपदार्थानां संगमं केवलं विषवर्धनं समाचरति राष्ट्रचिन्तकाः विपश्चितः वैज्ञानिकाः जलस्य परीक्षणं कृत्वा सर्वकारान् नगरप्रशासकान् सूचयन्ति च यत् यन्त्रागारनिःसृतं दूषितवारि परिशोधनव्यवस्था करणीया। परम् अहं तु मन्ये यत् वेदेषु ऋषिभिः वृष्टिकरणाय यादृशी व्यवस्था अङ्गीकृता आसीत् जया व्यवस्थया वृष्टिः भवति स्म तादृशी व्यवस्था अधुनापि करणीया विद्यते। ऋषिभिः कथितं वेदे काले पर्जन्यः वर्षतु प्रयोजनानुसारं मेघः वर्षतु इत्यर्थः। इदानीं यत्र तत्र धूमोद्गारिभिः यन्त्रशालाभिः विषाक्तानि वातानि सृज्यन्ते यत् वायुमण्डलं भिनक्ति। वैज्ञानिकाः चिन्तयन्ति यत् वायुमण्डले विषमीभूते सर्वत्र जीवनचिन्ता विषमा स्थास्यति। तापाधिक्यात् प्रकृतौ वैषम्यं जायते। भूमण्डलस्य जैविकी परिस्थितिः वैषम्यं यास्यति। तापमण्डले विषमतां जाते चैतन्यलोको यत् सूर्यात् आप्नोति तद् विनश्येत। तस्य संरक्षणं वर्षाजलेन भवितुमर्हति। ऋग्वेदे यजुर्वेदे च ऋषिः वदति सन्नो मित्रः शं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः सन्नो वातः पवतां सन्नस्तपतु सूर्यः सन्नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्योऽभिवर्षतु। एषा कल्याणकामना समेषां प्राणिनां कृते वेदे प्राप्नोति यत्र वर्षावर्णनं स्पष्टतरं विद्यते। पर्जन्योऽभिवर्षतु इत्युक्त्वा वृष्टिप्राप्त्यर्थं स्तुतिः प्रयुज्यते। यत्र पृथिव्यवायुतेजो नभो मण्डलेषु वर्तमानेषु देवेषु स्तुतिः प्रयुज्यते तत्र जलमण्डले आपः वरुणः द्यावा पृथिवीदेवाः सन्ति। यज्जलं वयं व्यवहरामः तत्तु जलस्य स्थूलावस्था विद्यते। तात्विकरूपेण

0: ऋतम प्रशस्ति भी रस्वा भवथ बाजिनोह गावो भवथ बाजिनीह अपांग स्वभाव सोम रूपी वर्तते। अतः सौम्या आपह भवन्ति ताह मलंग वाहयन्ति विलायकाः मलस्य भवन्ति च अतः तासाम प्रयोगः आधुनिके युगे मलवाहकत्वेन प्रचुरतरं क्रियते। येन सर्वत्र जलानि दूषितानि जीवाणु विषाणु संसिक्तानि दृश्यन्ते ओषजन प्राणवायो तस्मात् निर्गते न तत्र जीवा जायन्ते वर्धन्ते च किन्तु दूषित जलपानेन स्वास्थ्यं नश्यति स्नानेन शरीरं क्लिन्नं रुग्णं च जायते। औद्योगिक यन्त्रालयेभ्यः निःसृतं मलिनं जलं कथं शिवत्वं वहतु नास्ति चिन्तात्र व्यवसायिभ्यः उद्योगपतिभ्यो धुना। सर्वकारा अपि उदासीनास्तिष्ठन्ति तत्र जले प्रदूषणाधिक्यं दृष्ट्वापि विभीषिका महती सुरसा इव वर्धमाना दृश्यते। अस्माकं वेदे वरुणपूजनं कलशपूजनं प्रपास्थापनं कूपनिर्माणं सेतुप्रणालिकानिर्माणं धर्माय सम्पाद्यते। तत्र सर्वत्र वृष्टिकरणाय प्रार्थना विद्यते वर्षाजलं दुरितापहं विद्यते। ऋषिः वदति इदमापह प्रवहता वद्यं च मलं च यत् यच्चाभिदुद्रोहान्द्रितं यच्च शेपे अभीरुणम् आपोमा तस्मादेन सह पवमानश्च मुञ्चतु। जदहमनृतम् उक्त्वा आक्रोशेन शापितवान् अस्मि मां तस्मात् पापात् वर्षाजलं मुञ्चतु इत्यर्थः। अतः अद्भ्यः हविर्दीयते अपो देवी उपहुवये यत्र गावः पिबन्ति नः सिन्धुभ्यः कर्त्व हविः। हविषा तृप्ताः मेघाः वर्षन्तु अस्मभ्यं कृते समुत्यन्तु प्रदिशो नभस्वतीः समभ्राणि बातजूतानि यन्तु। सह ऋषभस्य नदतो नभस्वतो वाश्वा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु। महान्तङ्को समुदचाभिषिं च सविद्युतं भवतु वान्तु वाताः तन्वतां यज्ञं बहुधा विसृष्टा आनन्दिनी रोषधयो भवन्तु। वृष्टेरनन्तरं जलं हिमाद्रेः हिमश्रवणात् जायन्ते निर्झरेषु नदन्ति नदीषु वहन्ति सरोवरेषु तिष्ठन्ति कूपेभ्यः उद्गच्छन्ति च। आपः सृष्टिकल्याणाय वर्तते परमात्मापि जलमेव ससर्ज आदौ तासु बीजमवासृजत् आपो वत्सं जनयन्ती गर्भमग्रे समैरयन् तस्योत जायमानस्योल्व आसीद् हिरण्मयः। वृष्टिप्राप्तये अस्माभिः प्रयतनीयं देवमात्रिकम् अदेवमात्रिकं वा भारतं सर्वथा रक्षणीयम्।
1: दोस्तों अभी आपने सुना संस्कृत वार्ता। वार्ता का विषय था वेदेशु वर्षा वर्जनम। वार्ताकार थे डॉक्टर रतीश चंद्र झा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रेडियो होस्ट उमा। और दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ गीतों को सुनते हैं। गीतों के बाद हम कार्यक्रम में बहुत सी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और आइए ईश्वर से प्रार्थना करें। उनसे कहें कि हमारे और हमारे अपनों का कष्ट हरें क्योंकि ईश्वर ही तो हमारे पालनहार हैं। वो हमारी विनती नहीं सुनेंगे तो भला कौन सुनेगा।

ईश्वर के बिना हमारे इस जीवन में हमारा और कोई नहीं होता, और कई बार तो हम स्वयं अपना साथ भी छोड़ने लगते हैं। परंतु अगर ऐसे समय में भी जब विपत्ति बहुत गहरी हो और हमें हमारा साथ भी छोड़ने की इच्छा होने लगे, तब अगर ईश्वर पर हमारा विश्वास हो तो धीरे धीरे अपने कर्मों को आगे बढ़ाते हुए, सच्चे रास्ते पर चलते हुए, हम अपने आप पर विश्वास भी पाने लगते हैं और अपना साथ भी निभाने लगते हैं। और श्रोताओं, हमें एक बात तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत ज़रूरी है कि हम खुद पर विश्वास सबसे पहले रखें, खुद का साथ सबसे पहले निभाएं, उसके बाद ही ईश्वर आते हैं, उसके बाद ही दुनिया की और चीज़ें आती है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, सही रास्ते पर चलें, और साथ ही जानकारियों से परिपूर्ण रहें। जिनके पास जानकारियां हैं उनमें आत्मविश्वास भी एक अलग तरह का होता है। आइए कुछ जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं और जानते हैं कि आज के दिन, आज के इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं दर्ज हुई हैं। उससे पहले वर्तमान का हाल। वर्तमान में 7:39 हुए हैं और दिन है आज सोमवार का, तारीख है 13 जुलाई 2026। हालांकि आइए अब जानते हैं कि 13 जुलाई को अलग अलग वर्षों में क्या कुछ घटित हुआ है। आज ही के दिन 1803 में राजा राम मोहन राय और एलेक्जेंडर डफ ने 5 छात्रों के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज शुरू किया था। 1905 में कलकत्ता के साप्ताहिक समाचार पत्र संजीवनी ने ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव दिया था। क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ ने अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की 1929 में। 1977 में भारत सरकार ने भारत रत्न सहित अन्य नागरिक सम्मानों को वापस लेने की घोषणा की थी। 1998 में भारत के लिएंडर पेस ने हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप में अपने जीवन का प्रथम ATP खिताब जीता। ब्राज़ील ने CTBT एवं NPT पर हस्ताक्षर किया 1998 में। सन 2000 में फिजी में महेंद्र चौधरी समेत 18 बंधक रिहा किए गए। साल 2001 में वर्ष 2008 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी चीन बीजिंग को सौंपी गई।

साल 2004 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साइबेरिया और देश के सुदूर पूर्ववर्ती इलाकों के विकास के लिए भारत से और मजबूत संबंधों की इच्छा जताई। परमाणु बम निर्माण संबंधी ईरान मसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सुपुर्द किया गया था साल 2006 में। अमेरिका में ग्रीन पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व डेमोक्रेट सिंथिया मैकिनी को अपना उम्मीदवार बनाया साल 2008 में। अब बात उन व्यक्तियों की जिनका आज के दिन निधन हो गया था। आज ही के दिन 1995 में आशापूर्णा देवी का निधन हो गया। आशापूर्णा देवी एक उपन्यासकार थीं। यशपाल शर्मा इस दुनिया को छोड़ गए 2021 में। यशपाल शर्मा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जो 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे। अब बात उन व्यक्तियों की जिनका आज है जन्मदिन, जो आज अपना जन्मदिन मना रहे होंगे। 1947 में जन्म हुआ था उस्ताद देबो का। उस्ताद देबो विश्व प्रसिद्ध भारतीय समकालीन नर्तक और कोरियोग्राफर थे। 1941 में जन्मी सुनीता जैन हिंदी और अंग्रेजी की आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकार हैं। 1933 में जन्म हुआ था भीष्म नारायण सिंह का। भीष्म नारायण सिंह भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो असम और मेघालय के राज्यपाल भी रहे थे। बीना राय का जन्म हुआ था 1932 में। बीना राय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। केसरबाई केरकर पद्म भूषण से सम्मानित भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका। इनका जन्म 1892 में हुआ था। ये थे आज के इतिहास पन्नों की कुछ बातें, क्या कुछ आज के इतिहास में घटित हुआ था। आइए अब सुनते हैं ABCD फिल्म का ये गाना।

0: गणपति पप्पा मोरिया के दर्शन में जो सुकून है वो कहाँ कहीं और होता होगा। और कहते हैं कि जब हम गणपति पप्पा की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हें रिद्धि सिद्धि के दाता कहा जाता है, उन्हें बुद्धि का दाता कहा जाता है। और सबसे अहम बात जो आज के दौर में है वो यही है कि हमारे पास बुद्धि तो है पर सही बुद्धि नहीं है। आसपास आप ऐसे बहुत सारी बातें सुनेंगे, बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलती होगी, जानने को मिलती होगी, जहाँ लगता होगा कि अगर सही बुद्धि का इस्तेमाल किया होता, सही रास्ते पर चले होते, सही रास्ता चुना होता तो कहानी कुछ और होती। आज के दौर में सबसे अहम है कि हम सही रास्ते पर चलें, और सबसे कठिन भी है सही रास्ते पर चलना। लेकिन रास्ता वो कहाँ अच्छा होता है जो आसान हो पर किसी को नुकसान पहुँचाने वाला हो। कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे। अपनी सही बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, तभी आपकी भक्ति, आपकी अर्चना भी सफल होती है। ईश्वर हमारे अंदर ही हैं। हमारे अंदर के ईश्वर को थोड़ा जागृत कीजिए, सही रास्ते को चुनिए और अपनी तरफ से किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए। आइए हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अंतराल लेते हैं। अंतराल के उस पार हम एक बार आपके साथ फिर से होंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: You choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under ₹1 per km. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
3: Nexa.
0: अपने वादे के अनुसार एक बार फिर से एक छोटे से अंतराल के इस पार हमें आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। और कार्यक्रम में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हमने इतिहास के पन्नों को पलटा, अब जानते हैं कि वर्तमान में हमारे देश दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है, यानी कि समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानते हैं कि क्या कहती है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियाँ। अमरनाथ देश की पहली धार्मिक यात्रा होगी जहां कोई कचरा नहीं फैलेगा। खच्चरों के गोबर से बनेगी बायोगैस, प्लास्टिक कम करने को वाटर ATM लगे, वैज्ञानिक वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा। लर्निंग आउटकम यानी क्लास में सीखने में पंजाब ने केरल और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा। स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास, खेल खेल में पढ़ाई और प्रैक्टिकल को बढ़ावा, तब नंबर 1 बना पंजाब। बिहार में पत्थर खनन होगा, 2300 करोड़ राजस्व मिलेगा। यूपी झारखंड पर निर्भरता खत्म होगी, सीएम ने बांका समेत 6 जिलों में 44 नई खदानों को दी हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने दी मुजफ्फरपुर में 1,047 करोड़ की योजनाओं को सौगात। MIT में बनेगा आर्किटेक्चर फंड, सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय। 7 IAS व बिहार प्रशासनिक सेवा के 45 अफसरों का तबादला, रंजो भागलपुर की DDC बनी। युद्ध तेज, ईरान ने 5 खाड़ी देशों पर ड्रोन दागे। होर्मुज में हमला गलत, भारत ने कहा। होर्मुज बंद जहाज पर हमला, 1 भारतीय लापता, 10 बचे। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ट्रंप के करीबी सीनेटर ग्राहम की अचानक मौत। समस्तीपुर में चकोटी मठ से राम जानकी की अष्ट धातु की मूर्तियां चोरी हो गई। फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें तो अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में से इस बार कोई एक होगा चैंपियन। पहली बार वर्ल्ड रैंकिंग की टॉप चार टीम में एक साथ सेमीफाइनल में। अर्जेंटीना कभी सेमीफाइनल नहीं हारा। स्पेन 36 मैचों से अजय रहा है। 15 जुलाई को 12:30 पर फ्रांस स्पेन के बीच मैच होगा और 16 जुलाई को 12:30 पर इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मैच होगा। आपको बता दें 15 जुलाई को 12:30 पर सुबह और 16 जुलाई को भी 12:30 पर सुबह ये मैच होंगे। हैदराबाद के बाल योगी एथलेटिक्स स्टेडियम में महाराष्ट्र को 38-5 से हराकर जीता स्वर्ण। फाइनल में रोनित ने बनाए 12 अंक। भागलपुर के खिलाड़ी ने दिलाया गोल्ड। नेशनल रग्बी में लहराया परचम। एक सप्ताह में गंगा 2 मीटर चढ़ी। गंगा किनारे बसे गांवों में सतर्कता। 24 घंटे में एफआईआर अपलोड करना है हकीकत। 24 दिन बाद भी नहीं हो रहा। जिले के ज्यादातर थाने तय समय में एफआईआर अपलोड करने में है फिसड्डी। रीजनल कराटे प्रतियोगिता में भागलपुर जोन को 21 पदक। गोराडी में नवस्थापित डिग्री कॉलेजों का 15 को होगा उद्घाटन। डीएम ने निरीक्षण किया। 15 को गोराडी के कासिल गांव में होगा कार्यक्रम। मुस्तैद हुआ प्रशासन। अस्पतालों में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट की होगी जांच। आज से 16 तक मॉक ड्रिल होगा। सेंडिस व लाजपत पार्क में शौचालय में ताला। कहीं टोटी गायब तो कहीं यूरिनल में उगे पौधे। दोनों मैदानों में मार्किंग वॉक करने वालों की बड़ी परेशानी। प्याऊ में पानी नहीं तो शौचालय भी बदहाल। टीएमबीयू का 67वां स्थापना दिवस। पूर्व कुलपतियों ने कहा विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी। टॉपर छात्र छात्राओं, विभाग के अध्यक्ष, प्राचार्य और सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मियों को सम्मानित किया गया। टीएमबीयू में स्नातक सेमेस्टर 1 की चौथी मेरिट लिस्ट की तैयारी। नए आवेदन के साथ विषय बदलने का भी मौका मिलेगा। मेरिट लिस्ट के बाद होगी ऑन स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया। JLNMCH में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को लिखा पत्र। जर्जर हॉस्टल में रहने की मजबूरी, छात्रों के लिए हॉस्टल की कमी है। शिक्षा विभाग के कर्मियों की छुट्टी पर 15 जुलाई तक रोक। लेट लतीफी, हल्की बारिश में ही कांवरिया पथ पर मिट्टी बह गई। कंक्रीट के टूटे बेंच की मरम्मत नहीं। डीएम ने 10 जुलाई तक सभी काम पूरा करने का निर्देश दिया था। अब

0: सड़क पर जल जमाव परेशानी। ग्रामीणों ने कहा अफसरों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं। राज्य में हेली टूरिज्म आज से शुरू। पर्यटन विभाग के पोर्टल पर टिकट बुकिंग शुरू होगी। बिहार हेली एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आरंभ करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा के नीरज और जनसुराज से पीके आज नामांकन करेंगे। इस सप्ताह एसबीआई एफएम समेत 11,989 करोड़ के आईपीओ। बिटकॉइन में अंधाधुंध तेजी के दौर खत्म होने के संकेत। प्रतिबंध बेअसर। रूस ईरान ने क्रिप्टो में 9 करोड़ 92 लाख रुपए का कारोबार किया। प्रतिबंधों की काट, समांतर बैंकिंग सिस्टम खड़ा किया। उत्तर कोरिया में क्रिप्टो चोरी से 20,000 करोड़ जुटा हथियार खरीदे। ईरान ने सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज का सुप्रीम लीडर के घराने से संबंध। भक्ति के रंग में रंगा पुणे। संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम महाराज की पालखी यात्रा। दिक्कत, बैंक ने बुलाकर समझाया पर नहीं माने। अयोध्या में चढ़ावा गिनने वाले नाराज, 12 ही मंदिर पहुंच रहे। मानसून की वजह से उत्तराखंड में भूस्खलन से 2 हाईवे 126 सड़कें बंद। बंगाल और यूपी समेत 18 राज्यों में आज बारिश का रेड अलर्ट। फॉर्चून इंडिया 2026 की मोस्ट पावरफुल वुमेन की सूची जारी। नीता अंबानी शीर्ष पर पहली बार, प्रिया नायर 73वें स्थान से टॉप 10 में पहुंची। अब बात खेल जगत की। महिला टेस्ट में लॉर्ड्स पर शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी यस्तिका की यादगार सेंचुरी। टेनिस में वर्ल्ड नंबर 1 सिनर ने 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से जीता फाइनल। विंबलडन सिनर ने बचाया टाइटल। भारत के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट होगा आखिरी मैच। इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक 320 मैच खेलने वाली हीथर नाइट का संन्यास। 19 वर्षीय स्पिनर विटल लेविस के पहले सीनियर मैच में 3 विकेट। ये थे आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब समय का हाल कह रहा है कि हमें इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहिए। श्रोताओं, उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुने कुछ जरूरी संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
1: ओ, 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
0: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। आइए अब सुने दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और खबरनामा। श्रोताओं, आपको बता दें खबरनामा के थोड़ी ही देर बाद आप पटना केंद्र से सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया इन समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जला

0: है उसे गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
2: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिस कर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
3: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण में एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो एआई आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री दहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रुपए, राजगीर के लिए 4000 रुपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रुपए और कैमूर के लिए 6000 रुपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
7: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़, पर अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज. गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार. द हेडलाइंस. Two new anti-crime laws passed by West Bengal Assembly come into force in the state today. ISRO successfully carries out three major tests of Gaganyaan crew module systems. Five Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number one rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And now the news in detail. In West Bengal, two new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor R.N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
9: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odhikari has earlier stated that violence or disruption of public order in the name of protest will not be tolerated. He also expressed hope that the new law will play an important role in ensuring the safety and security of women and children. Sandeep Dasgupta, Akashvani News, Kolkata.
8: The Indian Space Research Organization says it has successfully carried out three major tests of the Gaganyaan crew module systems. More from a correspondent.
10: The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. To do this, a stored cold gas-based uprighting system was developed and tested. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism that serves as a link between the crew module, where astronauts live, and the service module, which provides power and propulsion. The third test validated the structural integrity of the crew modules during the apex cover separation event. Yashasvi Kiryal, Akashvani News, Delhi.
8: Five Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from 4th to 12th of this month. With the exceptional performance, India reaffirmed the growing stature in science education and excellence at the international level. We have a report.
2: Delivering an extraordinary performance at the 56th International Physics Olympiad, these young physicists have brought immense pride to the nation. The gold medal winners are Kanishk Jain from Pune, Siddhesh Anand Bendale from Indore, Rishit Garg from New Delhi, Shrey Suraya from Mumbai and Swarit Joshi from Ahmedabad. With this achievement, India secured the first position jointly with Russia, China, Kazakhstan, South Korea and Taiwan among three students from 87 countries. The achievement reflects the strength of India's Olympiad program, spearheaded by the Homi Bhabha Center for Science Education, which is a national center of the Tata Institute of Fundamental Research. With Anand Kumar, Swamya Sharan for Akashwani News, Delhi.
8: Union Home Minister Amit Shah is scheduled to attend the inaugural ceremony of the 11th Interpol Digital Forensic Expert Group meeting alongside the first international investigators crime competition and summit at the National Forensic Sciences University campus in Gandhinagar today. Our correspondent reports that the prestigious global forum will have participation from top dignitaries, including Chief Minister Bhupendra Patel and law enforcement delegates from 47 countries.
3: During the event, Mr. Shah will unveil three pioneering centers of excellence focusing on AI-powered financial crime investigation, crime scene management, and India's first media forensic center. He will also launch Asia's first indigenous cyber forensic investigation van, a Make in India mobile laboratory capable of real-time on-site evidence recovery. A major highlight of this event is the high-tech exhibition featuring cutting-edge cybersecurity tools from over 30 global giants including Google and Cellebrite. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
8: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Defence Minister Rajnath Singh, Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, will inaugurate the Lucknow-Kanpur Expressway today afternoon. They will inspect the expressway and inaugurate it at kilometre 49 in Unnao. A report.
5: 63-kilometre-long, 6-lane Lucknow-Kanpur Expressway with India's second-longest elevated corridor is also country's first expressway built with automated and intelligent machine-guided construction technology. Equipped with AI-based speed enforcement, emergency call boxes at every 2 kilometres and two integrated 24/7 control rooms, the expressway is designed for speeds of up to 120 km per hour and is expected to reduce travel time between Lucknow and Kanpur to just 35 to 40 minutes. A car journey between the two cities will cost ₹275 and two-wheelers are not allowed on it. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
8: Efforts to accelerate investment in Madhya Pradesh is gathering pace as a major event is being held in Bhopal today. It will attract leading technology companies, investors, startups, industry bodies and educational institutions from India and abroad. Our correspondent has filed this report.
4: The MP Tech Growth Conclave 3.0 will be held in Bhopal today. Chief Minister Dr. Mohan Yadav will inaugurate the event. The main focus of the conclave is to promote investment in global capability centers, data centers and the semiconductor sector. The Chief Minister will also share the state government's vision for technology-based industrial development. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
8: In Bihar, heli and air tourism services are being launched today. Chief Minister Samrat Chaudhary will inaugurate it from Patna. In the first phase, the destinations included under the initiative are Valmiki Nagar in West Champaran district, Ma Mundeshwari in Kaimur district and Rajgir in Nalanda district. More from a correspondent.
11: The service will be operated jointly by the Department of Tourism and Department of Civil Aviation. From today, people can make bookings online. Under the scheme, with financial support from the state government, tourists can book tickets at subsidized rates. The state government will provide a subsidy of up to ₹15,422 per ticket. The helicopter tourism service will commence on 18th July and will operate every Saturday and Sunday. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
8: The India Meteorological Department has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days and isolated heavy falls over east Uttar Pradesh during 4 to 5 days. Fairly widespread to widespread rainfall is likely over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura till the 18th of July. The weatherman said subdued rainfall activity is likely over the plains of northwest, west central and over south peninsular India during next 6 to 7 days. The United States has launched a fresh round of military strikes against Iran. U.S. Central Command, CENTCOM, said the operation is intended to further degrade Tehran's ability to target civilian mariners and commercial vessels transiting the Strait of Hormuz. In a post on X, CENTCOM said the strikes were carried out on the direction of the commander-in-chief to hold the Iranian forces accountable. The latest strikes come amid heightened tensions in the Gulf region. According to Iran's press TV, three explosions were heard in the southern Iranian cities of Jask, Bandar Abbas and Sirik following the U.S. strikes. U.S. President Donald Trump asserted that Strait of Hormuz remains open to commercial traffic, dismissing Iranian claims of control. He also signaled a complete collapse of recent diplomatic efforts with Iran, revealing that a tentative agreement with Tehran has been shattered by Iranian military strike against commercial vessel. Meanwhile, New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said in a statement that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. In Thailand, at least 27 people have been killed in a fire that tore through a bar in Bangkok. The deceased include 9 men and 18 women. More than 60 people are being treated in hospital. Firefighters were called to the scene just after midnight last night and discovered patrons fleeing through the flame-enveloped front door of the venue. On to sports. In tennis, top seed Italy's Jannik Sinner retained his Wimbledon men's singles title, beating second seed Germany's Alexander Zverev 6-7-7, 7-6-2, 6-3, 6-4 in the final at the All England Club London last night. This is Sinner's second consecutive Wimbledon men's singles title and his fifth Grand Slam crown. Sinner became the 10th player to successfully defend the Wimbledon men's singles title. England will resume their second innings from 130 for 6 in the historic one-off women's test at the Lord's against India this afternoon, resuming the penultimate day with an overall lead of 269. India declared their second innings at 341 for 7 at the stroke of tee. Wicketkeeper batter Yastika Bhatia became the first woman to score a test century at Lord's. In our bilingual live phone-in program, Public Speak, at 9:30 tonight, we will bring you an insightful discussion on significance of rainwater harvesting for water security and groundwater recharge with Archana Verma, Additional Secretary and Mission Director, National Water Mission. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2331-0481 and 011-2371-7117 onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044 or post your questions on X with the hashtag AskAIR. And now, before a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
12: Thank you, Anuja. All the dailies have reported about the re-escalation of the US-Iran crisis and an Indian seafarer missing as a ship hits in Hormuz. The Times of India writes, MEA condemns attack on tanker off Oman coast. 11 Indians rescued, one missing. The Tribune mentions the Joint Parliamentary Committee's recommendation for suspension, not removal of PMCMs after 30 days in jail. To make a presentation on the road ahead, CDS may soon present theatrization strategy, states in the Sun Times. An editorial with the headline, Needed a New Deal in the Tribune, writes about India requiring an initiative like the Manhattan Project where best minds are put together. It refers India's private sector, if given the proper environment, is more than capable of being globally competitive. Foreign investors set to get a faster arbitration route with country-specific flexibility likely in new bilateral investment treaty taking shape, cites Financial Express. Coach Mitra app to track boarding, railway roadmap and counselling to improve passenger behaviour, reports the Indian Express. Small towns beat big cities in rooftop solar adoption, cites the Times of India. And finally, in a first-of-its-kind project, Washington may soon house India's story through immersive technology, writes the Pioneer, presenting India's contributions of its journey from Indus Valley civilization to a nation on the rise to the global audience. And with that, it's back to you, Anuja.
8: Thank you, Shagun. And in news just in, the mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam will be repatriated from Ho Chi Minh City to India today via Vietnam Airlines flight VN979. The Indian Embassy in Vietnam in a social media post said that the flight is scheduled to depart from Ho Chi Minh City at 6 p.m. local time and is expected to arrive at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport at 9:35 p.m. Indian Standard Time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two new anti-crime laws passed by West Bengal Assembly come into force in the state today. ISRO successfully carries out 3 major tests of Gaganyaan crew module systems. 5 Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number 1 rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Jannik Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कवानीन मंजूर किए थे वो आज से रियासत भर में लागू हो गए हैं। इसरो ने गगनयान अमले के मॉड्यूल निजाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलाक्वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं और यानिक सिनर ने अलेक्सेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन मर्दों के सिंगल्स का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो 3 कवानीन मंजूर किए थे वो रियासत में आज से लागू हो गए हैं। रियासत के गवर्नर ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इस साल जून में मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के हंगामी बिलों को मंजूरी दी थी। इन कवानीन में मगरबी बंगाल अवामी हिफाजत और समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतालिक बिल 2026 और मगरबी बंगाल में नज्म व नसक बरकरार रखने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 शामिल है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल अवामी हिफाजत और समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतालिक कानून 2026 के तहत समाज मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कोई शख्स या वो शख्स जो मुस्तकबिल में इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस हो सकता हो उसे रोकथाम के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। इस तरह के किसी भी शख्स को ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। रियासती सरकार ने कहा है कि इस नए कानून से समाज मुखालिफ सरगर्मियों, फसादात, पुलिस अमले पर हमलों और मुनज्जम जराइम की रोकथाम के लिए फौरी और सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। वज़ीर आला सुविंदु अधिकारी ने इससे पहले कहा था कि मुजाहिरों के नाम पर तशद्दुद या अवामी नज़्म व नस्क में रखना अंदाजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि यह नया कानून ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा करेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलाक़वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। ये मुकाबले कोलंबिया के बुकारामांगा शहर में इस महीने की 4 से 12 तारीख के दरमियान मुनाकिद किए गए। ये गैर मामूली कारकर्दगी अंजाम देकर बैन अलाक़वामी सतह पर साइंस की तालीम और महारत के मैदान में भारत ने एक बार फिर अपने बढ़ते हुए कद का मुजाहरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: तबियात के 56वें बैन अलाक़वामी ओलंपियाड में इन नौजवान माहिरीन तबियात ने इस गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। तलाई तमगा जीतने वाले इन नौजवानों के नाम हैं पुणे के कंशिक जैन, इंदौर के रिधर्श आनंद बंदाले, नई दिल्ली के ऋषि गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सूर्या और अहमदाबाद के सावित्र जोशी। इन मुकाबलों में 87 मुल्कों के 381 तलबा ने हिस्सा लिया जबकि भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, जुनूबी कोरिया और ताइवान के साथ मिलकर पहला मकाम हासिल किया है। इस हुसूलियाबी से भारत के ओलंपियाड प्रोग्राम की ताकत का अंदाजा होता है जिसकी क्यादत साइंसी तालीम के होमी भाभा मरकज ने की जो बुनियादी तहकीक के टाटा इंस्टीट्यूट का एक कौमी मरकज है। सोमिया शारन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इंटरपोल के डिजिटल फोरेंसिक माहिरीन के ग्रुप की 11वीं मीटिंग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब के साथ जराइम के तहकीककारों का पहला बैन अलाक़वामी मुकाबला और समिट भी मुनक़िद होगा। ये तकरीब आज गांधीनगर में फोरेंसिक उलूम की कौमी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुनक़िद होगी। इस बावक़ार आलमी फोरम में जिसकी मेजबानी भारत 2022 से दूसरी बार कर रहा है आला शख्सियतें शिरकत करेंगी जिसमें वजीर आला भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र पटेल, नायब वजीर आला हर्ष सांघवी और 47 मुल्कों के कानून नाफिज करने वाले मंदूबीन शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: जनाब शाह इस तकरीब के दौरान महारत के 3 सरकर्दा मरकजों का आगाज करेंगे जिसमें मस्नूई जहानत की मदद से जराइम की तफ्तीश, मौके वारदात की देखभाल और भारत के पहले मीडिया फोरेंसिक मरकज पर तवज्जो दी जाएगी। वो मुल्की में तैयार की गई एशिया की पहली साइबर फोरेंसिक तफ्तीशी वैन और मुल्की में तैयार की गई मोबाइल लेबोरेटरी का भी आगाज करेंगे जो मौके वारदात पर शवाहिद बरवक्त इकट्ठा करने की सलाहियत की हामिल है। इस तकरीब की खास बात यह है कि आला तकनीक से मुतालिक नुमाइश भी जिसमें गूगल समेत दुनिया के 30 से ज्यादा बड़े मुल्कों के जदीद तरीन साइबर सिक्योरिटी टूल्स भी शामिल हैं। वजीर दाखिला दोपहर बाद सेकार से समृद्धि का खाका पेश करेंगे। वो धीगम का दौरा करेंगे और अमृत महोत्सव तकरीबात के दौरान सब्जियों के एक नए तामीर शुदा APMC अहाते को अवाम के लिए वक्फ करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हमरा आज दोपहर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। वो उन्नाव में 49 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे का मुआयना करेंगे। भारत की दूसरी सबसे तवील कॉरिडोर के साथ 63 किलोमीटर 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी मुल्क का पहला एक्सप्रेसवे है जिसे ऑटोमेटिक और जदीद मशीन और जदीद तामीराती टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। भोपाल में आज मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी तरक्की का तीसरा इजलास MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव स्वयं मुनाकिद किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इस मुकम्मल इजलास में असल तवज्जो सलाहियत के आलमी मरकजों, डेटा मरकजों और सेमीकंडक्टर शोबे के फरोग पर मरकूज की जाएगी। डॉक्टर यादव टेक्नोलॉजी पर मबनी सनअती तरक्की से मुतालिक रियासती सरकार के खाके की भी जानकारी देंगे। वो सरमायाकारी और नए प्रोजेक्टों पर बातचीत के लिए सरकर्दा सनअतकारों में से हरेक के साथ अलग अलग मुलाकातें करेंगे। इस इजलास में भारत और बैरूनी मुल्कों की टेक्नोलॉजी की सरकर्दा कंपनियों के नुमाइंदे, सरमायाकार, स्टार्टअप्स, सनअती इदारे और तालीमी इदारे यकजा होंगे। बिहार में आज हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई सियाहती खिदमत शुरू की जा रही है। वजीर आला सम्राट चौधरी पटना से इस स्कीम का आगाज करेंगे। इस स्कीम के पहले मरहले के तहत जिन मकामात को शामिल किया गया है उनमें मगरबी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले में मां मंदेश्वरी और नालंदा जिले में राजगीर शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: सियाहत और शहरी हवाबाजी के महकमे के जरिए ये खिदमत मुश्तरका तौर पर शुरू की जाएंगी। आवाम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत रियासती सरकार की तरफ से माली इमदाद के साथ सैयाह रियायती किरायों पर टिकट बुक कर सकते हैं। रियासती सरकार फी टिकट पर 15,422 रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। हेलीकॉप्टर से आज खिदमत 18 जुलाई को शुरू होंगी जो हर हफ्ते और इतवार के रोज फराहम की जाएंगी। पटना से सविता पारीख की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: भारत के खलाई तहकीक के इदारे इसरो ने गगनयान अमले के मॉड्यूल निजाम के कामयाब तजर्बात किए हैं। पहले तजर्बे का ताल्लुक खलाई तैयारे के समंदर में उतरने के बाद अमले मॉड्यूल के लिए उमूदी पोजीशन को यकीनी बनाना है जो अमले के तहफ्फुज़ की जरूरतों के लिए अहम समझा जाता है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है जबकि मशरकी उत्तर प्रदेश में भी बाज जगहों पर 4 से 5 दिन तक शदीद बारिश का इम्कान है। एजेंसी ने 18 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में वसी पैमाने पर बारिश की पेशगोई की है। इसी तारीख तक शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना के दूर दराज मकाम पर छींटे पड़ने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आइंदा 6 से 7 दिन के दौरान शिमाल मगरबी, वस्ती और जनूबी जजीरा नुमा भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की शिद्दत में कमी आ जाने का इम्कान है। इधर मेघालय में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है जबकि मशरकी उत्तर प्रदेश में कल बहुत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ताजा फौजी हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमान सेंटकॉम ने बताया कि इस फौजी कार्रवाई का मकसद आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले गैर फौजी जहाजों के अमले के अलावा तजारती जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कम करना है। एक्स पर एक पोस्ट में सेंटकॉम ने बताया कि यह हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर किए गए ताकि ईरानी फौजों को जवाबदेह बनाया जा सके। ये ताजा हमले खलीजी खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर किए गए हैं। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद ईरान के जनूबी शहरों जास्क, बंदर अब्बास और सिरिक में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि आबनाए हुरमुज तिजारती जहाजों के लिए खुला है। उन्होंने ईरान के कंट्रोल के दावे को मुस्तरद कर दिया। अमरीका के सेक्रेटरी जनरल اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے ایران اور امریکہ کے درمیان تازہ فوجی مہادرائی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس سلسلے میں شدید علاقائی اور عالمی نتائج کے لیے خبردار کیا ہے۔ بھارت نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی عملے کے ارکان کو لے جاتے ہوئے ایک کمرشل جہاز جی ایف ایس گیلیکسی پر حملے کے بعد مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر کہا ہے۔ حملے کی مذمت کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ اس جہاز میں سوار 11 بھارتی باشندوں میں سے ابھی تک 10 کو بچایا گیا ہے۔

0: जबकि एक बाशिंदे के लापता होने की खबर है। बयान में कहा गया है कि ओमान में भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और वो तलाश और बचाव के काम में ओमान के हुक्काम के साथ सरगर्मी के साथ तालमेल रखे हुए है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में आग लगने की वजह से कम 27 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 18 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि अस्पताल में 60 से ज्यादा लोग जेरे इलाज हैं। ये आग बार में निस्फ शब के दौरान लगी थी, जिसके बाद आग बुझाने वाला अमला जाए हादसे पर पहुंचा, जिसने फंसे हुए कई लोगों को वहां से निकाला। थाईलैंड के वजीर आजम अनुतिन चरनो रिकोल ने मीडिया के अफराद को बताया कि 27 लाशें बरामद हुई हैं। आग लगने की तहकीकात की जा रही है। बताया जाता है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। बैंकॉक के चतुचाक जिले में यह एक मशहूर रेस्तरां है। विंबलडन टेनिस में इटली के चोटी के खिलाड़ी यानिक सिनर ने कल रात लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में फाइनल में जर्मनी के अलेक्सेंडर ज्वेरोव को 6-7 7-6, 6-3, 6-4 से हराने के बाद मर्दों का सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। ये सिनर का विंबलडन टेनिस में लगातार दूसरा मर्दों का सिंगल्स का खिताब है। सिनर विंबलडन में मर्दों का सिंगल्स का खिताब कामयाबी के साथ दिफा करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इस माह की 26 तारीख को मुल्क के आवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात और तजावीज इस टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं 1-800-117-800। लोग अपनी राय नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम पर भी भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया है। ये इजलास इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगा। इस इजलास के दौरान माली मामलात पर गौर किया जाएगा और रियासती हुकूमत तकरीबन 8 तरमीमी बिलों का भी ऐलान करेगी। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC के अमृत महोत्सव के दौरान सब्जी के नए सबयार्ड का इफ्तिताह करेंगे। इमदाद बाहमी की वजारत के मुताबिक इस प्रोग्राम के दौरान जनाब शाह एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत पौधा लगाएंगे और APMC के अमृत महोत्सव के मौके पर तैयार की गई एक यादगारी किताब का इजरा करेंगे। भारत ने कतर के मौजूदा अमीर के वालिद शेख हमद बिन अल खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर आज एक दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। शेख हमद बिन अल खलीफा अस्सानी का कल इंतकाल हो गया था। मुल्क भर में इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगुं रहेगा। इसके अलावा आज कोई सरकारी तकरीब मुनक़द नहीं की जाएगी। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में इस खबर को अहमियत के साथ सफाए अव्वल पर शाया किया है कि ईरान के पासदाना ने इनकलाब के इंतबाह के बावजूद अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि आबनाए हुरमुज उन सभी जहाजों के लिए खुला रहेगा जो कानूनी तौर पर यहां से गुजरना चाहते हैं। रोजनामा इंकलाब की सुर्खी है अम्मान के साहिल पर तिजारती जहाज पर हमला। वजारत खारजा ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि कशीदगी को कम किया जाए और सिफारती बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की जाए।
0: आखिर में खास खास खबरें। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कवानीन मंजूर किए थे वो आज से रियासत भर में लागू हो गए हैं। इसरो ने गगनयान हमले के मॉड्यूल निजाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलावी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत मगरबी बंगाल और बिहार में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमेरिका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं और यानिक सिनर ने अलेक्सेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन मर्दों के सिंगल्स का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए आनंद ले फिल्मी गीतों के कार्यक्रम नगमे नए पुराने का। कार्यक्रम का पहला गाना AR रहमान के स्वर और संगीत से सजा जोधा अकबर फिल्म के इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने।

श्रोताओं, अगला गाना गीतकार इरशाद कामिल का लिखा, रांझणा फिल्म से। संगीतकार ए आर रहमान, आवाज सुखविंदर सिंह एवं साथियों की।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
3: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। श्रोताओं आइए अब सुने गीतकार गुलजार का लिखा गाना, जावेद अली और कैलाश खेर के स्वर में। फिल्म है दिल्ली 6, संगीत से सजाया है AR रहमान ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने संपन्न हुआ। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं अभिजीत आनंद। आइए आरंभ में इनकी आवाज़ में सुने तुलसीदास की ये रचना।

सुगम संगीत आपने सुना अभिजीत आनंद के स्वर में। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, प्रातः के 10 बज चुके हैं। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है 2 आंखें 12 हाथ फिल्म से। संगीत है वसंत देसाई का, अल्फाज हैं पंडित भारत व्यास के, आवाज दी है लता मंगेशकर एवं साथियों ने।

श्रोताओं, अगला गाना हमने लिया है सीमा फिल्म से। संगीतकार शंकर जयकिशन, बोल हैं शैलेंद्र के, आवाज मन्ना डे ने दी है।

श्रोताओं, अब सुनिए आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह को गीत गाता चल फिल्म के इस गीत के लिए। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

श्रोताओं, आइए अब सुने देवदास फिल्म का ये गाना गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजों में। साहिर लुधियानवी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है सचिन देव वर्मन ने।

अगला गाना आशा भोसले की आवाज में काजल फिल्म से। अल्फाज हैं साहिर लुधियानवी के, संगीतबद्ध किया है रवि ने।

श्रोताओं, आइए अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजाया ये गाना लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म है शागिर्द, गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुने लोकगीत। लोकगीत में आज कलाकार हैं वीरेंद्र कुमार ठाकुर। आइए आरंभ में इनकी आवाज में सुने ये शिव भजन।

0: श्रोताओं, लोकगीत आपने सुना वीरेंद्र कुमार ठाकुर के स्वर में। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। आइए सुने कुछ जरूरी संदेश एवं सूचनाएं।
1: Future feels effortless with the Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह भागलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से।

एआर रहमान को आपने सुना फिल्म थी तेरे इश्क में। गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार थे एआर रहमान। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म हक से। आवाजें हैं मालिनी अवस्थी, ज्योतिका टांगरे और विद्युत ज्योति मोहन की। गीतकार कौशल किशोर, संगीतकार हैं विशाल मिश्रा।

श्रेया घोषाल और मनन भारद्वाज को आइए सुनते हैं फिल्म एनिमल में। गीतकार और संगीतकार मनन भारद्वाज।

डेढ़ बीघा जमीन, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं स्टीवन बेन की आवाज में। मनोज मुंतशिर का गीत है, संगीतकार हैं रोचक कोहली और सोहेल राणा।

0: नई फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। इस बीच लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ खास संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए नेति मोहन को, फिल्म है मिस्टर एंड मिसेस माही, गीतकार सागर, संगीतकार हैं हनी बनी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। बने रहें हमारे साथ।

श्रोताओं, आज के गुलदस्ता में हम बातें करेंगे बदलते मौसम और पर्यावरण की, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। बचपन में हमने जो महसूस किया है वो ठंडी सर्दियाँ, जब रजाई से निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता था, वो बारिशें जिनका इंतज़ार पूरे साल किया जाता था, और वो बसंत जो फूलों की खुशबू लेकर आता था, अब जैसे धीरे धीरे कहीं खोते जा रहे हैं। आज मौसम बदल रहा है, धरती का मिजाज बदल रहा है, और ये बदलाव केवल तापमान का नहीं है बल्कि हमारे जीवन, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य का बदलाव भी है। कभी आपने गौर किया है कि कभी समय पर आने वाली बारिश अब कभी बाढ़ बनकर आती है तो कभी सूखे की चिंता छोड़ जाती है। गर्मियां हर साल नए रिकॉर्ड बना रही हैं, सर्दियां छोटी होती जा रही हैं, नदियों का पानी कम हो रहा है, जंगल सिकुड़ रहे हैं और हवा में घुलती जा रही है चिंता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पता है, इसका उत्तर कहीं दूर नहीं, हमारे आसपास ही है। जब जंगल कटते हैं तो केवल पेड़ नहीं गिरते बल्कि धरती की सांसें कम हो जाती हैं। जब नदियों में कचरा बहाया जाता है तो केवल पानी ही दूषित नहीं होता बल्कि जीवन का आधार कमज़ोर होता है। जब हम बिना सोचे समझे संसाधनों का उपयोग करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के हिस्से का भविष्य भी खर्च कर देते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बातें करेंगे, लेकिन इस बीच एक गीत सुन लेते हैं फिल्म खुशबू से।

दोस्तों, पर्यावरण कोई अलग विषय नहीं है, ये हमारे जीवन का दूसरा नाम है। हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, पक्षी, नदी, पहाड़, ये सब मिलकर ही हमारा पर्यावरण बनाते हैं। और जब इनमें से किसी एक को भी नुकसान पहुंचता है तो उसका प्रभाव अंततः हम सभी पर पड़ता है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज अब भविष्य की समस्या नहीं, वर्तमान की सच्चाई बन चुका है। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समस्या हमने पैदा की है तो समाधान भी हम ही निकाल सकते हैं। तो इस विषय पर हम आगे बातें करेंगे, लेकिन एक और गीत सुन लेते हैं फिल्म बंदिनी से।

तो हम बातें आज कर रहे हैं पर्यावरण के बारे में, मौसम जो अचानक से चेंज हो जा रहा है उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने बातें की ना कि समस्या तो हमने ही पैदा की है, यानी हम मनुष्यों ने ही पैदा की है, तो समाधान भी हमें ही निकालना होगा। दोस्तों, एक पेड़ लगाना छोटा काम लग सकता है, लेकिन यही छोटा काम आने वाले वर्षों में हजारों लोगों को छाया, ऑक्सीजन और जीवन दे सकता है। पानी की एक एक बूंद बजाना मामूली लग सकता है, लेकिन यही बूंदें मिलकर जीवन का सागर बनाती हैं। प्लास्टिक का कम उपयोग, बिजली की बचत, स्वच्छता का ध्यान, पौधारोपण और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, ये सब छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब अपने शहर भागलपुर की धरती को ही देख लीजिए या यहाँ के मौसम को ही आप देख लीजिए। ये धरती गंगा की पावन धारा से समृद्ध है, ये मंजूषा कला की भूमि है, ऋषभ नगरी हम सभी जानते हैं, ये संस्कृति, साहित्य और प्रकृति का अद्भुत संगम है। लेकिन हाल के वर्षों में अपने शहर भागलपुर में भी बढ़ती गर्मी और बदलते मौसम की मार हम महसूस कर रहे हैं। कभी तपती धूप लोगों को परेशान करती है, तो कभी ज़्यादा वर्षा, बहुत ज़्यादा वर्षा जीवन को प्रभावित करती है। तो ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपनी धरती, अपनी गंगा, अपने पेड़ों और पर्यावरण की रक्षा करें। बातें हम आगे भी करेंगे। इस बीच एक और गीत सुन लेते हैं फिल्म सफ़र से।

दोस्तों, प्रकृति हमें हमेशा देती रही है। सूरज ने रोशनी दी, नदियों ने पानी दिया, पेड़ों ने सांसें दी, धरती ने अन्न दिया, और बदले में हमने क्या दिया? कहीं प्रदूषण, कहीं कंक्रीट के जंगल और कहीं कटते हुए पेड़। अब समय आ गया है कि हम प्रकृति के इस ऋण को चुकाने का प्रयास करें। महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। आज ये वाक्य पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक लगता है। हमें विकास चाहिए, लेकिन ऐसा विकास जो प्रकृति के साथ चले, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। हमें आधुनिकता चाहिए, लेकिन ऐसी आधुनिकता जो पर्यावरण का सम्मान करे। हमें प्रगति चाहिए, लेकिन ऐसी प्रगति जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखे। कल्पना कीजिए उस दिन की, जब हर घर के सामने एक पेड़ होगा, हर मोहल्ला स्वच्छ होगा, नदियाँ निर्मल होंगी, हवा शुद्ध होगी, और बच्चे खुलकर नीले आसमान के नीचे खेल सकेंगे। ये सपना असंभव नहीं है, बस जरूरत है सामूहिक संकल्प की। बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन इस बीच ये गीत सुनते हैं।

इस गीत के पहले हमने बातें की थी कि हम एक सपना देख रहे हैं कि एक दिन हर मोहल्ला स्वच्छ होगा, नदियाँ निर्मल होंगी, हवा शुद्ध होगी और बच्चे खुलकर नीले आसमान के नीचे खेल सकेंगे। तो ये सपना असंभव बिल्कुल नहीं है, बस ज़रूरत है एक सामूहिक संकल्प की। आइए आज हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम एक पेड़ अवश्य लगाएंगे, हम जल की बर्बादी नहीं करेंगे, प्लास्टिक के उपयोग को कम करेंगे और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि हम प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि अपनी धरोहर मानेंगे, क्योंकि जब पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। जब धरती मुस्कुराएगी तभी मानवता मुस्कुराएगी, और जब पेड़ लहराएंगे, नदियां गुनगुनाएंगी और पक्षी चहकेंगे तभी सच्चे अर्थों में चारों ओर खुशहाली भी दिखेगी। तो इस बीच आइए सुनते हैं एक और गीत।

दोस्तों, आज के गुलदस्ता में हमने बातें की पर्यावरण को लेकर, बदलते मौसम को लेकर, और एक संकल्प हम सभी ने आज लिया ना कि हम एक पेड़ अवश्य लगाएंगे, नदियों को साफ रखेंगे, नदियों को सिर्फ जल का स्रोत ना माने, उन्हें सुरक्षित रखें, उन्हें स्वच्छ रखें। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की या किसी संस्था की नहीं है, ये एक एक मनुष्य की है, हम सभी की है। हम खुद जागरूक होंगे तभी तो औरों को जागरूक कर सकेंगे, क्योंकि सिर्फ कहने से, सिर्फ समझाने से कुछ नहीं होता है। आप एक हाथ अपना आगे बढ़ाइए, तभी लोगों को आप अपने साथ जोड़ पाएंगे। पेड़ों को काटने से बचाएं। हम अपने ज़रूरत के लिए, अपनी सुविधा के लिए पेड़ों को कटवा देते हैं, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि एक पेड़ कटने से कितना ज़्यादा नुकसान होता है। या फिर घर बनाने को लेकर के आज हम बातें करते हैं कि शहर कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। तो ठीक है, विकास होगा तो कंक्रीट के जंगल बनेंगे, लेकिन साथ में अगर आप पेड़ लगाने का अभियान जारी रखेंगे तो हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा, आसपास स्वच्छ रहेगा। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर एक हरित, स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका ज़रूर निभाएं, क्योंकि पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा, नदियां बचेंगी तो कल बचेगा। पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लें हम, तभी हमारा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो सुनते हैं एक और गीत।

0: नारी लोक के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी सहेली मुनमुन। बहनों, ऊर्जा हम सभी के लिए कितनी जरूरी है ये तो आप सभी जानते हैं, फिर चाहे वो हमारे शरीर के लिए हो या फिर हमारे दैनिक कार्यों के लिए। आज हमारे मोबाइल की बैटरी यदि 1% हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हों। दिमाग कार्य करना बंद करने लगता है। सोचिए, यदि हमारी पृथ्वी की ऊर्जा समाप्त हो जाए तो क्या होगा? कोयला, पेट्रोलियम, बिजली, ये सब सीमित हैं। यदि हम इन्हें बिना सोचे समझे बर्बाद करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी अंधेरे में जिएगी। ऊर्जा संरक्षण का मतलब ऊर्जा का इस्तेमाल बंद करना नहीं, बल्कि उसका सही और समझदारी से इस्तेमाल करना है। ऊर्जा संरक्षण का सीधा अर्थ है ऊर्जा का अनावश्यक उपयोग करके उसकी बचत करना और उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना। आज के आधुनिक युग में मानव जीवन पूरी तरह से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा पर निर्भर हो चुका है। पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत अत्यंत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि हम इसी गति से इसका अंधाधुंध दोहन करते रहें तो आने वाले कुछ ही दशकों में ये पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य और हमारे पर्यावरण को असंतुलन को बचाने के लिए ऊर्जा संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी मांग बन चुका है। ऊर्जा की बचत केवल बिजली के बिल को कम करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र को बचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन कोयला और तेल को जलाकर किया जाता है, जिससे भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। बहनों, चर्चा आगे भी जारी है, उससे पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहनों, अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके कार्यक्रम नारी लोक में। बहनों, जब हम ऊर्जा संरक्षण करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम कार्बन उत्सर्जन को कम करके वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के खतरों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ऊर्जा की बचत करने से राष्ट्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उद्योगों के संचालन लागत में भी कमी आती है। बहनों, आप कई प्रकार से ऊर्जा संरक्षण में सहयोग दे सकती हैं। बिजली का सही उपयोग करके, अनावश्यक रूप से लाइट और पंखों एसी का इस्तेमाल ना करें, एलईडी का प्रयोग करें, साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्बों का उपयोग करें, ये कम बिजली खपत लेते हैं। सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें, निजी गाड़ियों की बजाय बस या ट्रेन, ऑटो रिक्शा का उपयोग करें, इससे पेट्रोल डीजल की भारी बचत होती है। प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल करें, उपयोग में ना होने पर टीवी, कंप्यूटर, चार्जर के स्विच बंद कर दें। बहनों, ऊर्जा संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। आज की बचाई गई ऊर्जा ही हमारे कल का भविष्य तय करेगी। ऊर्जा संरक्षण का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि हम अपने स्रोतों को बदलें। हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को अपनाना होगा। ऊर्जा संरक्षण केवल बिजली की एक बत्ती बुझा देने

या कार की जगह पैदल चल लेने तक सीमित कोई सतही अवधारणा नहीं है। ये पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने का एक गंभीर दर्शन है। ये दर्शन हमें सिखाता है कि हम प्रकृति के संसाधनों के स्वामी नहीं बल्कि न्यासी हैं। हमारी पीढ़ियों का भी संसाधनों पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा। बहनों, चर्चा आगे भी है, उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

बहनों, ऊर्जा संरक्षण में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय है। किसी भी घर में ऊर्जा की खपत और प्रबंधन का मुख्य नियंत्रण महिलाओं के हाथों में होता है। यदि आप जागरूक हों तो आप न केवल घर का बिजली बिल कम कर सकती हैं, बल्कि पूरे समाज को ऊर्जा साक्षर बना सकती हैं। महिलाएं ऊर्जा संरक्षण में अपना व्यावहारिक योगदान दे रही हैं, ये हम सभी जानते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार घरेलू स्तर पर होने वाली कुल ऊर्जा का खपत लगभग 60% से 70% सीधे तौर पर महिलाओं के निर्णयों और दैनिक कार्यों से प्रभावित होता है। रसोई में ऊर्जा की बचत कर महिलाएं प्रेशर कुकर का सही उपयोग कर दाल चावल को पकाने से पहले भिगोकर और फ्रिज में ठंडी चीजों को निकालकर सीधे गैस पर ना रखकर भारी मात्रा में रसोई गैस बचा सकती हैं। वॉशिंग मशीन, मिक्सर और ओवन का उपयोग केवल क्षमता के अनुसार पूरा लोड लेने पर ही करना महिलाओं की सूझबूझ को दर्शाता है। आज की आधुनिक महिलाएं घर के लिए फ्रिज, एसी या टीवी खरीदते समय बीईई स्टार रेटिंग को प्राथमिकता देती हैं, जो ऊर्जा संरक्षण में सहायक है। माँ बच्चे की पहली शिक्षक होती है। महिलाएं अपने बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा बचाने की अच्छी आदतें सिखा सकती हैं। कमरे से बाहर निकलते समय लाइट और पंखे बंद कर देना, ब्रश करते समय या नहाते समय नल का पानी बंद रखना, गैजेट्स और टीवी को स्टैंडबाय मोड से हटाकर मुख्य स्विच बंद करने की आदत डालना। सोलर सहेली और सोलर दीदी का आंदोलन भी ऊर्जा संरक्षण में काफी सहायक सिद्ध हुआ है। भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सोलर लालटेन और सोलर पैनल की मरम्मत और असेंबली का प्रशिक्षण दिया गया है। ये महिलाएं अपने गांवों को इस माध्यम से रोशन कर रही हैं। महिलाएं समाज में खरीदारी के पैटर्न को भी बदल रही हैं। पैक्ड फूड और प्लास्टिक की वस्तुओं के बजाय पर्यावरण अनुकूल और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना ऊर्जा संरक्षण में सहायक है। कहा भी जाता है बहनों कि यदि आप एक पुरुष को ऊर्जा साक्षर बनाते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति को सिखाते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को ऊर्जा साक्षर बनाते हैं तो आप पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करते हैं। ऊर्जा संरक्षण को एक राष्ट्रीय जन आंदोलन बनाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण और उनकी भागीदारी अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये गीत।

0: बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है वार्ता। विषय है ऊर्जा संरक्षण। वार्ताकार हैं दिव्या गुप्ता।
1: ऊर्जा संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। महात्मा गांधी ने कहा था, धरती हर इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन हर इंसान के लालच को नहीं। और जॉन जेम्स ऑडबेन के अनुसार, एक सच्चा संरक्षणवादी वह व्यक्ति है जो जानता है कि यह दुनिया पूर्वजों द्वारा प्रदत्त नहीं है, बल्कि उसके बच्चों से उधार ली गई है। दोनों महान चिंतक के कहने का आशय है कि धरती की संपदा और उसकी ऊर्जा को आने वाली पीढ़ी के लिए बचाए रखना जरूरी है, लेकिन उपभोक्तावाद के कारण हम पृथ्वी के अक्षय ऊर्जा और उसके संसाधनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि वायुमंडल में ग्रीन गैसों की मात्रा बढ़ती चली जा रही है और पृथ्वी पर खतरे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसी हालत में ऊर्जा संरक्षण और जीवाश्म ईंधन को बचाना बहुत जरूरी है। ऊर्जा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। इसके बिना हम जीवन के संचालन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग पृथ्वी के विविध भागों में व्याप्त ऊर्जा या संसाधनों का उपयोग करते हैं। ये प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता सीमित होती है। मानव के विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन सीमा से अधिक कर लिया है। अतः प्रदूषण का विकराल रूप हमारे समक्ष संकट बनकर आ गया है। प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए विविध उपाय किए जा रहे हैं। महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है। महिला को प्रकृति भी माना जाता रहा है। सृजन उसका महत्वपूर्ण गुण है। ऊर्जा क्षरण के इस दौर में कई तरह से महिलाओं ने अपनी भूमिका द्वारा ऊर्जा संरक्षण का काम किया है। घरेलू स्तर पर महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों के बीच ऊर्जा बचत के उपाय बताती रहती हैं, जैसे बिजली, ईंधन और जल का उचित उपयोग इत्यादि। रसोई में पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी कोयला के बजाय LPG, बायोगैस या सोलर कुकर जैसे स्वच्छ विकल्पों को अपनाना। बच्चों को ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रशिक्षण महिलाएं ही देती हैं। पर्यावरण के संरक्षण और जल संचयन में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कई मामलों में तो वे समूह या समाज की अगुवाई करती भी दिखाई देती हैं। विश्व भर में कई जगहों पर महिलाएं जल संरक्षण अभियानों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उदाहरण के लिए भारत में जल सहेलियां कार्यक्रम महिलाओं के योगदान की बेहतरीन मिसाल पेश करता है। यह कई दशकों से गंभीर जल संकट से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की महिलाओं का समूह है। जल सहेलियां कुएं, तालाब, पोखर जैसे सूखे जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने में लगी हुई हैं। ये महिलाएं अशिक्षित या अर्ध शिक्षित होने के बावजूद जल संकट जैसी गंभीर समस्या के समाधान के लिए गंभीर प्रयास कर रही हैं। उनके कठिन प्रयासों के चलते बुंदेलखंड क्षेत्र के दर्जनों गांवों में पेयजल की समस्या का समाधान हुआ है। जल सहेलियां कार्यक्रम के जरिए जल संरक्षण की मुहिम चलाने में स्वयंसेवी संस्था परमार्थ जैसी जमीनी स्तर पर काम करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वाटर कीपर्स कार्यक्रम की तरह ही उत्तरी अफ्रीका के केन्या, युगांडा और घाना जैसे देशों में जल संरक्षण अभियानों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। केन्या में महिलाएं वाटरशेड मैनेजमेंट में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जिससे जल स्रोतों का संरक्षण हो रहा है। इसी तरह युगांडा में महिलाएं वाटर यूज़र कमेटीज़ के माध्यम से जल प्रबंधन में योगदान दे रही हैं। घाना में भी महिलाएं कम्युनिटी वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी के साथ हाथ मिलाकर जल संरक्षण के प्रयास कर रही हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि दुनिया के जल संकट वाले देशों में महिलाएं जल संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। महिलाएं सौर ऊर्जा, बायोगैस और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर ग्रीन एनर्जी यानी हरित ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रही हैं। इसमें महिलाएं जैविक खेती और टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देकर जल और भूमि के अति शोषण को रोक रही हैं। मिसाल के तौर पर भारत के कई ग्रामीण इलाकों में सोलर सखी कार्यक्रम के तहत महिलाएं सोलर लैंप, क्लीन कुकिंग स्टोव और छोटे सौर उपकरण बेचकर न केवल हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही हैं। यह कार्यक्रम सेल्को इंडिया और अन्य संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है। इसी तरह पड़ोसी देश नेपाल में नेशनल बायोगैस प्रोग्राम के तहत महिलाएं बायोगैस संयंत्र चलाने में अहम भूमिका निभा रही हैं, जिससे लकड़ी पर निर्भरता घट रही है और पर्यावरण को भी बचाया जा रहा है। अफ्रीका के तंजानिया में महिलाएं ममाज सोलर परियोजना के तहत सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और रिपेयरिंग का प्रशिक्षण लेकर अपने गांवों को सौर ऊर्जा से रोशन कर रही हैं। दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिने जाने वाले अमेरिका भी क्लाइमेट लीडरशिप में महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। सिंथिया रोजर्स की अगुवाई में विंड एनर्जी लीडर प्रोग्राम के तहत पवन ऊर्जा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने में कई महिलाएं तकनीकी विशेषज्ञता और नेतृत्व प्रदान करके एक अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। राजस्थान के तिलोनिया में प्रशिक्षित वे सोलर मामाज हैं जो सोलर पैनल और सर्किट तैयार कर अपने गाँव को रोशन कर रही हैं। यहाँ महिलाओं को सोलर पैनल, सर्किट, लालटेन बनाने और मरम्मत करने की ट्रेनिंग दी जाती है। कर्नाटक के बिंदूर स्थित डेयरी में 31 वर्ष की नागरत्ना मवेशियों के बीच काम में लगी हैं। वह एक जुगाड़ से बनी मशीन खींच रही हैं। यह मशीन एक ट्रॉली पर लगी है जिसमें लगे सोलर पैनल धूप में चमचमा रहे हैं। गौर से देखने पर पता चलता है कि इस मशीन का इस्तेमाल मवेशियों से दूध निकालने के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा से चलने वाली इस मशीन से नागरत्ना का पूरा एक घंटा बच जाता है। महिलाएं बहुत भावुक और संवेदनशील होती हैं। वे अपने परिवार और बच्चों को सृजनात्मक ढंग से पालती हैं। पृथ्वी के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने उसके दोहन को रोकने का प्रयास किया है। उनके घरेलू से लेकर बाह्य कार्यों में संरक्षण महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसी का परिणाम है कि वे पृथ्वी के ऊर्जा संरक्षण में कदम बढ़ा रही हैं।
0: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता। विषय था ऊर्जा संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार थी दिव्या गुप्ता। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही बहनों समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए अपनी सहेली मुनमुन को दीजिए इजाजत।
1: नारी लोक कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से, और अब आइए सुनते हैं

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदे नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था, इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी राम दुलारी जी का।
2: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
2: श्रोताओं इसका जवाब जान लेते हैं। मातृ वृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
0: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
2: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
0: जी अश्रोताओ, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
2: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
0: जी तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559 पर जो हमारा IBRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
2: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
3: अरे भागो भागो, वो देखो हमारे आगे पशु पक्षी
4: निकल जाएंगे, हमारे घर के सारे सामान बह
5: जाएगा। लगता है हो गई है
6: क्या? हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
5: फसल बह गई।
7: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी, नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
8: लो भाई पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
5: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत। आहा,
8: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। आहा, कितना साफ पानी है।
7: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
8: अरे काट काट काट, बताए मेरा भी क्या देख रहा, काट।
9: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
7: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
10: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
7: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
11: अरे काट काट काट, तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
12: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
7: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
11: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
13: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
7: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
4: हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
12: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
6: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
12: सारी फसल बह गई।
4: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
12: सारा सामान
4: जल्दी ऊपर ले जाना होगा।
12: चलो जल्दी ऊपर,
4: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी चलो
12: चलो चलो,
4: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
12: ध्यान से संभल कर।
7: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
14: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
0: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता, मैं ही जीवन हूं धरती का। मुझे नष्ट मत करो, मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: जिंदौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी, अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है।
3: आ रही हूँ चाची।
2: हाँ चाची।
4: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
4: कोई घबराने वाली बात नहीं है री।
1: वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
4: छत्ते? क्या मतलब?
1: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ
4: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
4: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी फट तो हो ही जाएगा।
5: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: छप्पर फाड़ कर।
4: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
5: हाँ, हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
4: हाँ ठीक है ना, चल चलते हैं।

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है।
1: मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा।
2: अरे हाँ,
1: तो वो साल के बड़े पेड़ के पास।
2: हाँ वही,
1: न जाने कौन लोग हैं।
2: पता नहीं कौन लोग हैं।
1: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाज ही ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
2: चलो
3: की पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है।
1: ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए।
3: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
1: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
2: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं।
1: ठीक रहेगा।
2: मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं।
1: अच्छा।
2: वो रास्ता छोटा लगेगा।
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना। हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
1: मगर ये औरतें और बच्चे।
2: अरे यार मगर मत कर,

0: क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
1: हाँ,
0: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है? अरे बाहर निकलो,
2: निकलो बाहर।
0: चाची
3: क्या बात है?
0: बुआ जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
4: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे। सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
0: वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं,
1: बिल्कुल
0: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
3: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
0: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो
4: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
5: चिब्बू भाग ले यहां से,
4: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
6: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया।
7: ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही पेड़ को। अरे
6: क्या
7: बात है,
6: जीतती रहे बेटी, जीतती
0: रहे। तो हम सबका कर्तव्य है।
4: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
8: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को
8: कुसुमलता,
9: जगबंधु,
8: चेतना
9: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार, नमस्कार।
10: उमंग उमंग उमंग उमंग।
11: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लोकरंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुलेखा कुमारी के गायन लोकगीत। आइए सुनते हैं

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: मोकरंग कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सुलेखा कुमारी को।

श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम आप पुनः सुन पाएंगे 1:20 पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 1:10 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे रांची केंद्र से।

0: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए। स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ करना उद्देश्य। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने अपराध के खिलाफ आम नागरिक एकजुटता पर दिया जोर। मोहल्लों में नागरिक सुरक्षा समिति बनाने की अपील की। रामगढ़ के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की याचिका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया संज्ञान। तमिलनाडु में झारखंड के मजदूरों को मिलेगी राहत। कतरास के करकट्टा जंगल में कोयला माफियाओं के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई। सीआईएसएफ ने 200 टन अवैध कोयला किया जब्त। और इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करना है। मंत्रालय ने कहा कि यह मसौदा नीति विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श और उनसे प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं को शामिल करते हुए तैयार की गई है। मंत्रालय ने 27 जुलाई तक टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपराध के खिलाफ आम नागरिकों की एकजुटता पर जोर दिया और मोहल्लों में नागरिक सुरक्षा समिति बनाने की अपील की।
1: कोई घर में काम करने आए तो उनका आधार कार्ड जरूर लो, उनका चेहरा मिलान करो, ताकि ऐसे असामाजिक तत्व आपकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाए। और रोजाना जो डकैती, चोरी और जो हत्याओं का दौर जमशेदपुर और सब जगह शुरू हुआ है, इसलिए नागरिक सुरक्षा समिति का गठन और कौन बाहरी व्यक्ति आ रहा है उसके पूरे मूवमेंट पर नजर रखें, ताकि अपने लोगों की हम सुरक्षा कर सकें।
0: रामगढ़ के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की याचिका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के मजदूरों की सहायता के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। याचिका में प्रभावित मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी, आर्थिक सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था करने की भी मांग की गई थी। धनबाद की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का मामला अब कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने नरसा विधायक अरूप चटर्जी को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। सांसद की ओर से 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने, आरोप वापस लेने, सोशल मीडिया से संबंधित सामग्री हटाने और 2 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। ऐसा नहीं होने पर दीवानी और आपराधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में कल देर शाम ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान का विरोध कर रहे असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और 2 बम भी फेंके। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ राजकीय श्रावणी मेले में इस वर्ष 50 लाख से ज्यादा भक्तों के बासुकीनाथ पहुंचने का अनुमान है। मंदिर प्रशासनिक समिति के सचिव और दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी कौशल किशोर ने संबंधित अधिकारियों और धर्म रक्षणी सभा के सदस्यों के साथ बैठक की। अनुमंडल पदाधिकारी ने तैयारियों की जानकारी दी।
2: पंडा धर्मेश्वर सभा सदस्यों के साथ एक मंदिर में बैठक की गई है, जिसमें सौनी और भादो मास में मंदिर खुलने का समय, जलार्पण स्टार्ट करने का समय, अर्घा लगाने का जो गाइडलाइन है और जो एसओपी बनाया गया है कि अर्घा कब लगाया जाएगा, उसके संबंध में निर्णय लिया गया है। और कांचा जल चढ़ाने वाले लोग हैं उनका भी संख्या लिमिट किया गया है। और जितने भी पंडा समाज के लोग हैं, जो धर्मेश्वर सभा के द्वारा जो लिस्ट बनाया जाएगा, जिनको आई कार्ड दिया जाएगा, उसकी सूची को इनको प्रायर अप्रूवल करा लेना है।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कतरास के करकट्टा जंगल में कल CISF ने अब तक का सबसे बड़ा सर्च अभियान चलाकर 200 टन अवैध कोयला जब्त किया और कोयला माफियाओं के बड़े नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई की। कमांडेंट अमित कुमार के नेतृत्व में करीब 70 CISF जवानों, CCL प्रबंधन और मैकलसीगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने पिपरवार क्षेत्र में गोपनीय सूचना के आधार पर जंगल के भीतर चल रहे अवैध खनन और तस्करी के अड्डे को ध्वस्त किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
3: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यहाँ का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गए। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। जामताड़ा जिला योग संघ की पहल पर DAV विद्यालय परिसर में अंतर विद्यालय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला योग संघ के सचिव दीपक दुबे ने बताया कि प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागी चाईबासा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
4: इंटर स्कूल योगा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे जामताड़ा के 15 स्कूलों से लगभग 250 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे खिलाड़ियों को हम लोग प्लेटफॉर्म देने का कार्य कर रहे हैं और ये जामताड़ा जिला योग एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। आने वाले समय में जो बेहतर खिलाड़ी होंगे वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चाईबासा में जामताड़ा जिला को प्रतिनिधित्व करें।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बिंदाले, नई दिल्ली के रुषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए। स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ करना उद्देश्य। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने अपराध के खिलाफ आम नागरिक एकजुटता पर दिया जोर। मोहल्लों में नागरिक सुरक्षा समिति बनाने की अपील की। रामगढ़ के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की याचिका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया संज्ञान। तमिलनाडु में झारखंड के मजदूरों को मिलेगी राहत। कतरास के करकट्टा जंगल में कोयला माफियाओं के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई। CISF ने 200 टन अवैध कोयला किया जब्त और इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक किए पूरे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। एक बार फिर शामिल होते हैं लोकरंग कार्यक्रम में। आज कलाकार हैं सुलेखा कुमारी।

0: सुलेखा कुमारी के गाए इस लोक भजन के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आरंभ होता है ग्रामीण महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन।
1: बहनों, बारिश यानी कि मानसून का समय है और इस मौसम में उमस और नमी के कारण एक तरफ जहां बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है, वहीं दूसरी तरफ मिट्टी में नई जान आ जाती है जो पेड़ पौधों के लिए अमृत के समान है। तो बहनों, इस मौसम में खुद को कैसे स्वस्थ रखें और घर की महिलाओं द्वारा कैसे एक बेहतरीन किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं, इस विषय पर अभी मैं चर्चा करूँगी। बहनों, मानसून में हमारी पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है और हवा में नमी के कारण बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं, इसलिए खान पान में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि ताज़ा और गर्म भोजन लें, बासी भोजन से पूरी तरह बचें और खाना बनाने के 1 से 2 घंटे के भीतर ही उसका सेवन कर लें। दूसरा चीज जिसका हमें ख्याल रखना है वो है पानी को उबाल कर पिएं। बहनों, इस मौसम में जल जनित बीमारियों का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, पानी को इसलिए हमेशा उबालकर और छानकर ही पिएं। साथ ही बहनों, हरी पत्तेदार सब्जियों से परहेज करें क्योंकि बरसात में पालक, पत्ता गोभी जैसी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े और बैक्टीरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में इन सब्जियों को अवॉइड करें और मौसमी फलों और सब्जियों को प्राथमिकता दें। मौसमी सब्जियां जो आप खा सकती हैं वो है लौकी, नेनुआ, करेला, परवल, भिंडी जैसी सब्जियां खाएं और फल में सेब, नारंगी ये सब खाएं और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ें शामिल

करें, जैसे कि चाय या काढ़े में अदरक, तुलसी, काली मिर्च, लौंग और हल्दी का प्रयोग करें। यह मौसमी सर्दी खांसी से बचाएगा। बहनों, बाहर के खाने और तली भुनी चीज़ों से बचें। हालांकि बारिश में पकौड़े खाने का मन तो सबको करता है, लेकिन ज़्यादा तली भुनी और बाहर की खुली चीज़ें जैसे चाट, गोलगप्पे पेट को ख़राब कर सकती है, तो इसलिए इन चीज़ों से परहेज करें। बहनों, अब हम बात करेंगे कि जुलाई का महीना जो है उसमें कैसे हम किचन गार्डन बना सकते हैं। जुलाई का महीना बिहार की जलवायु के हिसाब से किचन गार्डन यानी कि रसोई वाटिका शुरू करने या उसका विस्तार करने के लिए सबसे उत्तम समय है। घर की महिलाएं घर की छत, बालकनी या आंगन की खाली जमीन का उपयोग करके आसानी से इसे तैयार कर सकती हैं। बहनों, अगर जमीन खाली है तो वहाँ जल निकासी का अच्छा इंतजाम करें ताकि पानी जमा ना हो। और अगर छत या बालकनी में गार्डनिंग कर रही हैं तो मिट्टी के गमले या प्लास्टिक के गमले या ग्रो बैग्स आते हैं, उनका इस्तेमाल करें। गमले के नीचे छेद यानी कि ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है ताकि अतिरिक्त बारिश का पानी निकल सके। साथ ही बहनों, पौधा लगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना भी जरूरी है। इसके लिए बारिश के मौसम में मिट्टी का भुरभुरा होना जरूरी है ताकि जड़ों को हवा मिल सके। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हमें मिलानी पड़ेगी, जैसे कि 50% सामान्य बगीचे की मिट्टी लें, 30% गोबर की सरी हुई खाद या केचुआ खाद जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं उसको लें, और 20% रेत यानी कि बालू मिलाकर मिट्टी तैयार करें। बहनों, इस मौसम में जो हमारे राज्य के अनुकूल जो प्रमुख सब्जियां हैं जो आप लगा सकती हैं, और वो हैं नेनुआ जिसे हम तोरई भी कहते हैं, झिंगी, लौकी, करेला, बोडो, और इन्हें चढ़ाने के लिए बांस या रस्सी का सहारा भी दे सकते हैं। कुछ और सब्जियां हैं जैसे कि भिंडी, ग्वारफली, मिर्च और बैंगन भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास मिर्च, टमाटर या बैंगन की छोटी पौध जो आप नर्सरी से ले सकती हैं या खुद भी तैयार कर सकती हैं बीज डालकर, तो जुलाई में उन्हें बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट करने का यही सही समय है। दूसरी चीज़ें जो बहनों आप अपने किचन गार्डन में उगा सकती हैं वो है तुलसी, पुदीना, एलोवेरा और अदरक। इस मौसम में इन जो पौधे हैं इनको आसानी से लगाया जा सकता है। साथ ही बहनों, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ज़्यादा पानी से पौधों को बचाएं। बारिश का पानी पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन लगातार भारी बारिश से गमलों की मिट्टी बह सकती है या जड़ें सड़ सकती है। इसलिए भारी बारिश के दौरान छोटे पौधे को शेड यानी कि छाया में रखें। साथ ही बहनों, कीट प्रबंधन करना भी बहुत ज़रूरी है। इस मौसम में पौधे पर कीड़े जल्दी लगते हैं और इनसे बचाव के लिए हमें हर 10-15 दिनों में नीम का तेल को पानी में मिलाकर पौधों पर स्प्रे करें और जितना संभव हो सके रासायनिक कीटनाशकों से बचें। साथ ही बहनों, निकासी की जांच करना भी ज़रूरी है। हर 2-3 दिन में देखते रहें कि गमलों के नीचे के छेद बंद तो नहीं हो गए हैं। घर की महिलाएं अपनी रसोई से निकलने वाले गीले कचरे जैसे सब्जियों और फलों के छिलके होते हैं, इनसे घर पर ही बेहतरीन जैविक खाद तैयार कर सकती हैं जो इन पौधों के लिए पोषण का काम करेंगी। बहनों, क्या आप किचन गार्डन की शुरुआत में गमले में करेंगे या आंगन में करेंगे, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप कैसे उसका देखभाल करती हैं यह ज़्यादा मायने रखता है। तो बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक लोक भजन।

0: बहनों, शिशु का पोषण और माँ का सौंदर्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। स्तनपान कराने से न केवल बच्चे को उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, बल्कि यह माँ के शरीर और त्वचा को प्राकृतिक रूप से निखारता भी है। तो बहनों, इसी से जुड़ी हुई एक पूर्व प्रसारित वार्ता सुनते हैं। वार्ता का विषय है शिशु का पोषण और माँ का सौंदर्य। वार्ताकार हैं पुष्पलता सिन्हा।
1: माँ बनना एक सुखद अनुभूति और खुशनुमा एहसास होता है, क्योंकि नारी पूर्ण ही तभी होती है जब वह माँ बनती है। वह क्षण अविस्मरणीय होता है। दुनिया में मातृत्व ही ऐसा खूबसूरत अनुभव है जिसमें एक शरीर में नवजीवन दिखता है। स्त्री जब पहली बार शिशु को जन्म देती है, तब उस शिशु के जन्म के साथ एक माँ का भी जन्म होता है। उसके इस स्वरूप से ही सृष्टि सृजन का रहस्य भी आलोकित होता है। माँ बनना न सिर्फ स्त्री जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, बल्कि नया जन्म भी है, क्योंकि उसे मातृत्व का सुख अपनी जिंदगी और सेहत के प्रति कुछ जोखिम उठाकर ही मिलता है। वैसे अधिकतर मामलों में गर्भधारण एक सामान्य प्रक्रिया है जो प्रकृति के अनुसार चलती है, लेकिन इसमें सावधानी रखना आवश्यक है। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही से कई तरह की जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। गर्भधारण के बाद से ही शरीर के हार्मोन्स में कई तरह के परिवर्तन आने लगते हैं, जिसके चलते स्त्री को कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। गर्भकाल में गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता का देखभाल करना और इस संदर्भ में शिशु और माता के हित में उचित आहार व्यवहार की सलाह देना इस आधुनिक युग में बड़ी समस्या है। गर्भस्थ शिशु को पोषण माँ से ही मिलता है, इसलिए गर्भावस्था में माँ को संतुलित और पौष्टिक आहार देना अति आवश्यक होता है। स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। संतुलित और पौष्टिक आहार का मतलब है ऐसा भोजन जिसमें लौह, प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और पानी प्रचुर मात्रा में सम्मिलित हो। वैसे तो संतुलित आहार प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता है, पर गर्भिणी और गर्भस्थ शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है। ये कहना कि गर्भवती स्त्रियों को दो मनुष्यों का भोजन कराना चाहिए, ये बातें गलत है, बल्कि उन्हें पौष्टिक आहार देना चाहिए जिससे कि बच्चे के जन्म के बाद माँ को भरपूर दूध हो। इस समय गर्भवती स्त्रियों को आयरन, प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम की पूर्ण मात्रा में सेवन करनी चाहिए। गर्भस्थ शिशु को इससे संपूर्ण पोषण मिलता है। शिशु जन्म के बाद माता का दूध ही बच्चे का सर्वोत्तम और मुख्य आहार है। बच्चे के जन्म के बाद जो पहला दूध होता है वह कोलेस्ट्रम कहलाता है। यह द्रव पीले रंग का होता है। इस द्रव में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, विशेषतः इम्यूनोग्लोब्यूलिन नामक तत्व पाए जाते हैं, जिससे शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है जो शिशु की आँख की रोशनी बढ़ाता है। शुरू के दिनों का दूध पतला होता है, क्योंकि आरंभ में शिशु के पाचन अंग पूर्णतया विकसित नहीं होते हैं, अतः वह इसे सरलता से बिना कोई श्रम किए पचा लेता है। जैसे जैसे शिशु की शारीरिक वृद्धि होती है, वैसे वैसे माता का दूध भी गाढ़ा होने लगता है। इसमें पोषक अवयवों की मात्रा भी बढ़ जाती है। माता का दूध पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, पानी होता है जो संतुलित मात्रा में होती है। यह मस्तिष्क का सही विकास करता है। इसमें प्राकृतिक लैक्सेटिव होता है जो बच्चे के पेट को साफ करता है, जिससे पीलिया होने का खतरा नहीं रहता है। माँ के दूध से शिशु में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की कमी नहीं होती है। लौह तत्व की अधिकता होने से शिशु में एनीमिया होने का भय नहीं होता है। माँ का दूध शिशु को संक्रामक रोगों से बचाता है। यह दूध प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कान का इन्फेक्शन, आँख, हृदय, गुर्दे की बीमारी, दमा, कैंसर की बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। बच्चे को निमोनिया, कुपोषण और एलर्जी से भी बचाता है। बच्चे को पहले के 6 महीने सिर्फ माँ का ही दूध देना चाहिए। इससे उसका बौद्धिक विकास भी होता है। माँ का दूध पीने से बच्चे और माँ के बीच आपस में प्यार और विश्वास पनपता है। बच्चे का दूध पीने का समय निश्चित करें। जन्म के बाद शुरू में तो शिशु थोड़ा थोड़ा दूध पीता है, इसलिए जल्दी जल्दी दूध पिलाएं। 3-4 दिन तीन तीन घंटे पर 10-10 मिनट तक दूध पिलाना चाहिए। रात्रि में सोने से पहले बच्चे को पेट भर दूध पिलाएं, जिससे कि रात्रि में माँ बच्चे को ज़्यादा परेशानी ना हो। इससे उसकी आदतें भी ठीक बनी रहेंगी और पाचन शक्ति भी ठीक रहती है। रात में कोशिश करें कि 11 बजे से 4 बजे सुबह तक बच्चा भूख से ना रोए, इसलिए पेट भरकर ही सुलाएं। इतना समय मिलने से दूध ठीक से पचता रहता है और उदर रोग होने की संभावना नहीं होती है। बच्चे को जबरन दूध कभी ना पिलाएं। माँ दूध पिलाते समय बच्चे को अपने शरीर के साथ लगाती हैं, प्यार से सहलाती हैं, जिससे बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और खुश रहता है। माँ का ये दूध बच्चे के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करता है और माँ को भी सुख देता है। बच्चा जब 6 महीने से ऊपर का हो जाए तो उसे ऊपर का आहार भी देना आवश्यक होता है। गाय का दूध अगर देना चाहें तो आधा दूध आधा पानी मिलाकर गर्म कर लें और फिर उसे ठंडा करके दे दें। बच्चे को माता के दूध के साथ विभिन्न फलों का रस, फल, उबली हुई हरी सब्जी, मूंग दाल का पानी देना उचित होता है। मौसमी, अनार, सेब, अंगूर जैसे फलों का रस देना उचित है। नारियल का पानी भी देना श्रेयस्कर होता है। उबली हुई हरी सब्जी में पालक का रस, टमाटर का रस, परवल का रस भी बच्चे के सेहत के विकास में अच्छी भूमिका निभाता है। जब बच्चा 8 से 10 महीने का हो जाए तो उबाली हुई सब्जी जैसे पालक का साग, चौलाई की साग, परवल, कद्दू, गाजर, पपीता, चुकंदर देते रहना चाहिए। इसके साथ साथ थोड़ी मात्रा में पका हुआ अन्न भी देना चाहिए। 9 से 10 महीने के बच्चे के लिए माता का दूध ही काफ़ी नहीं होता है, इसलिए ऊपरी भोजन को संतुलित, सुपाच्य और समय समय पर देते रहना चाहिए, ताकि बच्चे को समुचित पोषण मिलता रहे और उसकी मानसिक शारीरिक विकास सही ढंग से होता रहे। मूंग दाल की खिचड़ी, सूजी का हलवा, पका हुआ केला, दलिया दिया जाना चाहिए। बच्चे के सेहत के प्रति यदि सजग हैं तो याद से उसे चीनी की आदत न लगाएं। उसे चीनी की जगह गुड़ या शहद दे सकते हैं। भात के बदले उबली हुई आलू दीजिए या कम मात्रा में माड़ भात की आदत डालें। 12 घंटे भिगोई हुई किशमिश का पानी दे सकती हैं। ऐसे सब खाद्य पदार्थ देते रहने से बच्चे के शरीर में लौह तत्व की कमी नहीं होती है, जिससे एनीमिया होने का डर नहीं होता है। संतुलित आहार देते रहने से बच्चे के शरीर में कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व समान रूप से मिलते रहता है। बच्चे का आहार हमेशा ही आसानी से पचने वाला होना चाहिए। तीखा, खट्टा, मसालेदार, ज़्यादा गर्म, कड़वा या कठिनता से पचने वाला भोजन नहीं देना चाहिए। बच्चा जितना कोमल है उससे ज़्यादा कोमल उसका अंग होता है। इस बात को याद रखकर उसके आहार को देना चाहिए। संतुलित, सुपाच्य और स्वस्थ आहार देने से बच्चे के कोमल मन और शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चा हर तरह से स्वस्थ पोषित होता है, दिमाग से भी और शरीर से भी। स्वस्थ बच्चे को हंसते खेलते देखकर माँ भी खुश होती है और पूरा परिवार भी आनंदित होते रहता है। माँ को भी एहसास होते रहता है कि मैंने एक सुरक्षित भविष्य को जन्म दिया है। इससे उसकी आत्मविश्वास मजबूत होती है। एक औरत को गर्भस्थ समय से लेकर बच्चा जन्म देने तक उसकी मनोभाव को अगर समझा जाए तो अपने पूरे जीवन से ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसके चेहरे पर जो सौंदर्य खिलता है वो सौंदर्य शायद फिर कभी नहीं होता। दूध पिलाने से लेकर शिशु की समुचित देखरेख करते करते उनमें जो निखार आता है वो कृत्रिम लिपापोती से नहीं मिल सकती है। गोद में बच्चे को लेकर जब माँ दूध पिलाती हैं तो उस समय प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स निकलता है, जो माँ और बच्चे दोनों का तनाव कम करते हैं और आराम प्रदान करता है। स्तनपान कराने से शिशु कम रोते हैं, क्योंकि माँ के दूध में एंडोर्फिन नामक तत्व पाया जाता है जो बच्चे के दर्द को कम करके उसे आराम देता है। माँ गोद में लेकर ही शिशु को स्तनपान कराती हैं, यह एक मनोवैज्ञानिक कर्म है। इससे माँ को शारीरिक एवं मानसिक लाभ होता है। शारीरिक लाभ इस प्रकार होता है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय और शरीर का वजन बढ़ जाता है, वो प्राकृतिक रूप से नियंत्रण होता है, क्योंकि दूध बनने की क्रिया में 200 से 500 कैलोरीज प्रतिदिन खर्च होती है। इससे माँ का वजन घटकर जल्द ही फिर से आकर्षक और सुडौल होने लगती है। साथ ही साथ जब बच्चा बार बार दूध खींचता है तो शरीर में स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है जो दूध के बहाव को नियंत्रित रखता है, साथ ही गर्भाशय को सिकोड़ता है जिससे रक्त का स्राव बंद होकर प्रसव से पूर्व की सामान्य स्थिति प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इससे माँ का बढ़ा हुआ पेट भी कम होता है। मानसिक लाभ इस प्रकार से है कि माँ बच्चे के जन्म के पश्चात काफ़ी भावुक हो जाती हैं। गर्भकाल व प्रसव के दौरान हुई कठिनाइयों और कष्टों पर स्तनपान मरहम का काम करता है। दूध पिलाने वाली माँ मानसिक रूप से संतुष्ट और अधिक आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं। माँ बच्चे के जीवन की धुरी होती हैं और वह यह सोचकर ही आत्मसंतोष से भर जाती हैं कि वह अपने शरीर से बच्चे को पौष्टिकता प्रदान कर रही हैं जिससे वह बड़ा हो रहा है। उस वक्त माँ के चेहरे की सौंदर्यता देखते ही बनती है। उस सुंदरता को सिर्फ माँ ही महसूस कर सकती हैं। इन सब के अलावा कई अनुसंधानों से पता चला है कि दूध पिलाने वाली माँ का भी बहुत सी बीमारियों से बचाव होता है, जैसे कि स्तन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, मधुमेह, दिल का दौरा, गठिया। साथ ही परिवार नियोजन और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और माँ की सुंदरता शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से निखरती है और शिशु का सही पोषण होता है।
0: बहनों, शिशु का पोषण और माँ का सौंदर्य बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं जब बच्चा स्वस्थ रहता है माँ के दूध के द्वारा तो माँ का भी सौंदर्य निखरता है और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। इसी के साथ बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और लोकगीत।

0: बहनों समय हो गया है विदा लेने का, दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी।
1: घर आंगन कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 2 बजने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे हमारे पटना केंद्र से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। उम्मीदवार 16 जुलाई तक नाम वापस ले सकते हैं। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। प्रदेश में अब पर्यटक हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवाओं का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पर्यटकों के लिए आवागमन

को सुगम बनाना और लोगों को बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों का सुविधाजनक अनुभव उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में साप्ताहिक आधार पर शुरू की जा रही एयर पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा के रूप में विस्तारित किया जाएगा। योजना के प्रथम चरण में पटना, वाल्मीकि नगर,

सोमवार तथा रविवार को संचालित की जाएगी। प्रदेश में किसानों को अब हर महीने बिजली बिल मिलेगा। पहले किसानों को 3 महीने पर एक साथ बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था। बिजली कंपनियों के अनुरोध पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने मासिक बिलिंग की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था से राज्य के लगभग 8 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और उन्हें एक मुश्त 3 महीने का बिल चुकाने की परेशानी से राहत मिलेगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज अररिया, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया और सुपौल जिले में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वहीं कटिहार और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है। इधर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है। 17 जिले ऐसे हैं जहां बारिश की कमी 50% या उससे अधिक है। 18 जिलों में 30-50% तक कम बारिश हुई है। सबसे कम बारिश गया जिले में दर्ज की गई है। वैशाली जिले के बेदोपुर थाना क्षेत्र में रविवार को हुए दोहरे हत्याकांड मामले का मुख्य आरोपी जगदीश राय पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी। उसे इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि एक दिन पहले भूमि विवाद में सेना के जवान और उनके पिता की हत्या के मामले में आरोपी की तलाश की जा रही है। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र स्थित मुरारपुर गांव के पास तांती नदी के किनारे संचालित शराब भट्टी को पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया है। मौके से 2000 लीटर शराब बरामद की गई। पुलिस कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अररिया जिले के कुर्सा कांटा थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरभंगा मंडल कारा के सहायक अधीक्षक नंदू कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ पत्नी की हत्या का मामला दर्ज है। इस मामले में न्यायालय ने उनके विरुद्ध वारंट भी जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242। सुनो ना।
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
2: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं।

0: विज्ञापनों की बुकिंग
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
5: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
6: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला,
7: स्वागत है आपका सुबह की सुहानी धूप में। ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
8: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
7: रूबरू होंगे आप खबरों से,
8: देश दुनिया की ताज़ा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
7: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
8: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
7: आकाशवाणी भागलपुर से। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर।
8: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
7: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
8: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
7: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर।
8: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं।
7: तो जरूर सुनिए
6: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
7: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से।
9: दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि

0: न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का 3रा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई है, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ। अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
4: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य की

0: शिक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों को फिल्म हिना में। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
2: करो।
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: चित्रपट से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं महबूबा फिल्म का गीत, गायिका लता मंगेशकर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव वर्मन।

वो कौन थी फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार राजा मेहदी अली खान, संगीतकार थे मदन मोहन। और अब सुनिए शकील पदावनी का गीत, रवि का संगीत, गायिका लता मंगेशकर और फिल्म है दो बदन।

आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं बांग्ला गान।

इस गीत के साथ ही बांग्ला गान कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

संवेद स्वर में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अपराह्न के 3:25 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। इसे आप सुन पाएंगे संध्या 5 तक और फिर 5 से आनंद लें आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रमों का।

0: दिल तो हंसाए कभी ये दुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गाना था और दीपा जी घड़ी की ओर देखिए, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम श्रोताओं की टिप्पणियां सुनवाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और कहा जाता है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। मतलब मन में अगर कुछ ठान ले तो बहुत मुश्किल काम आसान लगता है। क्या कहेंगे दीपा जी आप?
1: ये बात सही है कि जब मन को अगर आपने ठान लिया तो बात आसान होगी, लेकिन जब ये मन अधीर हो जाता है ममता जी, अधीर मन में निर्णय लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से जो परिणाम आते हैं वो भी हो सकता है कि गलत हो सकते हैं, है ना।
0: अब जी, हमारे जी, बहुत सारे श्रोता देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अधीर मन अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है। इसके विपरीत क्षमता और धैर्य मनुष्य को परिस्थितियों को समझने, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। जबकि मन में धैर्य और क्षमा का भाव होता है तब संबंध मधुर बनते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। बहुत कुछ इन्होंने कह डाला है और भी कुछ लिखा है, तो आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है, जरा देखिए आप।
1: ये कहते हैं कि अधीर मन निर्णय की गति को बढ़ा सकता है लेकिन उसकी गुणवत्ता है वो घटा सकता है, और वहीं शांत और संतुलित मन अधिक विवेकपूर्ण और टिकाऊ निर्णय लेने में मदद करता है।
0: और अब अगले श्रोता ये कह रहे हैं कि अधीर मन मतलब जल्दबाजी या व्याकुलता, इसमें निर्णय क्षमता एक दूसरे

0: से विपरीत काम करते हैं। जब मन अशांत होता है तब सटीक या सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। इसके चलते अधूरे तथ्यों पर प्रतिक्रिया दे देते हैं, जिसके कारण बाद में पछतावे की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी निर्णय लेना हो उसे शांत चित्त से लें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक और संदेश ये कहता है ममता जी कि मनुष्य का मन जितना चंचल है उतना ही अधीर भी। हर एक बात का उत्तर वो तुरंत चाहता है और हर समस्या का समाधान बिना प्रतीक्षा के खोजता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर सही दिशा नहीं दिखाता और कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर पछताना भी पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जब भी मन अधीर हो तो स्वयं को थोड़ा सा हमें समय देना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, उसके बाद ही निर्णय हमें आगे लेना चाहिए जीवन।
0: और थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि अभी तुरंत निर्णय ले लें, वक्त पे छोड़ देना चाहिए, ये भी जरूरी होता है। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि इंसान का मन तालाब के जल की तरह होता है। मन में उत्पन्न हो रहे विचार पानी में फेंके गए कंकड़ की तरह है, खासकर उस परिस्थिति में जब हम हर वक्त अधीरता में रहे। अधीरता यानी कि बेचैनी। अधीरता में किया गया निर्णय मन की शांत सतह पर लहरों की तरह आता जाता है और हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बेचैनी पर थोड़ा सा अंकुश लगा लें तब हम स्पष्ट रूप से शांत पानी के नीचे तक देख सकते हैं। जब मन बहुत अधिक बेचैन हो तो उसे कुछ समय के लिए तन्हा छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। वैसे भी जब आपको कुछ ना सूझे तो आप अकेले शांत चित्त होकर बैठ जाएं। वो कहते हैं कि खाली बर्तन की तरह मन को खाली कर दें।
1: बिल्कुल।
0: तो देखिए आप
1: थोड़ा सा हम अगर
0: सोच सकते हैं सही तरीके से
1: सही और थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। मान लीजिए बहुत ही ज्यादा व्याकुलता अपने अंदर घिर आई है, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा अपनी सांसों को देखिए, गहरी सांस लीजिए, तो सच में कुछ वक्त के बाद हमें लगता है कि हम मन भी शांत हो गया है और शायद हम कुछ अच्छे से सही और सकारात्मक भी सोच सकते हैं। एक संदेश ये कहता है ममता जी कि एक चंचल और अधीर मन कभी भी तार्किक और सही निर्णय नहीं ले सकता। जीवन या कार्यस्थल, यहाँ पर तरक्की के लिए मन की स्थिरता को बढ़ाना और जल्दबाजी की आदत को छोड़ना ही एकमात्र मार्ग है। और एक और संदेश ये कहता है कि अधीर मन के निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल जीरो रहती है। कुछ धैर्यवान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति धैर्य से थोड़ा शांत होकर सही निर्णय ले सकते हैं। फिर कुछ लोग जो सही में हमदर्द होते हैं उनसे अपने मन की अधीरता को आप साझा कर सकते हैं और वहां से भी शायद आपको सही निर्णय मिल सकता है।
0: अब ये तो अधीर मन से कैसे निर्णय लेते हैं ये बताया, लेकिन कभी किसी श्रोता ने अपना अनुभव नहीं साझा किया है कि कब ऐसी परिस्थिति आई जब आपको निर्णय लेना पड़ा, निर्णय आपका सही था या गलत था। एक गाना सुन लेते हैं, शायद तब तक हमारे श्रोता लिख भेजे और हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा सके। फिलहाल ये गाना

0: ममता जी, फिर भी अगर ऐसा है कि मन तो अधीर ही रहता है और एंजाइटी बनी रहती है, तो बहुत जरूरी है कि अपने आप पर हम काम करें। जैसे कि हम शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि हमें लगे कि तनाव कम हो, कि कहीं पे सैर के लिए निकल जाना, या कहीं कोई ऐसा ग्रुप क्लास कर लेना जहाँ पे कि आपको अच्छा लगे, मिलके लोगों के साथ व्यायाम करना, या कोई मनोवैज्ञानिक सहायता ले लें। अगर आप बार बार ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें हमें बहुत परेशान कर जाती हैं, हम एक थोड़ी सी अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरा सा हलचल हुआ या कुछ उठा पटक हुई, तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या किया जाए, हम क्या करें।
1: अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, इनकी टिप्पणी अभी अभी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है, मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जिसे जितना अधिक प्राप्त होता है ये उतने ही अधिक की कामना करने लग जाता है। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं तो सीमित हैं, लेकिन मानसिक रूप से हर क्षण जन्म ले रही इच्छाओं के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रह पाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तन की भूख सहज है, और जैसे कि तीन पाव की सेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु समेरु। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन इच्छा करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, अधीर मन से तो हम बीच रास्ते में ही अटक या लटक सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा कि अधीर मन से हम बीच रास्ते में अटक जाते हैं, और यही प्रतिकूलता को का सामना करने के लिए हमें अपने आप को एक समर्थ बनाना पड़ता है। कोई शौक हम अपना सकते हैं, पसंदीदा गीत सुनिए, कोई ऐसी क्लास कीजिए, कहीं पे जाइए जहां से आपका मन हमें कुछ प्रसन्नता पाए, अच्छा लगे उसे। तो जब आप घर वापस लौटें, तो आप जब खुद एक अंदर से सकारात्मक वाइब्रेशन लिए हुए होंगे, तो घर में भी वही चीजों को आगे फैलाएंगे। तो मन को शांत रखने के लिए अपनी आदतों को बदलना जरूरी है, कुछ व्यायाम करना जरूरी है, आत्मविश्वासी थोड़ा बनना जरूरी है, और आगे भविष्य के लिए एक स्पष्टता के साथ फिर हम निर्णय भी ले सकते हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि अधीर मन शांत दिमाग से निर्णय लेने का किस्सा मैं बताना चाहूंगा कि बात 2023 की है। छोटे बेटे ने MBBS का एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, और काउंसलिंग सेकंड राउंड में मेडिकल कॉलेज अजमेर में सीट फुल हो गई थी, और अन्य गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के जो टीचर्स थे वो भी राजी थे, सिर्फ मैंने शांति से निर्णय लिया और थर्ड काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया, और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अजमेर में एडमिशन मिल गया। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा इंतजार करो, इंतजार के बाद भी कई बार आपके निर्णय जो सही निर्णय होता है वो सही हो जाता है।
0: बिल्कुल। और एक और हमारे साथी ने एक घटना साझा की है, वो ये कहते हैं कि एक बार ऑफिस में मेरी अपने सीनियर के साथ किसी बात को लेके बहस होने वाली थी। उन्होंने मुझे तुरंत बात करने के लिए बुलाया, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मेरा मन शांत नहीं है, इसलिए मैंने उस समय चर्चा करने के बजाय थोड़ा समय लिया। शाम को जब हमने बात की, तब तक मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका था। हमने आराम से बातचीत की और बात भी अच्छे से सुलझ गई। तो ये कहते हैं कि अगर मैं उस समय गुस्से या आवेश में बात कर लेती तो शायद बात और बिगड़ जाती।
1: तो मतलब क्षणिक और आवेश में लिया गया निर्णय कई बार आपको पछतावा का कारण भी बन जाता है। अब ये बारिश का मौसम तो है ही है, हालांकि मुंबई में भी बारिश रुकी हुई है, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में बारिश हो रही है, और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बारिश हो ही नहीं रही, लोग इंतजार कर रहे हैं बड़ी तत्परता से।

0: लेकिन बारिश आती है तो कुछ सुहावना मौसम कहते हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं तो बुराइयां भी लेकर आती हैं, कुछ परेशानियां भी लेकर आती
1: जैसे
0: हैं।
1: कि
0: जैसे कि बारिश का मौसम सुहाना लगे, फर्नीचर है और लकड़ी के फर्नीचर है खास तौर से, उसमें कई बार दीमक लग जाता है, आपने शुरुआत में कहा था,
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: कई बार दरवाजे कड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जो चर्र की आवाज करते हैं, चर्र
1: बिल्कुल
0: चू। और अगर आप गहरी नींद रात को सो रहे हो और कोई उठे और दरवाजा खूब जोर से आवाज करे तो आपकी नींद भी बाधित होती है।
1: हाँ
0: तो
1: ये बात
0: इसलिए
1: तो है।
0: इनकी देखरेख करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए लकड़ी की अलमारी ठीक से बंद ना हो रही हो, दराज अटकने लगे, चिपकने लगे और हमारे सोफे में से अलग सी गंध आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि बाहर की नमी का असर हमारे फर्नीचर पर होने लगा है,
1: बिल्कुल
0: और किसी को बुलाकर, किसी मिस्त्री को बुलाकर आपको उसे ठीक करवाना चाहिए।
1: ठीक भी कराना चाहिए। और कई बार ममता जी हम परेशान हो जाते हैं कि ये फर्नीचर क्यों इस तरह फूलने लग जाते हैं, तो छोटी छोटी सी बातें कुछ ऐसे कारण है जैसे कि हवा में नमी बढ़ जाती है, लकड़ी उसे जल्दी सोख लेती है और इसलिए फर्नीचर फूलने लग जाते हैं या मुड़ जाते हैं। नमी में दरार, नमी की वजह से दरार और जॉइंट्स भी ढीले हो जाते हैं फर्नीचर के, और लंबे समय तक नमी रहने से लकड़ी में फंगस और दीमक लगने का रिस्क बढ़ जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा है ममता जी कि पॉलिश भी उतरने लग जाती है लकड़ी की, चमक थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है, और अगर कमरे में वेंटिलेशन मतलब हवादार कमरा नहीं है तो वहां पे आप देखेंगे कि नुकसान ज्यादा होने लग जाता है अपने जो भी फर्नीचर है उस कमरे के।
0: और हमारी एक सखी है जिन्होंने कुछ नुस्खे भी बताए हैं कि इनकी हिफाजत के लिए फर्नीचर को हमेशा नमी और बारिश की बौछारों से दूर रखें, उन पर पॉलिश या वैक्स की कोट कराएं और नियमित रूप से सूखे कपड़े से पोंछती रहें। इन दिनों में फर्नीचर को कभी भी गीले कपड़े से ना पोंछें, सफाई के लिए हमेशा सूखे और मुलायम कपड़े का उपयोग करें ताकि नमी अंदर ना जाए, और अलमारी और दराजों में सीलन और फंगस से बचने के लिए एक जेल का नाम लिखा है उस जेल के पैकेट का उपयोग करें, या नेफ्थलिन की गोलियां या कपूर की गोलियां वहां पर रख सकती हैं। जबकि होता क्या है कि आपकी जो सहायिका है, काम करने वाली आती है, एक कपड़ा गीला करती है और पूरे घर में वो
1: पहुंच
0: पोंछ
1: देती हैं
0: देती है,
1: जी।
0: सारे अलमारी जितने टेबल हैं, कुर्सियां हैं, तो वो नमी तो आएगी उसमें।
1: बिल्कुल सही कहा, और इन सब चीजों का भी ध्यान तो रखना ही है। साथ में जब बारिश बहुत ज्यादा होने लगेगी तो मानसून के समय दीवारें खास तौर पे बाहरी दीवारों में नमी बहुत जल्दी सोख लेती है, तो अगर आपकी अलमारी या बिस्तर दीवार से सटा हुआ है तो वो नमी सोख लेगा, तो उसे बस 2-3 इंच थोड़ा सा इन दिनों में जब बरसाती मौसम रहेगा तो उसे थोड़ा सा आगे खींच लीजिए, और इस छोटे से गैप के पीछे हवा का जब प्रवाह बन जाएगा तो लकड़ी में पानी जाने से रुक जाता है, और तेज बारिश के बाद एक बार फिर इसकी जांच आपको बीच बीच में करते रहना बहुत जरूरी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी एक प्राकृतिक सामग्री है जो मौसम के बदलावों, पानी और धूल के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। इसकी चमक और मजबूती को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां और उपाय दिए गए हैं, और बहुत सारे उपाय इन्होंने लिखे हैं। गहरी सफाई के लिए कपड़े को गुनगुने पानी और माइल्ड सोप के घोल में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें। साफ करने के तुरंत बाद सतह को सूखे कपड़े से पोंछना न भूलें। और इन्होंने लिखा है कि केमिकल से बचें और ब्लीच या अमोनिया युक्त रसायनों का सीधे लकड़ी पर उपयोग करने से उसकी फिनिशिंग पूरी तरह से खराब हो सकती है। धूप और तापमान से सुरक्षा, सीधी धूप से दूरी रखें, और भी कुछ सावधानियां इन्होंने बताई हैं जिससे आप अपने फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अब हम क्या कर सकते हैं?
0: गाना सुनवा सकते हैं, तो
1: चलिए
0: ये रहा गाना।

0: प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे और हम बात गाने से पहले लकड़ी के फर्नीचर की कर रहे थे
1: बिल्कुल
0: कि किस तरह से हिफाजत करें लकड़ी के फर्नीचर जल्दी से खराब हो जाते हैं बारिश के मौसम में
1: और तो... जब बहुत शौकीन होते हैं कोई फर्नीचर इकट्ठा करने के और बड़े कीमती और नक्काशीदार फर्नीचर अगर किसी ने रखा हुआ है घर में और ऐसे में कहीं पे कहीं कोई सीलन से दिख जाती है या कोई फफूंद दिख जाती है तो वाकई में लगता है कि चैन हमारे मन को नहीं मिल रहा है ना।
0: बिल्कुल सही कह रही है और जो फंगस दिखाई देता है खास तौर से सोफा है कुर्सियां हैं डाइनिंग टेबल है तो उसमें उसको जरूरी हो जाता है धूप दिखाना। लेकिन आप बताइए कि मुंबई जैसे शहर में जब बारिश होती है तो लगातार बारिश होती है ना कई कई दिन तक यहाँ तक कि 10-10 दिन तक धूप नहीं आती। धूप कहाँ से लाएंगे आप?
1: बिल्कुल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ सूखे कपड़े से ही अपने फर्नीचर को साफ कीजिए। अगर आपके घर में जो हाउस हेल्प जो आती हैं मदद करती हैं जो दीदी उन्हें भी बिल्कुल आप सख्त उस वक्त तो हिदायत दे देनी चाहिए कि गीले कपड़े से बिल्कुल पोंछना नहीं है सूखे और मुलायम कपड़े से अपने फर्नीचर को पोंछा जाए क्योंकि धूप का पता नहीं है कब आएगी। खास तौर पे मुंबई जैसे शहर की अगर आप बात करते हैं तो और
0: फर्नीचर के लिए सही कवर भी जरूरी होता है कि जैसे कॉटन या कोई ऐसा फैब्रिक जिसमें कि हवा आसानी से आ जा सके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और समय समय पर कवर हटाकर हवा भी लगाते रहना चाहिए और अलमारी या ड्रॉर को समय समय पर कुछ देर के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। इससे नमी अंदर नहीं जमा होगी। कपड़ों और सामान को पूरी तरह सुखाकर ही अंदर रखना चाहिए। एक तरीका और है कि आप जब अलमारी और दराज खोलें तो तेज फैन चला दें तो वो जो हवा होती है कृत्रिम हवा ही सही हवा लगेगी तो हवा लगे। जो नमी है वो बिल्कुल कम हो जाती
1: और
0: है।
1: बहुत ही ज्यादा अगर आपको लगता है कि घर में नमी सोख गई है तो हम डीह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में कपूर की टिकिया अलमारी में रख लीजिए या नीम की सूखी पत्तियां भी कहीं कहीं लोग कहते हैं कि उसको रखने से भी जो अंदर अलमारी के अंदर खासतौर पे कोई सीलन आ गई है या नमी है वहां पे इकट्ठी हो गई है तो वो सब बाहर निकल जाती है या सोख लेता है वो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख कर सकते हैं और देखिए ना फर्नीचर कोई बार बार हमारे घरों में बनते नहीं है ममता जी। तो जो भी है जितने भी हमारे पास ये जरूरी सामान और कीमती चीजें इनका हम

0: ऐसी छोटी छोटी बातें अपना करके इनका हम ध्यान रख सकते हैं।
1: और दीपा जी, जब फर्नीचर की बात कर रही हैं, जो कुर्सियां होती हैं, टेबल होती है, डाइनिंग टेबल भी होता है ना घर पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्या करते हैं हम?
0: खाना खाते हैं।
1: तो आज किस खाने की बातें करने वाली
0: आज थी? हम चलेंगे पंजाब की तरफ, जहाँ पे की भरवा पराठे के लिए ये प्रदेश प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग तरह के, बहुत तरह के भरवा पराठे बनते हैं। हमारे सखियों ने लिख भी भेजा है कि ये किस तरह बनाया जाए, तो हम रेसिपी बताएं या एक गीत सुने पहले?
1: नहीं, पहले रेसिपी बताएंगे, क्योंकि एक हमारी सखी ने लिख भेजा है कि पेड़ा लस्सी पंजाब का एक प्रसिद्ध और समृद्ध प्रादेशिक पारंपरिक पेय है, जो मुख्य रूप से अमृतसर शहर में बेहद लोकप्रिय है। ये सामान्य लस्सी का एक बेहद शाही और पारंपरिक पंजाबी पेड़े मावा खोए की बनी मिठाई को एक साथ मथ कर तैयार किया जाता है। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की रेसिपी पता चली है
0: जी। ये अलग की रेसिपी है, लेकिन हमने अपने श्रोताओं से मांगी थी, सखियों से मांगी थी भरवा पराठों की रेसिपी। तो भरवा पराठे में, जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, बहुत तरह के पराठे होते हैं, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, मूली का पराठा। तो दो पराठों के बारे में पहले बता देते हैं हम। आलू का पराठा जैसे सभी जानते हैं लोकप्रिय है, सभी का पसंदीदा नाश्ता होता है। उबले हुए, मैश किए हुए आलू में प्याज, हरी धनिया, अजवाइन, मिर्च, या आपके घर में जो पसंद आता है वो सब डाल के, मसाले डाल के ये मिश्रण तैयार करना है। और गेहूं के आटे तो जैसे घरों में लगता है वैसा ही लगेगा। इस मसाले को आटे के अंदर भर के लोई बना के हम जैसे साधारण पराठे बनते हैं उस तरह से इसे बनाना है। और इसी तरह से गोभी का पराठा भी बना सकते हैं आप। कद्दूकस की हुई ताजी गोभी ले लीजिए, उसमें मसाले, अदरक, लहसुन, ये सबको डालकर एक हल्का सा इसके भून लीजिए, ताकि वो कच्चापन उसमें ना लगे और पराठा भी गीला ना हो, अंदर का जितना भी उसका मॉइस्चर है वो सूख लेता है बघार करने से। और इस तरह से एक और पराठा भी बना सकते हैं, पनीर का पराठा। तो कद्दूकस किए हुए पनीर, फिर लाल मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी, या इसके अलावा आप कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर होता है ये वाला पराठा, जो पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है।
1: और मटर का पराठा भी बहुत प्रसिद्ध है
0: जी।
1: जो मटर, हरी मटर को अच्छी तरह से पहले तो छिलका निकाल के उसको धोकर और बॉईल कर लें, उबाल लें, और उबालने के बाद उसके दो तरीके होते हैं, या तो उसको मैश कर लें या फिर मिक्सी में उसको क्रश कर ले, क्रश करके आटे में मिला लें। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको मैश करके थोड़ा सा कढ़ाई में भून लें, ताकि उसकी जो पानी होता है निकल जाए, और उसमें जो भी लहसुन, अदरक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची डालकर आटे में, आटे की लोई बना के उसमें भर लें, वो भरवा पराठा जैसा कि हमने कहा ही है, तो तवे पर सेक ले। पराठा बनाने का तरीका तकरीबन एक ही होता है, पर स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हमारी जो सखियां और सखा सुन रहे हैं, हमें लगता है कि आएंगे, आजमाएंगे और बताएंगे हमें, और फिर किसी दिन किसी और प्रदेश की व्यंजन की हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गाने की, सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: मासूम फिल्म का गाना था, आरती मुखर्जी की आवाज, गुलजार के बोल थे, राहुल देवर्मन का संगीत था। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं दीपा जी, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाए या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सेहतनामा।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। ये मेरी खुद किस्मती है कि मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ और इतने लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, और विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं तो हमें ये पता चला है कि आप गानों के बड़े शौकीन हैं, संगीत से भी प्यार करते हैं, तो एक सवाल हमारा ये है कि विविध भारती के स्टूडियो में आपको आकर एहसास कैसा हो रहा है?
2: पुरानी यादें ताजा हो रही है
1: जी।
2: उस जमाने में विविध भारती ही एक ऐसी चैनल थी जिसके द्वारा हम अच्छे अच्छे गाने सुनते थे। इवन इन मेडिकल प्रोफेशन जब हम थक जाते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, यही रेडियो की आवाज,
1: क्या बात,
2: यही आप लोगों की आवाज और यही अच्छे गाने हमें कुछ एक रिलैक्सेशन देते हैं और अगली चैलेंजेस के लिए वापस तैयार कर देते हैं। सो विविध भारती एक ऐसी संस्था है, इतने सालों से हम विविध भारती के बिना कभी नहीं नहीं सकते हैं और आज भी ये देख के बहुत खुशी होती है कि इतने कॉम्पिटिटिव जमाने में विविध भारती ने भी इतना ही प्रोग्रेस किया है कि अभी भी वो इतनी ही पॉपुलर संस्था है और कभी भी चांस मिला वापस विविध भारती में गाने सुनने की हमेशा इच्छा रहती है।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, हमें बड़ा गौरव का एहसास होता है जब आप सबकी इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। तो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज सेहतनामा कार्यक्रम में जो हमने विषय रखा है वो है प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी हुई अन्य बीमारियां और बीमारियों के निवारण। तो बताइए हमारे श्रोताओं को कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आजकल बहुत आम हो रहा है, तो प्रोस्टेट का बढ़ना क्या है और शरीर में इसका मुख्य काम

0: क्या होता है?
1: राइट, हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि रहती है
0: जी।
1: उनका कार्य है कि वो जूस सिक्रेट करता है जो हमारे वीर्य या सीमन का पार्ट है।

0: यूरिनरी ट्यूब पे दबाव आने से यूरिन करने की दिक्कतें बढ़ने लगती है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स है एज एज एडवांसेस, जैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम एज रिलेटेड है और जैसे एज बढ़ती है लोगों की प्रोस्टेट बढ़ने लगती है और उनके प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट डजंट मीन के वो प्रॉब्लम देने वाली है या उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सो प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: जी, तो आपने जिक्र किया कैंसर का, तो अमूमन जैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है लोग यही मानते हैं कि अब उनको कैंसर होना पक्का है, आगे चल के कैंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ तक मिथ है, कहाँ तक इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि प्रोस्टेट किस तरह की बीमारी है और कैंसर क्या है।
0: राइट, सो हर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से कैंसर होता है ये गलत बात है और ये मिथ है। आजकल लोग इतनी इंफॉर्मेशन के कारण जब ये सब चीजें पढ़ते हैं सुनते हैं बहुत घबरा जाते हैं। दूसरी बात हुए कि रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी बात है
1: जी,
0: लेकिन वहां कहां भी रिपोर्ट्स में पढ़ लिए कि प्रोस्टेट बढ़ गई है लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं
1: जी, जी।
0: और फिर डॉक्टर गूगल के पास जाके काफी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन होना महत्व का है लेकिन उसके कारण अननेसेसरी टेंशन लाना जरूरी नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: सो हर प्रोस्टेट बढ़ने से उनमें कैंसर होगा ये बात सही नहीं है
1: जी।
0: लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो बिनाइन है नॉर्मली उसके साथ में कैंसर भी हो सकता है। सो ओनली थिंग इज रेगुलर चेकअप बाय एन एक्सपर्ट जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो समय सर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और समय सर उसे हम ट्रीट कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन प्रोस्टेट बड़ी या एनलार्ज प्रोस्टेट हुई उसका मतलब अभी कैंसर हो जाएगा ये गलत बात है और अननेसेसरी उसके बारे में टेंशन रखना वो ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल, तो प्रोस्टेट बढ़ा है और क्या है इसके लक्षण, कैसे पता चले एक मरीज को, और दूसरा इसकी जांच की पद्धति क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं।
0: राइट, पहली बात मैंने बताया ऐसे हेल्थ चेकअप में काफी समय रिपोर्ट में आएगी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो बढ़ी हुई प्रोस्टेट के लिए या एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है
1: जी।
0: प्रोस्टेट के लिए हम तीन चीजें देखते हैं
1: जी।
0: एक कैंसर नहीं वो हम चेक करते हैं, दूसरी बात उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस या किडनी डैमेज नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं, और तीसरी बात कि उनके सिम्टम्स के कारण पेशेंट को कितनी दिक्कतें होती है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है
1: जी। जी,
0: सो जब रिपोर्ट दिखाता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट है पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, वो चेकअप किया इसलिए एनलार्ज प्रोस्टेट करके वो दिखा रहा है
1: जी,
0: ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है लेकिन तपास करनी जरूरी है
1: जी। जी,
0: सिम्टम्स जिनको प्रॉब्लम देते हैं उनको दो प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं
1: जी।
0: एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और वॉइडिंग सिम्टम्स, जहां यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन की धार वीक होना, यूरिन के लिए जोर करना, यूरिन के लिए बार बार जाना, और दूसरी जो है इसे हम स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं, उसके कारण जब यूरिनरी ब्लैडर पे असर होता है तो कभी कभी पूरी यूरिन निकलती नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाना, ये सब सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं
1: जी। जी,
0: लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये सब सिम्टम्स खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही ऐसी बात नहीं है, बाकी रोगों के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं
1: जी।
0: जैसे डायबिटीज, जहां डायबिटीज के कारण काफी लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस डिजीज जिसके कारण, या पथरी ब्लैडर में रही, सो ये सब सिम्टम्स के काफी कारण हो सकते हैं। ये सिम्टम्स हुए उसका मतलब ये नहीं कि ये खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही हुआ है
1: जी। जी, जी,
0: इसीलिए हम अब ये सिम्टम्स को LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स कहते हैं
1: जी।
0: और फिर जांच करना जरूरी है जानने के लिए।

0: कि ये प्रोस्टेट के कारण है या और कुछ कारण के हिसाब से ये सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है।
1: जी जी, तो टेस्ट किस तरह के होते हैं, मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी या क्या तरीका है?
0: राइट, सो पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को।
1: जी जी,
0: उसका स्कोर रहता है जिससे हमें आइडिया आता है कि सीवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है।
1: जी,
0: बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन महत्व का रहता है कि प्रोस्टेट हम चेक करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस कैंसर के फील होते हैं कि नहीं, यूरिन की ट्यूब व्यवस्थित है कि नहीं, ब्लैडर कुछ भरा हुआ नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। देन वी डू लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड शुगर कैसी है, सीरम क्रिएटिनिन, जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों किडनी पे प्रेशर आके क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है। यूरिन टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कभी कभी ब्लड तो नहीं जा रहा है, ये यूरिन टेस्ट से हम पता करते हैं। एक महत्व की टेस्ट है जिसे हम PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, या ब्लड टेस्ट है।
1: जी,
0: ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्यता है या नहीं है। जिनको ये नंबर या PSA का रिपोर्ट ज्यादा रहता है उनको प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत रहती है।
1: जी,
0: ये भी गलत मानना है कि एक बार PSA का नंबर ज्यादा आया मतलब कैंसर ही है। PSA बढ़ने के भी अलग अलग कारण है, कभी प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहां इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से, बट अगर PSA का नंबर ज्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं।
1: जी,
0: सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है, ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं। ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं, या अंदर यूरिन रह जाती है। सो ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती
1: जी,
0: है।
1: जी,
0: ये भी जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना जरूरी नहीं है।
1: ओके,
0: बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सो साइज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं।
1: जी जी,
0: क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट, कल ऑपरेशन कर दीजिए। सो ये अगेन गलत बात है। खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक्यता है कि नहीं। इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीजन कि आगे हमें क्या करना है।
1: जी, बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी। और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती है कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं। तो बेहतर है कि एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है। अब हम यहाँ पर तय कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना आना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
0: जरूर, इस प्रोफेशन में भी हम मानते हैं कि हमेशा हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है।
1: क्या बात है।
0: और लोगों के गुड विशेस की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। सो ऊपर वाले को याद करके, बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम,
1: दो आंखें बारह हाथ,
0: दो आंखें बारह हाथ।
1: क्या बात है, सुनते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: और डॉक्टर साहब आपने कहा कि ऊपर वाले का वरद हस्त जरूरी होता है, सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज के लिए।
1: आपकी बात बहुत सच है। मैं बताऊं
0: जी,
1: लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं
0: जी,
1: लेकिन ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले ने जो हमको काम दिया है वो कैसे अच्छी तरह से करे वो हमारी इच्छा रहती है। सो बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। अच्छी बात है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है।
0: जी, जी।
1: लेकिन हम भगवान नहीं है, हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की जरूरत पड़ती है।
0: जी सही बात है, लेकिन एक मरीज यही मान के चलता है क्योंकि डॉक्टर के बदौलत वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि मरीज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की जरूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से दोनों बताइए।
1: राइट, सो प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आया है। एक जमाना था कि पेशेंट के पास और हमारे पास खाली तीन ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना,
0: जी,
1: या
0: जी.
1: तो ऑपरेशन करना। जैसे मैंने बताया कि जी. हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवेल्युएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फायदा नहीं होता है। सो पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी, रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड पार्ट इज मेडिकेशंस। आजकल काफी दवाएं आई है जिसके कारण यूरिन करने में सुविधा होती है, अंदर ज्यादा यूरिन रहती नहीं है। प्रोस्टेट का जो भाग है वो थोड़ा दवाई से खुल जाने से पेशेंट को काफी आसानी और आराम मिलता है, जिसे हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं और फाइव रिडक्टेस इनहिबिटर, ये कुछ दवाएं के ग्रुप्स है जिसके कारण प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आ गया है।
0: जी।
1: अगर दवाई देने के बावजूद भी लोगों की तकलीफ कम नहीं हुई तब उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इस मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
0: जी।
1: कभी कभी उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है जिसे हम यूरोडायनामिक्स कहते हैं।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि यूरिन करने के लिए दो चीजें महत्व की, यूरिनरी ब्लैडर में काफी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा।
0: जी जी।
1: तो कुछ केसेस में हम ये स्पेशल यूरोडायनामिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के लिए।
0: जी।
1: पहले के जमाने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन था।
0: जी।
1: आजकल दूरबीन से, जिसे हम TUPR और टर्फ कहते हैं, जहां अंदर से ही लेजर से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से रास्ता बड़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को यूरिन करने में काफी आसानी हो जाती है। आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं, जैसे रिज्यूम है या फिर यूरोलिफ्ट है, ये सब नई तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सके और पेशेंट को राहत दे सके ये कोशिश रहती है।
0: जी।
1: लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निकें हैं, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है। सो ये नई नई चीजें आई हैं, हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं।
0: जी, जी।
1: और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीजन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर भी रहते हैं।
0: जी, जी।
1: हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्च पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है।
0: जी।
1: सो इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे नई नई टेक्निक काफी इसका प्रचार हो रहा है।
0: जी, जी।
1: और पेशेंट वो सोच के आ जाते हैं कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, और वो करा के आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आजकल ये जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज घबराता है कि अरे हमें दो तीन दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
1: सो कुछ टेक्निक है जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है, कैथेटर और बैग, एंड देन पेशेंट क्वाइट ऑल राइट. जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जिसे हम TORP कहते हैं या होलेप जो लेजर से करते हैं, उसके लिए 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और नली 3 या 4 दिन रखनी पड़ती है. कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही, काफी बड़ी प्रोस्टेट रही, तो फिर नली हमें ज्यादा समय तक रखनी पड़ती है. लेकिन पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था, वो अब नहीं रहा है. पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है.
0: जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बात थोड़ी सी घबराने की भी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के नाम से कोई भी मरीज थोड़ा ना थोड़ा घबरा ही जाता है, भले ही 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़े. तो थोड़ी घबराहट कम करने के लिए एक गाना सुन लेते हैं. कौन सा गाना सुनवाए?
1: राजेश खन्ना जी का गाना सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें.
0: वाह क्या बात है, किशोर कुमार की आवाज.
1: किशोर कुमार की आवाज, क्या गाना है
0: जी. सुनते हैं यही गाना, फिल्म सफर.

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी ऑपरेशन की, सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वजन बढ़ना, तो लोग इन सब को भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं, और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वजन बढ़ने का प्रोस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सब चीजें आती है, डायबिटीज, वेट गेन, ये सब चीजों का, क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोस्टेट बढ़ता है, सो ये सब का कुछ कुछ जरूर प्रभाव होता है, लेकिन ये सब चीजें अभी थियरी है। सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है, वो किसी को पता नहीं है।
0: जी, जी।
1: लेकिन ये सब चीजें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस से आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपके शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है कि नहीं, सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली असर करती है, और उसकी कुछ असर जरूर प्रोस्टेट में होती है।
0: जी।
1: लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है।
0: जी, लेकिन मोटापा और वजन बढ़ना तो वैसे भी नुकसान
1: जरूर
0: है।
1: जरूर।
0: तो डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है, या कैंसर प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है, क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है?
1: सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है, और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है। स्मोकिंग इज डेफिनेटली वन फैक्टर, कुछ चीजें जेनेटिक्स हैं, जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उनको सावधानी रखना बहुत जरूरी है, और रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। सो ये चीजें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा। सो इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है, जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
0: जी जी। यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है?
1: सो जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना, ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए।
0: जी, जी।
1: क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है, लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की। सो ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी रहता है। लेकिन ज्यादा करके लोग यूरिन के प्रॉब्लम से ही आते हैं,

0: जो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के लिए कॉमन सिम्टम्स है, जांच करने से ही पता चलता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेट है या उसमें कुछ कैंसर के चेंजेस हुए के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है।
1: तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा।
0: एब्सोल्युटली नहीं, और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है
1: जी।
0: सो हर पुरुष को मैंने बताया ऐसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है, लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है
1: जी। और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं उसके?
0: सो प्रोस्टेट कभी कभी यंग एज में वहां इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेटाइटिस जिसे हम कहते हैं
1: जी हाँ।
0: कभी कभी वहां पस जमा होता है जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं। सो ये चीजें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती है, और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे, कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट में हो सकती है
1: जी जी।
0: सो इन्फेक्शन एक बात है, फिर दूसरी बात ही बिनाइन प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं या कैंसर प्रोस्टेट के कारण तकलीफ हो सकती है
1: जी। तो इसमें क्या पुरुषों की सामान्य जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो?
0: जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काफी लाइफस्टाइल चेंज होती है
1: जी।
0: अब एक जमाना था कि आफ्टर 60 इयर्स लोग मानते थे कि अभी वानप्रस्थ आश्रम है, मुझे दिन में 10 बार या रात को 5 बार यूरिन जाने की अगर जरूरत हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज लोग 60, 70, 80 काफी एक्टिव है, और जब यूरिनरी समस्या बार बार जाना, कंट्रोल नहीं कर सकना, काफी टेंशन देती है
1: जी।
0: आप बंबई की बात देखिए, अगर किसी को बोरीवली से चर्चगेट तक सफर करना है गाड़ी में और उनकी समस्या है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है कि कहां मुझे सुविधा मिलेगी, कहां मैं यूरिन के लिए जा सकूंगा। और फिर जब ये सब ख्याल नहीं करते हैं, यूरिन अंदर ज्यादा भरी हुई रहती है, तो फिर यूरिन की ब्लैडर भी वीक होने लगती है, फिर उससे कभी कभी इन्फेक्शन की भी समस्या आने शुरू हो जाती है। सो यस, स्ट्रेस के कारण भी कुछ लोगों को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है। सो साइकोलॉजिकली ऑल्सो जब लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है तो दोनों चीज होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ते हैं और यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ने से भी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है,
1: दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक गाना आना चाहिए, कौन सा गाना?
0: एक किशोर कुमार जी का गाना है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो,
1: ब्लैक पेंसिल काफी का गाना।
0: जी हाँ जी, रोमांटिक गाना है
1: जी,
0: लेकिन किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाना गाया है
1: जी जी। डॉक्टर साहब, आपने भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिक्र किया था, प्रोग्राम्स म्यूजिकल प्रोग्राम में बड़े सक्रिय रहते हैं, देखने जाते हैं स्टेज के प्रोग्राम, और आपने बताया कि पहले गाया भी करते थे
0: तो हाँ जी,
1: तो यहाँ गा के सुनाएंगे?
0: नहीं, अब क्या है, कुछ वॉइस की तकलीफ हुई है इसलिए गाना डिफिकल्ट हो रहा है लेकिन एक जमाना था गाते थे
1: जी।
0: और यस, म्यूजिक इज सच अ सूदिंग थिंग कि कोई भी स्ट्रेस को कम कर देती है
1: जी जी।
0: और कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब हमारा, जब हम कभी कभी ऑपरेशंस में, कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट में, हम 24 घंटे 36 घंटे एक कंटिन्यूसली काम करते हैं, उस समय म्यूजिक का सहारा बहुत जरूरी हो जाता है
1: जी।
0: और आप जानते हैं कि लोग म्यूजिक थेरेपी भी देते हैं
1: जी।
0: सो म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस
1: जी जी।
0: सो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो गाते भी हैं, म्यूजिक में दिलचस्प भी है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है जो स्ट्रेस कम करने के लिए महत्व की हो जाती है
1: जी। तो इन बीमारियों पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है क्या?
0: क्यों नहीं, अगर स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप यूरिन के बारे में सोचेंगे नहीं,
1: बंद हो जाएगा जी बिल्कुल। तो सुनते हैं ये गाना ब्लैकमेल फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले ये बातें हो रही थी स्ट्रेस रिलीज की और यूरिन पास करने की बात आप कर रहे थे बार बार, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन बात हो गई है रात में खास तौर से। कुछ लोगों को देखा है कि 3-4 बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं और जब जांच कराते हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है, तो ये क्या वजह हो सकती है और क्या कुछ सावधानी रखें कि ये स्थिति से मुक्ति मिले उन्हें?
1: राइट, सो पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके जानना जरूरी रहता है कि डायबिटीज जैसी बीमारी नहीं है या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है और ज्यादा यूरिन ब्लैडर में रहती नहीं है, ये पहले हम देखते हैं
0: जी।
1: दूसरी बात लाइफस्टाइल, जैसे आप लेट डिनर लेंगे, रात तक पानी पीते रहेंगे, सो फिर वो ज्यादा यूरिन जमा होके वो बार बार जाने की इच्छा बनी रहती है क्योंकि एक समय में पूरी यूरिन खाली नहीं होती है। तीसरी बात है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी, जो हार्मोनल किडनी चेंजेस होने के कारण किडनी ज्यादा यूरिन रात को बनाती है और फिर वापस बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके कारण भी बार बार रात को यूरिन जाना जरूरी हो जाता है। सो काफी ऐसे जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से लोगों की लाइफस्टाइल और नेक्स्ट डे काम करने में काफी दिक्कतें आने लगती है। सो ये एक बड़ा विषय है जो ऑलवेज प्रोस्टेट के ही कारण है वैसा नहीं है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफी बाकी भी ऐसे कॉजेस है जिसके कारण ये नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। कुछ लोगों की एसेट स्लीप डिस्टर्बेंस की पैटर्न रहती है और फिर थोड़ा सेंसेशन हुए वो बार बार बाथरूम में जाते हैं, सो ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण बार बार जाते हैं या बार बार यूरिन जाने से स्लीप डिस्टर्ब होती है।
0: जी, जी।
1: तो ये सब चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हर समय खाली दवाइयों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ऑपरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ये नहीं होता है। और ये भी जानना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग डेस्परेट होके आ जाते कहते कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि रात की मेरी तकलीफ चली जानी चाहिए, लेकिन ये गलत बात है
0: जी, जी।
1: क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकते हैं, इसलिए इस पेशेंट्स में ये समझना बहुत जरूरी है कि किस कारण से उनकी ये रात की फ्रीक्वेंसी उन्हें ट्रबल दे रही है।
0: तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आपने नींद का बताया और दूसरा पानी ज्यादा पीना, लेकिन कई बार लोग अमूमन बार बार बाथरूम जाते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या क्या ज्यादा होती है या फिर?
1: सो यस, महिलाओं के प्रॉब्लम थोड़े अलग रहते हैं
0: जी।
1: जब उनकी मेनली जिसे हम फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी प्रॉब्लम कहते हैं उसके कारण कुछ अलग रहते हैं। पहली बात कि काफी महिलाओं में बचपन से आदत हो जाती है कि समय समय से यूरिन नहीं करते हैं क्योंकि सुविधा नहीं मिलती है, और जब ज्यादा यूरिन जमा होने लगता है धीरे धीरे पेशाब की थैली और यूरिनरी ब्लैडर वीक बनने लगती है, फिर उन्हें पेट का प्रेशर लगा के वो यूरिन खाली करनी पड़ती है
0: जी।
1: जब एक समय में खाली नहीं होती है तो फिर बार बार जाके उनको यूरिन खाली करनी पड़ती है, ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर कहते हैं, जो कभी कभी कुछ लोगों को कॉफी टी इसके कारण ब्लैडर इरिटेशन होने से बार बार जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है स्ट्रेस लेवल
0: जी।
1: कुछ लोगों को जब भी स्ट्रेस बढ़ता है वो इमीजिएट उनको लगता है मुझे जाके यूरिन करनी चाहिए
0: जी।
1: सो और फोर्थ इन्फेक्शन विच इज वेरी कॉमन इन लेडीज, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है। बाकी काफी अलग अलग कारण हैं लेकिन ये कॉमन कारण है
0: जी।
1: और जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी तकलीफ बन जाती है और लेडीज में ये काफी इंसिडेंस काफी ज्यादा है। इस पेशेंट्स को पहले तो जैसे मैंने बताया कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करके हम रूल आउट करते हैं कि अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस कि काफी लोग मानते कि बहुत पानी पीना चाहिए, सच बात है पानी पीना जरूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी का प्रॉब्लम है तो वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है
0: जी।
1: तीसरी बात जिनको डेफिनेटली कैफीन या कॉफी और टी से होता है उसका प्रमाण कम करना जरूरी हो जाता है
0: जी।
1: और आजकल काफी दवाइयां आई हैं जिससे ब्लैडर को रिलैक्स करने से, ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ने से वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकती है। और फोर्थ, कुछ लोगों को जो स्ट्रेस इतना तकलीफ देता है, आई थिंक योगा, एक्सरसाइजेस, ऑल दिस थिंग्स हेल्प देम इन रिलैक्सिंग द ब्लैडर मसल्स ताकि वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सके। सो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा महत्व है ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ट्रीट करने में, और दूसरा यूरिनरी इन्फेक्शन अवॉइड करना जरूरी हो जाता है।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, आप इन्फेक्शन की बात आपने कई बार कही, तो इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे किया जाए, क्या वजह हो सकती है, महिलाओं में पुरुषों में अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
1: एक तो एडिक्वेट पानी पीना भी जरूरी है
0: जी,
1: बहुत कम पानी पीना ठीक नहीं है
0: जी।
1: दूसरी बात, समय समय से यूरिन कर लेना है। तीसरी बात, हम देखते हैं कि कभी कभी अंतर कोई सिस्टम में कारण नहीं, जैसे ब्लैडर स्टोन से, किडनी स्टोन से, जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के कारण जब शुगर यूरिन में से जाती है उनको भी इन्फेक्शन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। सो ये चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: There are young ladies जो after sexual activity also उनको infection होने की tendency रहती है
0: जी।
1: So I think gynecologist को मिलके या urologist को मिलके किस lifestyle changes पहले चेंज करके अगर इन्फेक्शन के इंसिडेंस कम हो जाए वो पहले कोशिश करनी है
0: जी।
1: फिर तपास करके ऐसे कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए तो उनको ट्रीट करना जरूरी है। और थर्ड, फिर जरूरत पड़ी तो दवाइयों से ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं
0: जी।
1: वेरी रेयरली हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों भी कभी ये सिम्टम्स के साथ पेश होती है, इसीलिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना जरूरी है
0: जी।
1: क्योंकि उनसे कारण भी ब्लैडर में इरिटेशन होने से बार बार यूरिन जाने की उनको टेंडेंसी रहती है
0: जी। जी,
1: कुछ कंडीशन जैसे हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं, जो बेसिकली नर्व्स और मसल्स के स्पैजम्स के कारण नर्व्स पे प्रेशर आने से उसकी असर से भी लेडीज को बार बार जाने की टेंडेंसी होती है, पेन होता है, तो ये काफी चीजों से ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट ज्यादा करके कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ प्राइमरी मेडिकेशन से काफी लोगों को राहत मिल जाती है। अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, और काफी लेडीज तकलीफ सह लेती है कि कहां किसी को हम इसके बारे में बताएं, ये गलत बात है। आजकल इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इससे ये जो प्रॉब्लम है उससे कंट्रोल करना अभी आसान हुआ है।
0: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमेश ओझा से, जो कि एक मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट है और बड़े ही जानकार डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं हम।
1: जरूर,
0: कौन सा गाना सुनवाए?
1: मुझे लगता है अरिजीत सिंह का नैना, जो दंगल मूवी में है
0: जी,
1: बहुत अच्छा गाना है और वहाँ इमोशंस भी बहुत अच्छे, फादर डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में बताया है, वो गाना अच्छा रहेगा
0: जी। सुनते हैं यही गाना अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले जो चर्चा हो रही थी वो यूरिन पर हो रही थी, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम अलग होती है, पुरुषों में अलग भी होती है, और एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उन्हें शायद यूरिन की समस्या से ज्यादा उन्हें जूझना पड़ता है, और एक है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह से बचाव कर सकते हैं या क्या एहतियात बरत सकते हैं, क्या ये नॉर्मल है या कुछ लोगों को ही होता है?
1: सबको होता है ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जरूर ये तकलीफ देती है, स्पेशली आगे बताए से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण ये सिम्टम्स बढ़ते हैं।
0: ओके।
1: और इन्फेक्शन की शक्यता रहती है।
0: हुँ.
1: क्योंकि प्रेगनेंसी के समय भी इतने बॉडी चेंजेस और हार्मोन चेंजेस होते हैं कि कभी कभी इसके कारण ये तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं में पहले रहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के समय तपास करने से पता चलता है कि उनको स्टोन है या दूसरी कुछ तकलीफ है। सो ये भी कारण से कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, बट बेसिकली दिस आर बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस कि उनको ये तकलीफें होती है। अगर इन्फेक्शन होता है तो उस समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में
0: जी।
1: और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत महत्व का हो जाता है
0: जी।
1: क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उसके असर बच्चों पे न पड़े, और उस समय दवाइयां ऐसे यूज करनी पड़ती कि जिसके आड़ असर उस मासूम बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए।
0: जी जी। और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण है रिलेशन आपस में, तो इन्फेक्शन के दौरान क्या ये स्थिति ठीक रहती है, तो ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: वो अवॉइड करना जरूरी है, और अगर बार बार ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच करनी जरूरी है
0: जी।
1: क्योंकि कभी कभी कहां से वो ट्रांसमिट होता है वो बताना मुश्किल हो जाता है
0: जी।
1: सो ये महत्व की बात है कि दोनों की व्यवस्थित जांच होनी चाहिए और उस हिसाब से ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाते हैं
0: जी। इस बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी है कई बार आजकल, जब न्यू कपल खासतौर से, और हमने सुना है कई कपल एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से।
1: सो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ये सही नहीं है
0: जी।
1: हर समय पार्टनर्स के कारण ही इन्फेक्शन होता है वैसा नहीं है
0: जी।
1: हर पेशेंट whether is a man or a woman, उनके खुद के कारणों से भी इन्फेक्शन हो सकता है
0: जी।
1: दूसरी बात है, हर इन्फेक्शन कंटेजियस है ऐसा भी नहीं है
0: जी।
1: सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि मेडिकल एडवाइस लेके ये जानना जरूरी है कि किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है, और किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है
0: जी। बिल्कुल।
1: अल्टीमेटली सेक्सुअल लाइफ ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेल्थी हैप्पी सेक्सुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। सो कभी कभी इस सोच से, इस डाउट से, इट इफेक्ट्स द सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो।
0: बिल्कुल।
1: ये भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यंग कपल या फॉर एनीबडी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। सो ये बेहतर है कि आप डॉक्टर से बात करें, अगर जरूरत तो व्यवस्थित जांच करें, और इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं उसके बारे में जरूर हम एडवाइस दे सकते हैं
0: जी। बिल्कुल। हमारा ये प्रोग्राम पूरे देश में जाता है और बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर ऐसी स्थितियां बहुत सारी आती हैं, तो आपकी इस बात से हमारे वो श्रोता प्रभावित होंगे, और जब कभी ऐसी स्थिति आती है, इन्फेक्शन जैसी नौबत आती है, तो डॉक्टर की शरण लें और जांच जरूर करवाएं।
1: और पार्टनर को एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: कुछ चीजें हम मान लेते हैं और उसके बारे में बात करना हम व्यवस्थित नहीं समझते हैं, लेकिन इससे शर्म के मारे में कि ये बात हम कैसे करें, लेकिन ये महत्व का है कि ऐसे कुछ रहा तो ये डाउट्स क्लियर करें और फिर मेडिकल एडवाइस ले, ताकि अननेसेसरी इसके कारण रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए
0: जी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है और वो कॉमन हो रही है, वो है यूरिन लीकेज, कि यूरिन लीकेज होता है और इलाज के बावजूद नहीं ठीक होता है, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: जरूर। लीकेज के अलग अलग प्रकार रहते हैं, कुछ है जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब नॉर्मली लीकेज नहीं होता लेकिन एक बार इच्छा हुई फिर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है।
0: ओके।
1: ये कुछ जो जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं उसके कारण होता है, और उसके कारण जैसे मैंने पहले बताया, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके अगर यूरिनरी ट्रैक नॉर्मल है तो दवाइयों से और लाइफस्टाइल चेंजेस से उसे हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं
0: जी।
1: दूसरा इसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं
0: okay.
1: कि जहां पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के कारण ये कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, ताकि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है वो मसल्स वीक होने से यूरिन कंट्रोल जो होता है वो वीक हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है ज्यादा करके प्रेगनेंसी के बाद में, ज्यादा करके वहां स्नायु पे कुछ और ऑपरेशन हुआ, या कभी कभी एजिंग के हिसाब से ये सब मसल्स वीक होने से जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो चाहिए इतना प्रेशर से जब भी खांसी आती है या जोर से हंसना आता है वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कभी कभी एक्सरसाइजेस और फिर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करके वो जो स्नायु को कैसे टाइट करना या जो यूरिनरी पैसेज है उसका एंगल चेंज करना महत्व का हो जाता है, ताकि एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेट ट्रांसमिट होके यूरिन लीक ना हो जाए
0: जी।
1: सो ये चीजें पहले हम हमेशा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से कोशिश करते हैं, जरूरत पड़ी तो दवाई से कोशिश करते हैं, और फिर ऑफ कोर्स जरूरत पड़ी तो इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर से वो रास्ता थोड़ा टाइट करके, ताकि वो प्रेशर कंट्रोल करने में इजी पड़ता है और लीकेज कम हो जाता है
0: जी। दोस्तों सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग, इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हम हाजिर हैं लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

आज युवानी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी युवा दोस्त अर्पिता का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप भी मेरी तरह एकदम स्वस्थ होंगे। आइए दोस्तों, बिना देर किए बताते हैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण संरक्षण में युवा सक्रियता की भूमिका पर। साथ ही सृजन कहानी में सुनाएंगे आज सृजन कहानी, और वहीं डेली ट्रिविया एंड फन फैक्ट्स में होगी रेडियो से जुड़ी रोचक बातें और युवाओं के लिए खास जानकारी। वहीं हमेशा की तरह करंट अफेयर्स पर भी आपको अपडेट करेंगे, और इन सब के साथ कार्यक्रम में गीत संगीत का सिलसिला भी चलता रहेगा। तो आने वाले 30 मिनट बेहद खास होने वाले हैं, इसलिए आप बने रहे मेरे साथ यानी आपकी रेडियो दोस्त अर्पिता के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा का विषय है पर्यावरण संरक्षण में युवा सक्रियता की भूमिका। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई, जल संकट और जैव विविधता के हाश जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। ऐसे समय में युवाओं की जागरूकता, ऊर्जा और सकारात्मक सोच पर्यावरण की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, हरियाली और संतुलित जलवायु के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने पर्यावरण को गंभीर संकट में डाल दिया है। ऐसे समय में कोई वर्ग सबसे अधिक परिवर्तन ला सकता है तो वह युवा वर्ग है। युवाओं में नई सोच, उत्साह, नवाचार और समाज को बदलने का जज्बा होता है। वे नई तकनीकों का उपयोग करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं। वृक्षारोपण, एक पेड़ केवल ऑक्सीजन ही नहीं देता बल्कि जलवायु को संतुलित रखने, मिट्टी के कटाव को रोकने और अनेक जीव जंतुओं को आश्रय देने का कार्य करता है। यदि प्रत्येक युवा वर्ष में कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो हरित क्रांति को नई दिशा मिल सकती है। दूसरा, प्लास्टिक का कमी उपयोग। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरा है। युवा कपड़े या जूट के थैले अपनाकर और दूसरों को भी प्रेरित करके इस समस्या को कम कर सकते हैं। तीसरा, जल संरक्षण। वर्षा जल संरक्षण, जल स्रोतों की सफाई जैसे कार्यों में युवाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जल है तो कल है। चौथा, ऊर्जा संरक्षण। बिजली की बचत और ऊर्जा का उपयोग और अनावश्यक विद्युत उपकरणों को बंद रखना। पाँचवा, स्वच्छता अभियान। स्वच्छता वातावरण स्वस्थ जीवन की पहचान है। युवा अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखते और समाज को भी इसके लिए प्रेरित करे। दोस्तों, आज का युवा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। यदि सोशल मीडिया का सही उपयोग किया जाए तो यह पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

एक संस्था का कार्य नहीं है, ये हम सभी का कर्तव्य है। यदि प्रत्येक युवा यह संकल्प ले कि वह एक पौधा लगाए, पानी बचाए, प्लास्टिक का कम उपयोग करे और पूरी दुनिया को हरित और सुरक्षित रहने में मदद करे, तो ज़रूर हम हरित क्रांति की ओर फिर से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के चर्चा के विषय में बस इतना ही। आगे बढ़ने से पहले सुनिए यह प्यारा सा गीत फिल्म वीर जारा से।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद बारी है एक छोटे से अंतराल की।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
0: दोस्तों, इस अंतराल के बाद बारी है आज के डेली ट्रिविया की। आज के डेली ट्रिविया में हमारा सवाल है कि भारत में युवाओं की जनसंख्या कितनी है। आप इसका जवाब हमें अभी मेल करें। हमारी मेल आईडी है phair@gmail.com। दोस्तों, डेली ट्रिविया के बाद बारी है फन फैक्ट्स की। तो क्या आपको पता है दोस्तों कि रेडियो का पुराना नाम वायरलेस टेलीग्राफी था, इसी से इसका नाम वायरलेस पड़ गया। तो डेली ट्रिविया एंड फन फैक्ट्स के रोचक जानकारी के बाद बारी है सृजन कहानी की ओर बढ़ने का। सृजन कहानी में आज की कहानीकार हैं मोनालिसा। कहानी का शीर्षक है सिर्फ एक सेकंड, तो आइए सुनते हैं उन्हें।
6: सिर्फ एक सेकंड। कमरे के कोने में पड़ी उस मेज पर धूल जम चुकी है, लेकिन उस पर रखी नीट की हैंड रिटन नोट्स के पन्ने अब भी धूल से अधिक कबीर की उंगलियों के निशान से भरे पड़े थे। कबीर, जिसने बचपन से यही सीखा था कि जो चाहो वो मेहनत से मिल जाता है, लेकिन समय के एक मोड़ ने उसे लाचार बना दिया। बात कुछ साल पहले की है। कबीर के घर में परीक्षा के फॉर्म भरने की चर्चा चल रही थी। फॉर्म की कीमत थी 1700 रुपए। कबीर के पिता, जिसके पास कुल जमा पूंजी 2000 रुपए थी, जो उन्होंने अपने सालों से दर्द कर रही आंखों के चश्मे के लिए जोड़ कर रखे थे, जब पिता को पता चला कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, तो उन्होंने बिना एक पल सोचे वो

पैसे कबीर के हाथ में थमा दिए। पिता ने कांपती आवाज में कहा था, बेटा अगर इन पैसों से मैं अपनी आंख ठीक करवा लूं तो सिर्फ मेरी दुनिया बदलेगी, लेकिन अगर इस 1700 रुपए से मेरे बेटे की नौकरी लगती है तो हमारे पूरे परिवार की दुनिया बदल जाएगी। मेरी आंखें दोबारा भी ठीक हो सकती है बेटा, पर ये वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी। पैसे लेते वक्त कबीर के हाथ कांप रहे थे। ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त भी उसकी उंगलियों में एक अजीब सी थरथराहट थी। उसने खुद से वादा किया, पिताजी की आंखों के धुंधलेपन की कसम, इस पैसे को जाया नहीं होने दूंगा। कबीर ने अपनी रातें काली करनी शुरू कर दी। सर में तेज दर्द होता तो वह फोन की स्क्रीन बंद करके अपनी हैंड रिटन नोट्स को पढ़ता। पिता धूप में अकेले काम करते ताकि बेटे की पढ़ाई में खलल न पड़े। कबीर को पिता की तकलीफ देखकर दर्द होता, पर वो जानता था कि इस दर्द की दवा सिर्फ और सिर्फ उसकी कामयाबी ही है। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। कबीर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे सवाल हल किए और वो बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार करने लगा। और फिर आई वो सुबह जिसने कबीर की दुनिया को हिला कर रख दिया। सुबह जैसे ही कबीर की आंखें खुली, फोन की स्क्रीन पर दर्जनों नोटिफिकेशन दिखे। उसने कांपते हाथों से मैसेज खोला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नीट का पेपर लीक होने की खबर हर तरफ फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर बबीता मैम का एक वीडियो चल रहा था। कबीर की नजर स्क्रीन पर थम गई। वीडियो में मैम कह रही थी, इस बार पेपर लीक के चक्कर में अगर तुम रह गए तो अगली वैकेंसी तक 2028 आ जाएगा। जो बच्चा आज 25 साल का है वो तब तक बूढ़ा हो चुका होगा। उसका खर्च कौन उठाएगा? क्या युवाओं की किस्मत में सिर्फ इंतजार लिखा है? कबीर के दिमाग में तो जैसे बिजली का झटका लगा। उसने कमरे की दीवार पर देखा जहाँ एक कोटेशन लिखा हुआ था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक अजीब पागलपन और गुस्से में कबीर ने पेन उठाया और दीवार पर लिखे कोशिश शब्द को इतनी जोर से रगड़ा कि वो नीली स्याही के नीचे पूरी तरह छिप गया और उसके ऊपर लिख दिया, पावर और पैसे वालों की कभी हार नहीं होती। उस रात कबीर रोते रोते सो गया। तकिया आंसुओं से भीग चुका था, बदन बुखार से तप रहा था। उसे लगा जैसे उसने अपने पिता के सपनों की अर्थी उठा दी हो। कबीर ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि नीट की परीक्षा का सिस्टम अगर भ्रष्ट है तो वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी के द्वारा आयोजित एनडीए की तैयारी करेगा। उसने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए और फॉर्म भर दिया। कबीर की मेहनत रंग लाई। उसने मेंस क्लियर कर लिया। जब वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो उसके एक दोस्त ने हंसकर कहा, अरे कबीर क्यों हवा में उड़ रहे हो? मेरे भाई ने तो 6-6 बार मेंस निकाला, अब तो सारे अटेम्प्ट भी खत्म हो गए और उम्र भी बीत चुका, आज तक नौकरी नहीं मिली। ये बड़े बड़े लोगों की नौकरी है, हम सरकारी स्कूल वालों के बस की बात नहीं है। जमीन पर आ जाओ कबीर, जमीन पर आ जाओ। पर कबीर इंटरव्यू देने दिल्ली पहुंच गया। वहां का माहौल देखकर उसका दिल बैठ गया। चारों तरफ महंगे सूट, चमकदार जूते और अंग्रेजी की गूंज थी। कबीर वहां किराए का कोट और एक सस्ती सी टाई पहनकर गया था जिसके लिए उसने पैसे उधार लिए थे। उसे वहां अपनी सादगी पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इंटरव्यू खत्म होने के बाद कबीर अपने गांव लौटा तो उसके दोस्त और आस पड़ोस के लोग उसे रोक रोक कर बधाई देने व चिढ़ाने लगे, अरे कबीर बाबू अब तो तुम भारतीय सेना के बड़े अफसर बन जाओगे, हमें तो भूल ही जाओगे। ये बातें कबीर के सीने में तीर की तरह चुभती थी। उसे एक भयानक गिल्ट महसूस होने लगा। वह सोचता, मेरा इंटरव्यू तो अच्छा गया ही नहीं, अगर मैं पास नहीं हुआ तो इन सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? पिता ने कर्ज लेकर दिल्ली भेजा, उस कर्ज को कैसे चुकाऊंगा? मैं इस घर के लिए सिर्फ एक बोझ बनकर रह गया हूँ। कबीर ने कमरे के अंधेरे में एक खौफनाक फैसला कर लिया था। डिप्रेशन और गिल्ट के उस चरम पर उसने अपनी जिंदगी की डोर को हमेशा हमेशा के लिए काटने की तैयारी कर ली। उसकी बंद आंखों के सामने पिता का वो बिना चश्मे वाला चेहरा आ रहा था। अगले एक सेकंड में वह बिल्कुल आखिरी कदम उठाने ही वाला था कि बेटा कबीर दरवाजा खोलो, बेटा देख तेरी माँ तेरे लिए खाना लाई है। कबीर झटके से इस सोच से बाहर निकला। उसने तुरंत अपनी सांसें संभाली, आंखें पोछी, चेहरा धोया और दरवाजा खोला। बाहर माँ पिताजी मुस्कुरा रहे थे। पिता ने पूछा, परीक्षा का परिणाम तो आ गया होगा ना बेटा? यह सुनते ही कबीर की नजरें नीची हो गई। उसे इंटरव्यू के वो दिन याद आने लगे, सबके महंगे सूट बूट, वह अंग्रेजी बोलियां और अपनी किराए की वही
सब एक एक कर फिल्म की तरह चल रही थी, लेकिन सच बताकर वह अपने माँ पिता को दुख नहीं देना चाहता। उसने सोचा अब हमेशा हमेशा के लिए दूर तो जाना ही है आज, तो कुछ पल के लिए झूठी ही सही खुशी देकर क्यों ना जाऊं। उसने मुस्कुराकर कहा, रिजल्ट भी आएगा और आपका बेटा सेना में ऑफिसर भी बनेगा। उस रात कबीर ने अपनी माँ और पिताजी से जी भर कर बातें की। उसके साथ हंसते बोलते कबीर का मन धीरे धीरे हल्का होने लगा और वह जाने का ख्याल दिमाग से निकालकर चैन की नींद सो गया। अगली सुबह कबीर के फोन पर एक घंटी बजी। ये नीट परीक्षा के अंतिम की जांच के बाद यह साफ हो चुका था कि नीट का पेपर लीक होने की खबर महज एक अफवाह थी। परीक्षा

0: अपने पिता की भीगी आंखें, आंखों का धुंधलापन और वो चश्मे के 2000 रुपए दिख रहे। उसे वो खुद से किया हुआ वादा याद आ रहा था कि पिता की आंखों के धुंधलेपन की कसम, इस पैसे को जाया नहीं होने दूंगा। उसने कहा, नहीं दोस्तों, मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिला लूंगा और डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि इस नीट परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए मेरे पिता ने अपनी आंखों की रोशनी दांव पर लगाई थी। एनडीए की सफलता मेरी मेहनत है, लेकिन नीट का यह मेडिकल कॉलेज मेरे पिता का त्याग है और मैं अपने बापू के त्याग की कीमत कभी नहीं भूल सकता।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मोनालिसा की कहानी सिर्फ एक सेकंड। अब बारी है एक प्यारे से गीत की। फिल्म गदर से परवीन सुल्ताना और अजय चक्रवर्ती की आवाज़ में आइए सुनते हैं यह प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद बारी है करंट अफेयर्स पे आपको अपडेट करने की। दोस्तों, युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय ने माई भारत के माध्यम से देश भर में जिला स्तरीय प्रतियोगिता की शुरुआत कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने यमन यात्रा से संबंधित 2017 की विशेष शर्तों वाली अधिसूचना वापस ले ली है। अहमदाबाद का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 3.61 लाख पौधे लगाकर नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। वहीं नाबार्ड ने ग्राम उदय कार्यक्रम शुरू कर दिया है। यह कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास पूरा हो चुका है। स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं के साथ विरासत थीम पर विकसित किया गया है। भारत सरकार ने यमन की यात्रा पर 2017 से लागू विशेष प्रतिबंध वापस ले लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने 12 जुलाई 2026 को यह निर्णय लिया, जिससे यात्रा संबंधी पहले के विशेष प्रतिबंध समाप्त हो गए। पूर्व कतर अमीर शेख बिन खलीफा अल थानी के निधन पर भारत में 13 जुलाई को एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। देश भर में सरकारी स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है, जिसमें कि 2023 और 24 में 46.29% स्कूल में इंटरनेट से जुड़े और 2025 से 26 से बढ़कर 61.1% हो गए हैं। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, हमें पत्र या ईमेल द्वारा ज़रूर सूचित करें। हमारा पता है युवाणी कार्यक्रम द्वारा आकाशवाणी भागलपुर। हमारा पिन कोड है 8120001। हमारा ईमेल एड्रेस है phaiarbhagalpur@gmail.com। साथियों, अब हमारे स्टूडियो की घड़ी विदा लेने की ओर इशारा कर रही है। फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। अपनी रेडियो दोस्त अर्पिता को दे इजाज़त। धन्यवाद। नमस्ते।

युववाणी कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। पहला गाना हमने फिल्म काला बाजार से लिया है। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया है। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और संगीत तैयार किया है सचिन देवबर्मन ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है।

0: बताती हूँ, नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। गीता दत्त के आवाज में अब आइए सुनते हैं फिल्म कागज के फूल का एक नगमा। गीत के बोल लिखे हैं कैफी आजमी ने और संगीत तैयार किया है सचिन देव बर्मन ने।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले एवं साथियों का गाया हुआ फिल्म नया दौर का एक गीत आपको सुनवाते हैं। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत तैयार किया है ओपी नैयर ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म तीसरी कसम का गीत। मुकेश ने इसे गाया है। गीत के बोल हसरत जयपुरी के हैं, क्षमा करेंगे, गीत के बोल शैलेंद्र के हैं और संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण, आइए डालते हैं एक नज़र हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज की शेष तथा कल के कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों पर। अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:11 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में आज गायक कलाकार होंगे नवल किशोर नबीना। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुर लहरी में आज आप सुनेंगे सुशील ठाकुर को। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन राग शंकरा में। और रात 10:30 फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा पसंद आपकी। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कुछ जानकारियां कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होगी 5:48 पर। 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में किसान श्रोता सुनते हैं सामयिक कृषि वार्ता। 6:05 का समय है दैनिक चिंतन मनन के लिए। 6:10 पर होता है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम आप सुनेंगे। 6:40 पर रामचरित मानस गान की क्रमिक कड़ी सुनवाई जाएगी। प्रातः 7 बजे से 7:55 पर तक आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें प्रातः 7 बजे सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा रसरंग। 7:20 पर स्मृति संवाद कार्यक्रम में आप सुनेंगे बीते दिनों की स्मृतियाँ। 7:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। 9:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर हमारा साप्ताहिक उर्दू कार्यक्रम होगा बज़्मे उर्दू। प्रस्तुत करता होंगे मोहम्मद सरशार अहमद। 10:30 पर लोक गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे। 11 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नई फिल्मों से। 11:30 पर कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे गुलदस्ता। दिन के 12 बजे महिला श्रोता सुनती हैं अपना कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे उमंग। दिन के 1 बजे लोक गीतों का कार्यक्रम एक बार आप फिर सुनेंगे। कार्यक्रम होगा लोक रंग। 2:30 पर फिल्मी गीतों का आनंद आप लेंगे। कार्यक्रम होगा चित्रपट से।

3:20 पर आप हर रोज सुनते हैं समूह स्वर में देशभक्ति गीत और 3:25 से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम होता है ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:11 पर लोकगीतों का कार्यक्रम। शाम 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीकंधा।

0: कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष तथा कल के कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों की जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।
1: उगते सूरज की सुनहरी किरणों के साथ जागते खेत, पगडंडियों पर बढ़ते कदम, बैलों की घंटियों की मधुर ध्वनि, मिट्टी की सौंधी खुशबू और नई उम्मीदों से भरा ग्रामीण भारत, यहीं से शुरू होती है विकास, यहीं बसती है संस्कृति और यहीं से निकलते हैं आत्मनिर्भर भारत की सबसे मजबूत नींव। खेती किसानी की नई जानकारी, ग्रामीण जीवन से जुड़ी उपयोगी बातें, प्रेरक प्रयास, नवाचार और बदलाव की सकारात्मक कहानियों के साथ मैं हूं आरू और आप सुन रहे हैं ग्रामीण जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम।
2: मैं हूं पूरो। आरू बहन, क्या हाल समाचार है?
1: सब बढ़िया है पूरो भाई। और आप देख ही रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं जो मानसून की दस्तक जो बहुत दिनों से समय तो हो गया था लेकिन सुनाई नहीं दे रही थी, वो अब कहीं ना कहीं वो मौसम अभी दिख रहा है। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रहा है, तो एक होता है ना कि प्रॉपर मानसून वाला जो झलक होता है मौसम का, वो हमें दिखाई दे रहा है।
2: जी आरू बहन, मौसम बदल रहा है और मौसम का बदलना प्रकृति का एक समय चक्र है, लेकिन यही बदलाव हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। कभी तेज धूप, कभी बारिश तो कभी ठंडी हवा तापमान में अनेक नवाचार लाती है और परिवर्तन के कारण सर्दी, जुखाम, वायरल फीवर, एलर्जी, गले में खसखस, डेंगू मलेरिया और पेट से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ाती हैं। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी अपनाकर हम स्वयं और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। अरे बहन, सबसे पहले ना खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भोजन हमेशा ताजा, स्वच्छ और संतुलित होना चाहिए। अपने आहार में हरी पत्ती वाले सब्जियां, मौसमी फल, दाल, दूध, दही और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए। और खुले में जो हम बिकने वाले फल हैं या फिर कोई भी भोज्य पदार्थ जो आजकल खुले में मिलते हैं, उनसे हमें बहुत बचकर रहना चाहिए। यह मौसम बहुत ही, अगर ज़्यादा आपको गर्मी महसूस हो रही है या फिर ज़्यादा आपके शरीर में गर्माहट लग रही है, तो हमें पर्याप्त मात्रा में पेय पदार्थ लेते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल। और ये जो जुलाई का महीना है, भारी बारिश यानी कि मानसून का समय होता है और इस मौसम में जैसा अभी आपने भी बताया पूरो भाई, उमस और नमी के कारण जहाँ एक तरफ बीमारियाँ फैलने का खतरा बढ़ जाता है, वहीं दूसरी तरफ आप कह सकते हैं मिट्टी में नई जान आ जाती है, थोड़ा इधर उधर हरियाली चारों तरफ छा जाता है। और कहते हैं जो बरसात में मानसून की जो हरियाली होती है उसका जो हरा रंग होता है वो कुछ और ही होता है। जो आमतौर पर हम लोग हरा रंग देखते हैं पेड़ पौधों का, उससे थोड़ा अलग होता है और बहुत दिखने में अच्छा लगता है। साथ ही अभी आपने बोला पूरो भाई कि हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल ये सब खाना चाहिए। बिल्कुल, मौसमी फल और सब्जियों को प्राथमिकता दे, लेकिन पत्तेदार सब्जियों से कहा जाता है कि थोड़ा परहेज करना चाहिए क्योंकि बरसात में पालक, पत्ता गोभी जैसी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े और बैक्टीरिया होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां अगर खाना ही है तो उसको बहुत अच्छे से देख कर, उन्हें गर्म पानी और नमक या सिरके से अच्छी तरह धोकर या उबाल कर ही पका कर खाएं।
2: जी।
1: और साथ ही अभी जैसे आपने बताया कि मौसमी फलों और सब्जियों को प्राथमिकता दें, तो बहुत सारे ऐसे मौसमी और कहीं ना कहीं हरे फल भी, सब्जियां भी होती है जैसे कि लौकी हो गई,

0: हल्दी और तेजपत्ता ये सब मिली हो, उबली हुई हो, तो कहीं ना कहीं हम सबको थोड़ा थोड़ा चाय की तरह पीना चाहिए। इससे हमारा
1: बिल्कुल
0: इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत मजबूत हो जाता है
1: जी
0: और हम कहीं ना कहीं किसी भी बीमारी से या जो इन्फेक्शन होता है, सर्दी जुकाम होता है, उससे लड़ने के लिए एक तरह से शरीर जो हमारा है वो तैयार हो जाता
1: जी
0: है।
1: और
0: जी
1: बहन मौसम के अनुसार ना कपड़ों का भी चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: बिल्कुल
1: सुबह और शाम के समय तापमान बदलते रहते हैं, तो बच्चों को खास करके हमें हल्के गर्म कपड़े पहना देने चाहिए। बारिश के मौसम में तो अगर आप भीगे हैं तो तुरंत मतलब सूखे कपड़े से अपने आप को पोंछना चाहिए
0: जी।
1: और व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: भोजन करने से पहले हमें जो हम शौच आदि से आते हैं तो साबुन से एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम पूरी तरह से धोना चाहिए। और बच्चों को खास करके ये बातें बतानी चाहिए कि हम कुछ भी चीज खाएं तो सबसे पहले अपने हाथों को बहुत अच्छे से धोएं। आपको वो कोरोना और कोविड का काल तो याद ही होगा कि हमने हाथ धोने के लिए कितना प्रयास किया और सभी लोगों को बताया कि कैसे।
0: सैनिटाइजर तो कंपलसरी हो गया था।
1: जी। और घर और आसपास के करीब ना साफ सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। हम कितने भी पत्ती वाले सब्जी खा लें या फिर काढ़ा पी लें, सब कुछ कर लें, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन जब तक हम आसपास की सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तब तक जो है ना ये वातावरण स्वच्छ नहीं हो पाएगा। और वातावरण स्वच्छ नहीं होगा तो हम स्वच्छ नहीं हो पाएंगे। अरे बहन हमारा जो भारत है ना एक कृषि प्रधान देश है और हमारे कार्यक्रम का नाम भी खेती गृहस्थी ग्राम जगत है, तो यहाँ खेती के साथ साथ ना हम पशुपालन भी करें और हमारे ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी भी मजबूत नींव डल जाती है अगर हम खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी
0: बिल्कुल
1: करें।
0: पूरो भाई
1: और
0: ये
1: किसान ना जो हमारे जितने भी किसान हैं तो खेत के साथ साथ अगर पशु को अपनाते हैं तो वे अपनी आय को बढ़ाने के साथ साथ अपने परिवार का जो जीवन है और उसके स्तर को भी काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि आज पशुधन को ग्रामीण समृद्धि का आधार माना जाता है।
0: बिल्कुल पूर्व भाई, और जैसे कहते हैं ना कि कृषि और जो पशुपालन है वो एक दूसरे से पूरक है और यह आज नहीं सदियों से हमारे देश की जो है जो स्पेशली जो ग्रामीण समुदाय है हमारा उसका ये बहुत बड़ा एक आर्थिक रूप से संबल रहा है पशुपालन। जो लोग कृषि कार्य में व्यस्त रहते हैं, जो कृषि कार्य को अपना मुख्य पेशा के रूप में काम करते हैं, उनके लिए पशुपालन जो है एक दैनिक स्रोत है आय का
1: जी।
0: तो और अभी मौसम भी जैसे बदल रहा है और ये मौसम यानी कि मानसून जो है वो कहीं ना कहीं यह बदलता मौसम हमारे पशुधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इस दौरान इस मानसून के दौरान अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो पशुपालक अपने पशुधन से अधिकतम लाभ कमा सकते हैं
1: जी।
0: क्योंकि पूर्व भाई अभी आप देख रहे हैं हरे चारे की उपलब्धता है जो बहुत ज्यादा हो जाती है जो कि दूध के उत्पादन में वृद्धि करता है
1: जी जी।
0: साथ ही बदलते मौसम में विशेषतः मानसून में पौष्टिक और हरे चारे की प्रचुरता होती है और इस मानसून के मौसम में चूंकि चारों ओर हरियाली होती है तो पशुओं के लिए संतुलित मात्रा में हरा चारा मिलने से पशुओं की पाचन क्रिया बेहतर होती है और दूध उत्पादन में भी 15 से 20% तक की वृद्धि देखी जा सकती
1: जी।
0: है।
1: अरु बहन पशुपालन न केवल दूध उत्पादन तक सीमित नहीं है, गाय भैंस बकरी भेड़ मुर्गी और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो आपके व्यवसाय और किसानों के लिए नियमित आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं। फसल की जो हम फसल आय साल में होती है एक या दो बार मिलती है, जबकि पशुपालन से हम प्रतिदिन नियमित रूप से आमदनी कमाई जा सकती है। एक स्वस्थ पशु ही अधिक और ज्यादा उत्पादन देता है, इसलिए पशुओं को समय समय पर हमें पौष्टिक एवं संतुलित आहार जैसा आप बता रहे थे कि हरे चारे का ज्यादा उपयोग करना चाहिए और सूखा चारा भी उन्हें उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है। भूसा दाना या फिर खनिज का मिश्रण, पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना चाहिए हमारे पशुओं को। और पशुओं के रहने का जो है, जैसे कि हम रहते हैं तो अपने चारों तरफ साफ सफाई करते हैं, हम तो खुद से साफ सफाई कर सकते हैं लेकिन पशु तो खुद से साफ सफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें उनका ध्यान रखना होगा और पशुओं के रहने का स्थान जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए और उन्हें हम सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है।
0: बिल्कुल, और जैसे अभी हम इंसानों को थोड़ा वो फंगल इन्फेक्शन जो होता है पैर में, हाथ में, स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है अगर बहुत देर तक नमी में रहें, अगर बारिश में भींगते रहें या नमी में रहें तो होती है। तो हम लोग जैसे अपना ख्याल रखते हैं वैसे ही पशुओं को भी ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी ना हो, बारिश का पानी बहुत ज़्यादा जमा ना हो। और शाम में जैसे हम लोग धुआं जलाते हैं मच्छर भगाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, लेकिन पशुओं के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जगह बहुत बड़ा होता है तो जो हम लोग मॉस्क्यूटो रेपेलेंट जो लगाते हैं वो वहाँ नहीं काम करेगा। तो जो गोबर से और बाकी चीज़ें जो डाल के धुआं किया जाता है शाम में वो भी ज़रूरी है क्योंकि मच्छर, जैसे आपने बताया कि स्वास्थ्य की पशुओं के स्वास्थ्य की भी रक्षा करना

0: हम उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, तो इसके लिए वो भी जरूरी है। और जैसा अभी आपने बताया कि साफ सुथरा जगह जैसे इंसान के लिए, पशुओं के लिए भी हो, तभी उनका जो प्रोडक्टिविटी कहते हैं ना कि उनकी उत्पादकता जो है वो बढ़ जाती है।
1: जिससे ही ना, अगर उनकी उत्पादकता बढ़ेगी तभी तो हमारा जो आय का स्रोत है वो बढ़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: और आरू बहन, होता क्या है कि पशुओं का जो हम देखभाल करते हैं ना, तो समय समय पर टीकाकरण, जैसे कि मनुष्यों में टीकाकरण होता है तो वैसे पशुओं में भी टीकाकरण होता है, तो समय समय पे हमें उनके टीका का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षण मतलब हमेशा करवाते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और उनका जो जैसे कोई कुछ बीमारियां उनमें प्राय तौर पर देखी जाती हैं, जैसे खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, लंपी स्किन रोग और अन्य संक्रामक बीमारियां हैं ना, जो अधिकतर होते रहते हैं, तो इनसे बचाव के लिए पशु चिकित्सक से हमें लगातार मिलते रहना
0: बिल्कुल पूर्व भाई। और मानसून की भारी बारिश शुरू होने से ठीक पहले अनिवार्य रूप से ये जो गलघोटू और खुरपका मुंहपका जो बीमारी होता है, जिसे हम शॉर्ट में FMD कहते हैं, उसके लिए वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण जरूर करवाएं। और इस मौसम में घास के साथ साथ कीड़ों के अंडे पेट में चले जाते हैं पशुओं के, तो उससे उनको हानि ना पहुंचे, इसलिए डॉक्टर की सलाह पे कृमि नाशक दवाई जो है अपने पशुओं को जरूर दें। और अभी जैसे हम लोग फर्श गीला होने की वजह से जो प्रॉब्लम होता है इंसानों में और पशुओं में भी, उसकी बात कर रहे थे, तो उसको कहते हैं पशुओं में जो होता है उसको कहते हैं थनेला रोग। फर्श गीला होने से इससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है, और तो पशुओं के बैठने की जगह सूखी और साफ रखें और उसमें चूने का छिड़काव करें, जिससे कि वो जो अभी मानसून के मौसम में बीमार ना पड़े और स्वस्थ रहें।
1: जी जी, अब तो ये हो गई चर्चा कि हम अपने पशुओं का कैसे ध्यान रखें और मौसम से संबंधित चर्चा। जब भी हम मौसम की बात करते हैं ना, अभी जैसे कभी बारिश तो कभी धूप तो कभी छांव, तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अब सावन बहुत नजदीक है। तो आइए भगवान शिव का एक भजन अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: जी

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बक्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बक्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexa.
3: Arubhan. स्वच्छता और साफ सफाई जो है ना, मतलब केवल हमारे घरों की सुंदरता नहीं बढ़ाता है, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण और बेहतर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण आधारशिला होता है।
4: बिल्कुल।
3: और यही सोच हमारे पूरे देश भर में स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के लिए चलाया जा रहा है। और जब हमारा घर या फिर गांव, मोहल्ला या फिर आसपास का वातावरण स्वच्छ होगा, तभी हमारे जो हमारा देश है ना, वास्तव में स्वच्छ और समृद्ध बन पाएगा। अक्सर हम देखते हैं ना कि छोटी सी भी लापरवाही बड़ी समस्याओं का कारण बन जाती है। कहीं खुले में कूड़ा हम देखते हैं या फिर हम ही फेंकते हैं उसे, कोई दूसरा तो फेंकता नहीं है। और कहीं नालियों में नियमित सफाई नहीं होती है, तो कभी पानी जो है वो लंबे समय तक सड़कों पर जमा रह जाते हैं, तो कहीं मतलब बार बार एक ही तरह से पानी जमा रहने से मच्छरों का, मक्खियों का प्रकोप भी हमारे पूरे मोहल्ले में और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। तो अपने श्रोताओं को एक पूर्व प्रसारित वार्ता सुनवाते हैं स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के लिए। वार्ताकार हैं सुबोध स्वर्णकार।
5: स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्र स्तरीय अभियान है। साफ सफाई के संदर्भ में देखा जाए तो यह अभियान अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर के दिन सर्वप्रथम गांधी जी को राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि बस्ती में जाकर झाड़ू लगाई। कहा जाता है कि वाल्मीकि बस्ती दिल्ली में गांधी जी का सबसे प्रिय स्थान था, वे अक्सर यहां आकर ठहरते थे। इस अवसर पर अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा, गांधी जी ने आज़ादी से पहले नारा दिया था क्विट इंडिया क्लीन इंडिया, लेकिन अभी इनका क्लीन इंडिया का सपना अधूरा है। समय आ गया है कि हम 125 करोड़ भारतीय अपनी मातृभूमि को स्वच्छ बनाने में प्रण करें। क्या साफ सफाई केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी है? क्या हम सभी की जिम्मेदारी नहीं है? हमें यह नज़रिया बदलना होगा। पुरानी आदतें बदलने में समय तो लगता है, लेकिन असंभव नहीं। सबके लिए स्वच्छता एक वैश्विक विकास प्राथमिकता मानी जानी चाहिए। 1 अप्रैल 2012 से संपूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान कर दिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण सृजन में तेजी लाना है। स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए देश के 10 नए विरासत स्थलों ने अपने स्वच्छता मानकों को उदाहरणीय स्तर तक बढ़ने के लिए कार्य योजना बनाई है। हैदराबाद

में 2 दिनों के विचार विमर्श के बाद कार्य योजना तैयार की गई। इस विचार विमर्श में पूरे देश से आए 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गए सभी 30 स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की ओर से अपने स्थानों को प्लास्टिक से मुक्त बनाने का संकल्प आए प्रतिनिधियों ने व्यक्त किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1895 में जब ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और एशियाई व्यापारियों के साथ उनके स्थानों गंदा रखने के आधार पर भेदभाव किया था, तब से लेकर अपनी हत्या के एक दिन पहले तक गांधी जी लगातार सफाई रखने पर जोर देते रहे। कुछ क्षण के लिए हम इन बातों पर गहराई से सोचें। आखिर क्यों हो स्वच्छ भारत? याद कीजिए बापू का नवजीवन में लिखा, उन्होंने लिखा है कि हमारी कई बीमारियों का कारण हमारे शौचालय की स्थिति और किसी जगह करने की बुरी आदत है। बाद में उन्होंने ये भी कहा है, जहां स्वच्छता होती है वहां देवता निवास करते हैं। बीते दिनों इस बात को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, स्वच्छता और व्यक्ति भाव से सबसे बड़ा लाभ अच्छी सेहत के रूप में मिलता है। हमारे देश में ज़्यादातर आम बीमारियां ऐसी हैं जो माहौल में कतई नहीं फैल सकता है। अगर हम इसे सफल क्रांति में तब्दील कर देते हैं तो इलाज पर लोगों का खर्च काफ़ी कम हो जाएगा तथा इस तरह से वे अपनी बचत का कहीं और बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकेंगे। महात्मा गांधी जिन्हें आदर्श माना जाता है वो गंदगी के खिलाफ थे एवं स्वयं सफाई अभियान चलाते थे। भारत विकासशील देश से विकसित देश की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बाजारवाद में भारत ने खुद को स्थापित कर लिया है। अध्ययन बताते हैं कि कुपोषण भोजन के साथ साथ सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच न होने से उपजता है। गंदगी और अस्वच्छता के वातावरण में रहे छोटे बच्चों के मल में पनपने वाले बैक्टीरिया होता है। बेहतर स्वच्छता मिलने से शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। स्वच्छता का अर्थ न केवल आसपास के फैले कूड़े कचरे को हटाना है बल्कि इसका आशय शौचालय सुरक्षित, पेयजल की उपलब्धता और निकासी प्रणाली से शौचालयों को जोड़ना भी है। साथ ही नगरीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कूड़ा कचरा एकत्र करने की सुविधा का नहीं होना भी स्वच्छता को प्रभावित करता है। आवासीय परिसर के बाहर स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों और रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता की स्थिति खराब रहती है। बार बार दिए जा रहे निर्देशों का पालन नहीं कर हम उसे छोड़े चले जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर क्या कारण है कि साफ सफाई हम भारतवासियों के लिए कभी महत्व का विषय नहीं रहा? आखिर क्यों तमाम प्रयासों के बाद भी हम साफ सुथरे नहीं रहते और रखते हैं? गंदगी के कारण औसतन रूप से प्रत्येक भारतीय को प्रतिवर्ष लगभग 6,500 का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। बदलाव के इस दौड़ में यदि हम स्वच्छता के क्षेत्र में पीछे रह गए तो आर्थिक उन्नति का कोई महत्व नहीं रहेगा। रिपोर्ट में स्वच्छता पर निवेश के फायदे की भी चर्चा की गई है। अतिरिक्त स्वच्छता और साबुन से हाथ धोने जैसे साफ सफाई के तरीके अपनाए जाने से 2006 में ही अकेले 3.46 लाख मौतें नहीं होती, 33.8 करोड़ बीमार के मामले नहीं आते और कम से कम 1.48 खरब रुपये सालाना आर्थिक फायदा होता।

0: इस बात को आगे बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के हवाले से कहा कि गंदगी के कारण हर वर्ष भारत के प्रत्येक नागरिक को करीब 6500 रुपये का अतिरिक्त नुकसान झेलना पड़ता है। कहते हैं बीमारी कहकर नहीं आती, साथ ही आर्थिक आधार भेदभाव नहीं करती। निर्माण स्वच्छता समान रूप से हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हर समय कोई सरकारी संस्था या बाहरी बल हमारे पीछे नहीं लगा रह सकता। हमें अपनी आदतों में सुधार करना ही होगा और स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना ही होगा। साथ साथ दंड प्रक्रिया द्वारा इसमें सफलता लाई जा सकती है। तभी हमारी ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकेगी।
1: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just ₹6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
2: पूर्व भाई क्यों ना अपने किसान भाइयों को कुछ मौसम सूचना दे दी जाए।
3: जी बिल्कुल।
2: तो मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि में यानी कि 13 जुलाई से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। बांका नवादा जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% तथा दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछिया हवा चलने का भी अनुमान है। कुछ समसामयिक सुझाव भी है, जैसे कि धान के लिए है कि पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौरदीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई करें। बुआई से पूर्व बीजों को कार्बोडाइज्म 2.0 ग्राम किलोग्राम बीज से उपचारित करें तथा 10 से 15 दिन तक नर्सरी में समय पर निराई गुराई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी एवं राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों जैसे कि सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। स्त्री अन्न के लिए कुछ समसामयिक सुझाव भी है, जैसे मोटे अनाजों की खेती हेतु उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 एवं RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1 किस्मों की बुआई कर सकते हैं।
3: जी।
2: और अरहर के लिए है कि उचास जमीन में अरहर की बुआई समान आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 एवं राजेंद्र अरहर 2 किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटास तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें।
3: जी।
2: अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का के लिए भी कुछ समसामयिक सुझाव है, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सरी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फूर एवं 50 किलो पोटास का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे स्वान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 हैं।
3: जी।
2: मूंग के लिए सुझाव यह है कि मूंग की तैयार फलियों की तुराई करें तथा हरी खाद हेतु उसके पौधे को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें।
3: जी।
2: सब्जियों के लिए यह है सुझाव कि भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई गुराई एवं खर पतवार नियंत्रण करें। पत्ती खाने वाली सुंडियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें।

0: प्रकोप होने पर डाइमेथॉइड 30 EC का 1 मिली प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।
1: जी आरू बहन, ये तो हो गई कि मौसम संबंधित सूचनाएं, और हमने किसान भाइयों को सलाह भी दे दिया कि क्या क्या वो इस समय अपने सब्जियों के लिए, अरहर के लिए, मक्का के लिए, मूंग के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें। आइए, अब समय हो चुका है हमारे प्रायोजित कार्यक्रम का, सुनते हैं हमारा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
0: जी
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: कैसे हैं बिहार और झारखंड वालों, एक बार फिर से आपका दोस्त राजेश आ गया आप सबों के बीच में। सोमवार का दिन है और आज के दिन इसी मीटर पर आकाशवाणी के आप सुनते हैं बुनियाद। जी हां, बुनियाद एक ऐसा कार्यक्रम जो आप युवाओं के लिए एकदम हिट साबित हो रहा है। हम आपकी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं और जिस पर जो पूरी इमारत लिखी जाए ना, वो एकदम मुकम्मल हो। अच्छा रोजगार, अच्छा पैसा, अच्छी जिंदगी, सब कुछ आपको मिल सके। और इस बुनियाद कार्यक्रम में हम बातें करते हैं रोजगार, जी हाँ रोजगार की। और रोजगार मिलती है ज्यादातर, हाँ आसानी से, प्रोफेशनल पढ़ाई करके, विशेषज्ञता हासिल करके, टेक्निकल पढ़ाई करके। और एक मेरा ये जो सेंटेंस है ना, ये जो लाइन है ना, बहुत पॉपुलर हो रहा है कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। अगर जो आपने की टेक्निकल पढ़ाई, तो आपके जीवन में सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, और ये बुनियाद कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं एक वैसे संस्थान, एक वैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेक्निकल पढ़ाई का हब है, और ये अपने बिहार के जमुआर में है, रोहतास में है, सासाराम में है, और जिसका नाम है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय से आप टेक्निकल पढ़ाई कर सकते हैं। इसके वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं, और वेबसाइट का पता है www.gnsu.ac.in। और जो अगर फोन करना चाहें, तो सबसे पहले हम एक टोल फ्री नंबर है वो बता रहे हैं, नंबर नोट करें 1800 121 0051 1800 121 0051। और दूसरा जो नंबर है मोबाइल का, वो नंबर है 9431899002। पिछले सप्ताह अवनीश रंजन थे हमारे साथ और हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स की चर्चा की थी, बीएड स्पेशल एडुकेशन। हमने कहा बीएड स्पेशल एडुकेशन, बीएड सब कोई करना चाहता है ना, करना चाहता है और शिक्षक बनना चाहता है या फिर आगे निकलना चाहता है, लेकिन बीएड स्पेशल एडुकेशन की बातें हमने की थी जो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में होता है। पूरे बिहार और झारखंड से रिस्पांस आए हैं। हाँ, उन्होंने डाल्टेनगंज से मोहन यादव ने लिखा है कि बीएड स्पेशल एडुकेशन और बीएड में हाँ क्या क्या अंतर है, या दोनों के बारे में एक बार फिर से बताइए, क्योंकि मैं कार्यक्रम सुन रहा था और सुनते सुनते ये जो जवाब था वो निकल गया, हम फॉलो नहीं कर पाए। इसी तरीके से भागलपुर से, पूर्णिया से, हाँ इवन सासाराम से भी हाँ फोन कॉल्स आए हैं इसी तरीके के सवाल के लिए। तो चलिए हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन आपके डिमांड पर हम एक बार फिर से अवनीश रंजन जो हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम में, हम उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि बीएड और बीएड स्पेशल एडुकेशन के बारे में हमें जानकारियां दें एक बार फिर से, जिससे हम आपकी मदद कर सकें।
1: अब जो स्टूडेंट्स बीएड कोर्स करना चाहते हैं, उनके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि दो अलग अलग ये कोर्स क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा कि एक समय ऐसा था जब दो अलग अलग बीएड कोर्स चलते थे, और जिसमें था कि एक वैसे बीएड जो सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों को पढ़ाने के टीचर के रूप में ट्रेंड होते थे, और दूसरा बीएड जिसमें कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिन्हें जो कोई मानसिक रूप से कमजोर है या देखने में उनको दिक्कत हो रही है या सुनने बोलने में दिक्कत है, उन

0: चो के जो विशेष शिक्षक होते थे उनकी ट्रेनिंग होती थी। ये आज से करीब 4 साल 5 साल 8 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था। अभी सरकार ने ये निर्णय लिया कि चूंकि हमारे सारे जब से सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान पूरे भारत में लागू हुआ, तो उसके बाद सरकार का ये निर्णय हुआ कि जो टीचर होंगे स्कूल के, जो भी टीचर होंगे, वो सारे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के ट्रेंड होने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि वैसा विद्यालय जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे जो स्कूल के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने के लायक हैं। तो अब जो स्पेशल एजुकेशन वाले जो बीएड हैं, जो जिन्होंने किया है कोर्स को, वो सामान्य विद्यालयों में भी सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं और वो टीचर दोनों बच्चों को एक समान रूप से पढ़ा सकते हैं।
1: बहुत खूब, आपने सारी चीजें एक बार फिर से अच्छे से बता दी और हमें उम्मीद है कि पूरा बिहार और झारखंड जो सुन रहा है और बीएड करना चाहता है, एक बार जरूर बीएड स्पेशल एजुकेशन की तरफ देखेगा। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन में। आप जो कॉमन आदमी है उसके लिए, कॉमन बच्चे हैं उसके लिए तो काम कर सकते हैं, चैलेंज बच्चों या डिजेबल बच्चों के लिए भी आप काम कर सकते हैं। सर्विस की भावना ज्यादा है, सारा कुछ इसके अंदर है। जी हाँ, ये गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में ये कोर्स होता है। हम नंबर बता दे रहे हैं, आप चाहें तो बात कर सकते हैं। नंबर जो टोल फ्री नंबर है हमारा 1800121 0051, 1800121 0051, और दूसरा जो नंबर है 9431899002, ये नंबर है। आगे बढ़ें बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में, आगे बढ़ें उससे पहले आपको याद दिला दें युवा साथियों कि हमने 3 नए कोर्सेज की चर्चा की थी जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था। बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, दूसरा कोर्स था परफ्यूजन टेक्नोलॉजी और तीसरा कोर्स था बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। इसकी चर्चा हमने इस बुनियाद कार्यक्रम में की थी, आपके रिस्पॉन्सेस आए हैं, लेकिन सच बताऊं तो जितना आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आए। शायद आप ये कोर्स को समझ नहीं पाए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन ये हॉट केक है। एक बार फिर से बता देते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये इसके प्लेसमेंट होती है। इसी तरीके से परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है और बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज है। सीट बहुत कम है। इसी नंबर 1800121 0051 या 9431899002 इस नंबर पर आप बात करके जानकारियां ले सकते हैं। बहरहाल अवनीश जी, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में जरा लोगों को बताइए, वहां ये कोर्स होता है, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें जितनी जानकारी हम दे सकते हैं गागर में सागर भर दीजिए।
0: मैं बताना चाहूंगा कि गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी रोहतास जिले, बिहार के रोहतास जिले के जमुआर में स्थित है और ये करीब 100 एकड़ में फैला हमारा यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज संचालित होते हैं, जिसमें हमारा ये फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस भी है। फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस के ही अंतर्गत ये 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन के 2 स्पेशलाइजेशन के साथ, 2 विशेषज्ञता के साथ बीएड की पढ़ाई होती है। एक इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, जिसे हम बौद्धिक अक्षमता कहते हैं, और दूसरा हियरिंग इंपेयरमेंट, मतलब जिनको सुनने या बोलने में समस्या है बच्चों की, उनके शिक्षक की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ भारतीय पुनर्वास परिषद, जो भारत सरकार की वैधानिक संस्था है, वहाँ से मान्यता प्राप्त है हम लोगों का यहाँ। और इसके अलावा हमारे जो फैकल्टी हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स को, टीचर ट्रेनीज को पढ़ाते हैं, वो वेल क्वालिफाइड हैं, उनके पास अच्छी डिग्री है और इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। साथ साथ हमारे हमारे ही कैंपस में नारायण वर्ल्ड स्कूल है, जो चूंकि टीचिंग प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है टीचर्स को अपने ट्रेनिंग के दौरान, तो उनको प्रैक्टिस के लिए भी हमारे कैंपस में स्कूल है, इंक्लूसिव स्कूल है, जिसमें कि सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ते हैं। हमारे कैंपस में नारायण केयर बाल पुनर्वास केंद्र भी स्थापित है, जहाँ पे इस तरह के बच्चे थेरेपी के लिए आते हैं और स्पेशल एजुकेशन के लिए आते हैं। जब ऐसे सेटअप में, स्पेशल सेटअप में, जहाँ इन बच्चों को अलग से स्कूल के अलावे भी अगर उनको सपोर्ट की जरूरत है, तो उस तरह की सेंटर्स हैं। तो जो स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले कोर्स में, उनको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भी व्यवस्था हमारे यहाँ है, थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन के लिए लैब उन हमारे पास अवेलेबल है, हमारे यहाँ बच्चे अवेलेबल हैं जिनके ऊपर बच्चे उनको ट्रेनिंग के दौरान उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन असेसमेंट करने के लिए भी व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैंपस में ही हॉस्टल अवेलेबल है, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल है। हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के माने भोजन उपलब्ध कराने वाली मेस है, जिसमें कि जो भी बच्चे रहते हैं हॉस्टल में उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वायरमेंट मिलता है, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा वैसे लोगों से जिन्होंने प्लस टू किया है इस बार साइंस या आर्ट्स में, वो एक बार हमारी यूनिवर्सिटी को विजिट करें, हमारे वेबसाइट पर भी जाएँ और फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस को के साइट को देखें और हमारे प्रोग्राम्स को समझें, हमारे पूरे फैसिलिटी को एक बार देखें। और मैं अपील करूंगा कि वो एडमिशन अगर लेते हैं तो मैं अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के अच्छी यूनिवर्सिटी को में एडमिशन लेंगे और उनकी अच्छी पढ़ाई के साथ एक अच्छे मार्क्स के साथ डिग्री लेकर निकलेंगे। जब वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पार्ट उनका बहुत स्ट्रांग होगा और जहां चाहे वो जॉब कर सकते हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं।
1: मजा आ गई लवनीश जी, वाह, बहुत पूरी तरीके से आपने खोल के बता दिया। लेकिन आपने बाद में रोजगार की बात कही, यहाँ एक सहज जिज्ञासा है, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा रोजगार सारे यूथ चाहते हैं, गार्जियन भी चाहते हैं, अगर हमारा बेटा भी हो तो हम चाहेंगे पढ़ने के बाद रोजगार लगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या व्यवस्था है?
0: जी, हमारे यहाँ अलग से एक प्लेसमेंट सेल है जिसमें कि हमारे वैसे लोग जो हमारे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं उनके लिए हम लोग प्लेसमेंट के लिए ड्राइव चलाते हैं। बहुत सारी एजेंसीज हैं खासकर जो इस फील्ड में काम कर रही है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज है जो हमारे यहाँ आती है और इन लोगों के का इंटरव्यू लेके और उनके को सेलेक्ट करके और अपने यहाँ ले जाती है और अच्छे पैकेज पे उनको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है।
1: अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ कैंपस में नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी है, तो क्या आप अपने बच्चों को या आपके यहाँ से जो पढ़ के निकले आप अपने यहाँ भी प्लेसमेंट देते हैं उनको?
0: जी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो हमारे बच्चे हमारे कैंपस में काम करना चाहते हैं तो हम उनको चांस देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब हमने अपने बच्चों को एक हाई एजुकेशन दिया है, एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी, तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे हम लोगों के यहाँ पहले ऑब्जर्व हों। अगर वो अपने एरिया में काम करना चाहते हैं तो हम लोग उनको वो भी मदद करते हैं कि आप जिस राज्य में या जिस शहर में काम करना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स हैं, हम लोग उनको वहाँ भी रेफर करते हैं और वहाँ जाके वो जॉब करते हैं।
1: अवनीश जी, रोजगार से संबंधित एक और हम जानकारी चाहते हैं कि स्कूलों में सब बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी बीएड स्पेशल एडुकेशन वालों की बढ़ी है क्या?
0: सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के आने के बाद जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो सबको सरकार की मैंडेटरी है कि वो इंक्लूसिव सेटअप में उस स्कूल को रखना है, मतलब कि ऐसा स्कूल जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे, तो उस विद्यालयों में इन शिक्षकों की भारी मांग है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, चाहे वो सीबीएसई के स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या और दूसरे प्राइवेट विद्यालय हो जैसे आईसीएसई और सीबीएसई के स्कूल हैं, वो सारे जगह पे मैंडेटरी है कि इन तरह के टीचर्स को उनकी बहाली कंपलसरी है, रखनी है उनको और उनका वहाँ स्कोप है जहाँ वो एज ए टीचर काम कर सकते हैं।
1: वाह, बहुत खूब, थैंक यू अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल आए तो आपसे जरूर पूछेंगे, आपको बुलाएंगे इस कार्यक्रम में। तो साथियों, पूरा बिहार और झारखंड आपने सुना पहले कोर्स के बारे में, बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में और लंबी बातचीत हुई जॉब को लेकर। हर तरफ जॉब ही जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बात कर सकते हैं इस नंबर पर 1800 121 0051 1800 121 0051 और दूसरा नंबर 9431899002 ये नंबर है और इंटरेस्टेड होना भी चाहिए बीएड स्पेशल एडुकेशन के लिए। और इसके अलावे आज ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आ गई है युवा साथियों, बस गौर करने की जरूरत है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है ये जानने की जरूरत है। अपने बिहार में टेक्निकल पढ़ाई वाला यूनिवर्सिटी है जहां 13-14 अपॉर्चुनिटी है, जैसे अगर आपने बायोलॉजी के साथ किया है तो मेडिकल है, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, इसके अलावा फार्मेसी है, पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, नर्सिंग के कोर्सेज हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर है आप जा सकते हैं, इसके अलावा टेक्निकल पढ़ाई में आप लॉ, फाइव न्यूक्लियर लॉ कर सकते हैं, इसके अलावे भी लाइब्रेरी साइंस, बीटेक, आईटी, न जाने कितने कोर्स हैं, बस जरूरत है ध्यान देने की। और नंबर वही 1800121005 और 943

0: 1899002। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम बुनियाद पूरे बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए राजेश को लेकर आने का मौका दिया। चलते हैं, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: तो आरु बहन, अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अपने श्रोताओं को एक पूर्व प्रसारित वार्ता सुनाते हैं। वार्ताकार हैं डॉक्टर सीरीन अख्तर। और खरीफ सब्जियों में इस समय में कैसे कृषि होती है, उसमें कैसे हम लोग खेतों में कृषि करते हैं, उसके बारे में विशेष जानकारी आपको बताएंगे।
1: जी,
3: हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, इसलिए सब्जियों की मांग अधिक है। बिहार राज्य देश की सब्जियों में क्षेत्रफल एवं उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। यहाँ सब्जी का क्षेत्रफल लगभग 9.12 लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन का मात्रा है 163.3 लाख टन। खरीफ या बरसाती मौसम की सब्जियों में मुख्यतः भिंडी, बैगन, मिर्च, अगात फूलगोभी, सेम, बोड़ा, कद्दू, नेनुआ एवं झिंगली आदि सब्जी फसलें उगाई जाती है। इनमें से भिंडी, सेम, बोड़ा, कद्दू, नेनुआ एवं झिंगली के बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं, परंतु अन्य सब्जी फसलें जैसे बैगन, मिर्च, अगात फूलगोभी तथा बरसाती प्याज की खेती के लिए बीज पहले पौधशाला में बोए जाते हैं और बिजड़ा 3 से 4 सप्ताह में जब तैयार हो जाता है तब उनको मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। बरसाती सब्जी फसलों को कुछ किसान भाई अभी खेती में लगा चुके होंगे और शेष कुछ किसान भाई अभी लगा रहे होंगे। अतः अगात फसल जो मई के अंतिम सप्ताह से जून तक लगा दिए गए हो, उसमें से निकाई गुड़ाई, अनुशंसित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग तथा पौधा संरक्षण का उपचार कार्य करे। पौधा संरक्षण पर विशेष ध्यान देना इस समय जरूरी है क्योंकि इस मौसम में रोग तथा कीड़ों का आक्रमण का प्रकोप भी बहुत ज्यादा होता है। आमतौर पर सब्जी फसलों में इस समय फफूंद जनित रोग ज्यादा लगते हैं तथा इसमें बचाव हेतु डाइथेन M45 या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये जो दवा बताए हम, इसका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 7 से 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। इस समय सब्जियों में मुख्य तो काफी कीड़ा लगता है, उनमें से माहू के लिए एसीफेट दवा का 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके, सफेद मक्खी या थ्रिप्स के लिए इमिडाक्लोरप्रिट दवा का 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के दर से तथा बैगन के तना व फल छेदक कीड़े के लिए इंडोक्साकार्ब दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करना चाहिए। पौधशाला में अंगमारी या आर्द्रकलन रोग अधिकतर लगता है इस मौसम में। इसमें हम देखते हैं कि कोमल बिजड़े जमीन की सतह से गल कर गिर जाते हैं। इसके नियंत्रण हेतु फफूंदनाशी दवा जैसे रिडोमिल या कार्बिंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 8 से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। पौधशाला में बीजों को बुवाई करने से पहले कैप्टन या थायरम नामक दवा से 2 ग्राम पर किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके लगाना चाहिए। जो किसान भाई अभी तक भिंडी, बोड़ा, कद्दू वर्गीय सब्जी आदि की बुवाई अभी तक नहीं कर पाए हैं, वे अभी बताए जा रहे वैज्ञानिक तरीके से फसलों की बुवाई शीघ्र कर दे। इसके साथ ही बैगन, मिर्च तथा फूलगोभी के उन्नत प्रभेदीय बीज को उपचारित करके पौधशाला में गिरा दे अभी, ताकि समय पर वो रोपाई कर सके। भिंडी की बुवाई जून से जुलाई माह में अवश्य कर दे। इसके लिए इस मौसम में 8 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। भिंडी को पंक्ति से पंक्ति 60 सेंटीमीटर दूरी पर लगाए तथा पौध से पौध का दूरी 45 सेंटीमीटर रखा जाए। किस्मों का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए कि खरीफ मौसम में भिंडी में पीला शीरा मोज़ेक विषाणु का प्रकोप काफी ज्यादा दिखा जाता है। अतः प्रतिरोधी जो किस्में होती है जैसे काशी क्रांति, काशी प्रगति, सोनाक्षी, शक्ति, इनका चुनाव किया जाए। बोड़ा या लोबिया का बुवाई जुलाई माह तक अवश्य कर दे। इसके लिए 20 से 25 किलो बीज प्रति हेक्टेयर जरूरी है। बुवाई की दूरी कतार से कतार 60 सेंटीमीटर

0: तथा पौधे से पौधे 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बोड़ा के लिए उन्नत प्रभेद जैसे पूसा कोमल, काशी कंचन, अर्का गरिमा आदि का चयन करें। सेम की बुवाई अभी कर सकते हैं, उसके लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें व पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखा जाए। सेम की उन्नत किस्में जैसे पूसा अर्ली प्रोलिफिक, स्वर्णा उत्कृष्ट आदि का चयन करें। खरीफ मौसम की लतावली सब्जी में खीरा, कद्दू, नेनुआ एवं झिंगली की बुवाई जुलाई माह के अंत तक कर सकते हैं। बुवाई मेड़ बनाकर थालों में किया जाए तो अच्छा होगा। इस मौसम में जल निकास का समुचित प्रबंध रखना बहुत जरूरी है। मचान बनाकर अगर सहारा देते हैं कद्दू वर्गीय फसलों को तो इसका उपज काफी वृद्धि हो सकती है। इसके साथ साथ फलों की गुणवत्ता बनी रहती है और जिससे फल का जो बाजार का में कीमत मिलती है वो अधिक होता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि इस सब्जी में 3 से 4 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के दर से बुवाई किया जा सकता है, क्षति ना पहुंचे। यदि जब पौधशाला तैयार हो रही है उस समय वर्षा ज्यादा होती है तो बुवाई के उपरांत पौधशाला को बांस के ऊपर पॉलिथीन के शीट से एक आच्छादन बना के उसको ढक देना चाहिए। बैगन में हम देखते हैं 350 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, मिर्च में 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर तथा अगात फूल गोभी में 650 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। मूल क्षेत्र में बैगन की रुपाई 75 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति तथा 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे दूरी पर लगाया जा सकता है। मिर्च को 60 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति दूरी दिया जाए और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे का दूरी रखा जाए तथा अगात फूल गोभी में 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति तथा 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे दूरी पर इसको लगाया जाए। खरीफ मौसम में अच्छी फसल की प्राप्ति हेतु उचित मात्रा में खाद तथा उर्वरक का प्रयोग करना भी सामान्यतः मूल क्षेत्र की प्राथमिक जुताई के साथ ही 150 से 200 क्विंटल कंपोस्ट या 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर के दर से फसल लगाने के 20 से 25 दिन पहले दिया जाना चाहिए। बैगन, मिर्च तथा अगात फूल गोभी में 100 से 120 किलो नाइट्रोजन, 70 से 80 किलो सल्फर और 60 से 80 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। अगात फूलगोभी में इसके साथ साथ ही 10 से 15 किलो बोरेक्स तथा 1 किलो सोडियम व एमोनियम मोलिब्डेट का व्यवहार करना जरूरी हो जाता है। कद्दू वर्गीय सब्जी, बोड़ा तथा भिंडी में 60 से 80 किलो नाइट्रोजन, 40 से 60 किलो स्फुर तथा 40 से 60 किलो पोटाश का प्रयोग प्रति हेक्टेयर के दर से करें। सामान्यतः हम नाइट्रोजन को आधी मात्रा, इसके साथ साथ स्फुर एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है बीज या पौधा मूल क्षेत्र में लगाने से समय दे देंगे। इसके साथ साथ नाइट्रोजन की शेष जो मात्रा रहेगी उसको 2 बराबर भागों में बांटकर 30 दिन व 60 दिन की खड़ी फसल पर उपयोग करेंगे। खरीफ मौसम में अधिक वर्षा के से बचाव हेतु सब्जी फसलों को ऊंचाई वाली जमीन पर लगाया जाए तथा खेत में जल निकास का समुचित प्रबंधन भी करना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में खरपतवारों का भी प्रकोप बहुत ज्यादा होता है तो इस समय समय समय पर निकाई गुड़ाई करना आवश्यक हो जाता है। मूल क्षेत्र की जुताई के 7 से 10 दिन पूर्व में ग्लाइफोसेट दवा 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से सभी प्रकार खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। अंत में किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि खरीफ सब्जियों की कृषि कार्य के अंतर्गत समुचित पौधशाला की देखभाल, रोग रोधी उन्नत किस्मों का चुनाव, पोषक तत्वों का अनुशंसित मात्रा में प्रयोग, जल निकास का समुचित प्रबंधन तथा खरपतवार नियंत्रण व फसल सुरक्षा करके अधिक उत्पादन तथा आय प्राप्ति का हो सकता है।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा खास अंक। सभी को ग्राम जगत से यहीं हम विदा,
2: समय हो गया है विदा लेने का सभी। ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की जताई प्रतिबद्धता। अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। देश में उच्च शिक्षा में नामांकन रिकॉर्ड 4.5 करोड़ के पार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, सुधारों का दिख रहा असर। राज्य के सभी सदर अस्पतालों में बनेंगे अत्याधुनिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को एक ही परिसर में मिलेंगी सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने रांची में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से की मुलाकात। ग्रामीण योजनाओं के प्रगति की समीक्षा। और रांची में डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर खेल सचिव ने की उच्च स्तरीय समीक्षा। 18 जुलाई को भारतीय सेना करेगी विशेष ट्रॉफी टूर का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। रांची में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने योजनाओं को समय पर पूरा करने और छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया। देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन का एक नया रिकॉर्ड बना है, जो बढ़कर 4.5 करोड़ तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ताज़ा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट के हवाले से बताया कि यह संख्या वर्ष 2014-15 की तुलना में 31% अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और स्टेम विषयों में विद्यार्थियों का बढ़ता नामांकन समावेशी भारत का एक बड़ा संकेत है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर चर्चा की। आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने शिकायतों के त्वरित निवारण पर संतोष जताया।
6: झारखंड में करीब करीब 90% से ज्यादा कार्य हो चुके हैं। चुनाव कार्य पदाधिकारी द्वारा संतोषजनक कार्य हो रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह किंतु परंतु नहीं है। जो हमारा कंप्लेन था BLO घर घर नहीं जा रहे हैं, उस पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि BLO को घर घर जाकर के सत्यापन करना है, न के बूथ पर बैठ करके।
5: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि गड़बड़ी मिलने पर धनबाद और गढ़वा के 2 BLO की सेवा समाप्त कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को फॉर्म जमा करने के लिए कैंप लगाने की अनुमति नहीं है।
7: कोई भी कैंप करवाने के लिए बात करके उसी तरफ से कराया जा रहा है, उसमें कैंप केवल पॉलिटिकल पार्टी कर सकते, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, कोई भी प्राइवेट।

0: व्यक्ति है कोई वार्ड पैसा था उसी तरफ से कोई वार्ड व्यक्ति कैंप नहीं कर सकते और पॉलिटिकल पार्टियां अपने ही जाओ वोटर के तरफ से BLA2 का माध्यम से करा सकते हैं, वहां पर भी वोटर से कोई भी फॉर्म भरवाने के नाम में पैसा खर्च नहीं लेना है।
1: छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने धनबाद में राजस्व कार्यों और विशेष

0: जिले में जो भी हल्की फुल्की निर्देश थे देने का था मैंने दिया है। आंतरिक संसाधन के जितने भी विभाग थे उनका भी प्रगति संतोषप्रद है, ऐसा कोई मुझे देखने को मिला। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का डिजिटलाइजेशन होने का तो संतोषप्रद है, शहरी क्षेत्र में कुछ कमी है जिसको हम लोग समय पर पूरा करते।
1: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी सदर अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए अत्याधुनिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विकसित किए जाएंगे। इन विशेष केंद्रों में आधुनिक लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रसव संबंधी सभी समग्र स्वास्थ्य सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। नई दिल्ली में आगामी 23 जुलाई को अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेवा दल का महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल होंगे। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज रांची के कांग्रेस मुख्यालय में झारखंड सेवा दल की बैठक हुई। मुख्य संगठनकर्ता नवीन कुमार सिंह ने कहा कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड से सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेंगे। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर निवेश के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रांची में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दावोस यात्रा के दौरान जिन कंपनियों के साथ एमओयू हुआ था उन्हीं के साथ दिल्ली में दोबारा एमओयू कर प्रस्तावों की रीपैकेजिंग की गई है। उन्होंने केंद्र की अनुमति के बिना जिंदल स्टील के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के एमओयू पर कड़ी आपत्ति जताई।
2: उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को जोड़ दिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना एक बेहद संवेदनशील विषय होता है जानते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इतने सारे डिपार्टमेंट्स की परमिशन की आवश्यकता होती है, वो बिना लिए उन्होंने घोषणा कर दी कि ये निवेश होगा। मैं कागज का एक टुकड़ा मानते हैं।
1: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में विभिन्न छात्र संगठन और अभ्यर्थी कल रांची स्थित JPSC कार्यालय का घेराव करेंगे। आगामी आंदोलन की रणनीति को लेकर आज रांची में अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों की बैठक हुई। आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने प्रदर्शन को समर्थन देने की घोषणा करते हुए परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता जताई। अभ्यर्थियों ने सभी छात्रों और राजनीतिक दलों के छात्र विंग से राजनीतिक मतभेद भुलाकर एकजुट होने की अपील की है। रांची में आयोजित 2 दिवसीय पंचायत समुदाय समन्वय कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांड्य सिंह ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि महिलाओं को सक्रिय भागीदारी के बिना समृद्ध झारखंड की कल्पना अधूरी है। उन्होंने समावेशी स्थानीय विकास के लिए पंचायतों और स्वयं सहायता समूह के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।
3: पंचायती राज की प्रतिनिधि और जो हमारी समूह की बहनें हैं जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन बना करके अब काम कर रही हैं, उनके सामूहिकता से किस तरीके से हमारे पंचायत, हमारे गांव और कैसे समृद्ध हो सकते हैं। आजीविका के जो काम है उसमें GPDP और जो विलेज BR PPRP को कैसे समायोजित करते हुए हम लोग अपने गाँव को समृद्धि की तरफ ले जाए, इसका यह प्रयास है और यह सहभागिता से संभव है, उस पर यह कार्यशाला।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने आज रांची में राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांड्य सिंह से मुलाकात कर विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र राज्य समन्वय मजबूत करने पर चर्चा हुई। राज्य में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है जिससे अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल रांची, जमशेदपुर, धनबाद और दुमका सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। हालांकि राज्य में अब भी सामान्य

0: से 40% कम बारिश दर्ज की गई है। रांची में 26 जुलाई से शुरू होने वाले डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियों को लेकर खेल सचिव मुकेश कुमार ने समीक्षा बैठक की। मोरहाबादी स्टेडियम में 16 अगस्त तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित आयोजन की सुरक्षा और साफ सफाई के कड़े निर्देश दिए गए हैं। आगामी 18 जुलाई को भारतीय थल सेना द्वारा शहर में विशेष ट्रॉफी टूर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की जताई प्रतिबद्धता। अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। देश में उच्च शिक्षा में नामांकन रिकॉर्ड 4.5 करोड़ के पार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, सुधारों का दिख रहा असर। राज्य के सभी सदर अस्पतालों में बनेंगे अत्याधुनिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को एक ही परिसर में मिलेंगी सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने रांची में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से की मुलाकात। ग्रामीण योजनाओं के प्रगति की समीक्षा। और रांची में डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर खेल सचिव ने की उच्च स्तरीय समीक्षा। 18 जुलाई को भारतीय सेना करेगी विशेष ट्रॉफी टूर का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:11 हुए हैं। लोक गीतों के कार्यक्रम में आज गायक कलाकार हैं नवल किशोर नवीना। आरंभ में इनके स्वर में आपको सुनवाते हैं एक शिव भजन।

0: इस झूमर के साथ ही लोकगीतों का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
2: तो अंजुला बहन, इस संदेश से पहले हम लोग सुन रहे थे नीतू कुमारी नूतन से झूमर गीत, और मैं तो देख रही थी आप खूब झूम रही थी
3: भाई। देखने इतना बढ़िया बढ़िया गीत सुन रही थी तो इनका धन्यवाद तो मिलने के चाहिए। तो इनका बहुत नीतू कुमारी नूतन का धन्यवाद। और हम दोनों बहन विद्यालय श्रोता लोग से
2: तो चले
3: नमस्कार सोमा बहन।
2: नमस्कार अंजुला बहन।

0: ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। एक अंतराल के बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: पापा लाइए 3,000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ,
4: ले ले।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: पशुपालक भाई बहन, अत्यधिक गर्मी में पशुओं के रख रखाव का कृपया ध्यान रखें।
8: पशुओं को लू से बचाने के लिए छायादार जगह पर रखें। पशु घर को ठंडा रखने के लिए जूट की टाट लटकाकर उसे गीला रखें। उन्हें दिन में 2 से 3 बार नहलाएं, 3 से 4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को दें। खाने में अजोला घास, शुगर और जौ की मात्रा बढ़ा दें। चराने के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजें। लू लगने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें।
9: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
10: और इस गीत के बाद
11: छाया की

0: is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.
1: Namaskar. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा समाप्त। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, जन सुराज के प्रशांत किशोर और जन शक्ति जनता दल की वीणा मांडवी ने दाखिल किया पर्चा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार हेली और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत की। अनुदानित दर पर लोग ले सकेंगे सेवा का लाभ। पटना में कल से शुरू होगा राज्य स्तरीय सहयोग शिविर। मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे शिकायतों की समीक्षा। और मौसम विभाग ने कल दरभंगा, सुपौल, भागलपुर, किशनगंज, मधुबनी और सहरसा समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नामांकन की समय सीमा आज समाप्त हो गई। नामांकन के आज अंतिम दिन भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा जन शक्ति जनता दल के उम्मीदवार वीणा मांडवी ने भी अपना पर्चा भरा। इससे पहले उम्मीदवारों ने रोड शो भी किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि भाजपा उम्मीदवार के नामांकन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ की, पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
4: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जिन अन्य प्रमुख उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं, उनमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तनवीर आलम, प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया के प्रेम शंकर प्रसाद, प्रगतिशील जनता पार्टी के मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव और निर्दलीय सिकंदर कुमार तथा मिथिलेश कुमार शामिल हैं। एक किन्नर उम्मीदवार प्रियांशु राज ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। उपचुनाव के लिए उम्मीदवार 16 जुलाई तक नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 30 जुलाई को होगा जबकि मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
3: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद जन शक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मांडवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उनको पटना की एक अदालत ने जमानत दे दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। इस बीच जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि वीणा मांडवी को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया।
5: ये साजिश है, ये सरकार के तरफ से साजिश किया गया है। हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये आदि आबादी की बात कर रहे थे और ये हमारा कैंडिडेट जो वीणा मांडवी जी है, इनका लोकप्रियता भी है और अपने पार्टी जेजेडी जनशक्ति जनता दल की कैंडिडेट हुई है, तो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग।
3: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को किसी भी दल से कोई चुनौती नहीं है।
6: बांकीपुर की जनता बीजेपी के समर्थन में रही है, जंगल राज से लालू जी के खिलाफ रही है। हमारा एक बहुत प्रामाणिक सरल कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता खड़ा है, जनता निर्णायक मतों से जिताई।
3: जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन ने दावा किया कि बांकीपुर से भाजपा उम्मीदवार को भारी मतों से जीत मिलेगी।
7: मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे आसान जीतने वाली सीटों में से एक बांकीपुर है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है, इससे ज्यादा अहम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और एनडीए लड़ रही है। मतदाता सकारात्मक संदेश देंगे।
3: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और मंत्री दीपक प्रकाश ने भी दावा किया कि उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को एक तरफा जीत मिलेगी।
8: मुझे पूरा विश्वास है कि जो काम हुआ है केंद्र की सरकार के द्वारा, राज्य की सरकार के द्वारा और पिछले 20 सालों में जो काम हुआ है बिहार में, निश्चित तौर पर जनता उस पर मोहर लगाई। सरकार के काम के ऊपर वोटिंग होगी और जीत बिल्कुल निश्चित है एनडीए कैंडिडेट की।
3: राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता ने कहा कि बांकीपुर की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है।
9: बांकीपुर विधानसभा की जनता है, उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है मुझे और इस बार राष्ट्रीय जनता दल बांकीपुर विधानसभा से जीतेगी। कोई चुनौती नहीं है, सारी चुनौतियां पहले भी थी और फिर भी मैंने फेस किया और बहुत अच्छा समर्थन मिला, इस बार भी मिलेगा और इस बार जीत कराऊंगी।
3: इधर जन सुराज के प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बांकीपुर की जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने का मन बना लिया है।
10: बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है, ये बिहार में बीजेपी के अहंकार पर अंकुश लगाने का चुनाव है, ये बिहार में चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने का चुनाव है।
3: प्रदेश में अब पर्यटक हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवाओं का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पर्यटकों के लिए आवागमन को सुगम बनाना और लोगों को बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों का सुविधाजनक अनुभव उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास में पर्यटन की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
11: ये हेली टूरिज्म, एयर टूरिज्म या होम स्टे की कल्पना तो सभी जिले में इसको फोकस किया जा रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। अभी तो सिर्फ हम लगा रहे हैं, 2100 रुपया आम जनता लगाएगी और 15,000 सरकार देगी। हम जरूर ये चाहते हैं कि हम इसमें प्राइवेट पार्टी को और लाएं। हमारे पास कई एयरपोर्ट सब आ गए और कई जगह हमारे पाइपलाइन में मुजफ्फरपुर, रक्सौल, बीरपुर, सहरसा, बेगूसराय, भागलपुर, राजगीर, कई जगह हम लोग और इस चीज की कल्पना कर रहे हैं।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से शुरू की गई है। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। वर्तमान में साप्ताहिक आधार पर शुरू की जा रही एयर पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा के रूप में विस्तारित किया जाएगा।
12: राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रुपए, पटना राजगीर के लिए 4000 रुपए, पटना वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रुपए और पटना कैमूर के लिए 6000 रुपए में टिकट बुक कर सकते हैं। प्रति टिकट सरकार अधिकतम 15,422 रुपए का अनुदान दे रही है। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
3: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
13: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य सरकार अब आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर आयोजित करेगी। इसकी शुरुआत कल से मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में होगी। एक रिपोर्ट।
14: यह विशेष शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समाधान से संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों बोधगया में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि वे स्वयं के स्तर से चयनित आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा करेंगे।
15: सहयोग कार्यक्रम मैंने चलाया, उसमें सब ऑटोमेटिक है, किसी को कुछ नहीं करना है। फिक्स किया कि 30 दिन में ऑर्डर करना है और 30 दिन में यदि किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन उसको सस्पेंशन ऑर्डर देना है, कोई दूसरा काम नहीं करना। और इसके बावजूद यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि महीने में एक दिन वैसे लोगों से मिलूंगा जिन लोगों को बिहार के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी ने न्याय नहीं दिया और सीधा उसको जोड़ूंगा।
14: राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के लिए आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों के शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर।
3: मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, अररिया, मधेपुरा और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। पश्चिम चंपारण के मैनाटांड में सबसे अधिक 169 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कल दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश जबकि अररिया, बांका, भागलपुर, किशनगंज, मधुबनी और सहरसा जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
16: दिनांक 14 जुलाई राज्य के दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी एवं वैशाली जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी एवं सहरसा जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
3: नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते कोसी और गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि आज दोपहर 2 बजे तक कोसी बराज से 172,435 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
17: भीमनगर कोसी बराज पर पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए 20 फाटकों को खोल दिया गया है। बाढ़ नियंत्रण बीरपुर के मुख्य अभियंता संजीव शैलेश ने बताया कि पानी को डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोसी नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध समेत सभी बांध पूरी तरह सुरक्षित हैं। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी।
3: इधर हमारे बेतिया संवाददाता ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से नदी का डिस्चार्ज 1,00,000 क्यूसेक के पार पहुंच गया है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। बागमती नदी सोनाखान में खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी अभिनेता कुंजन सिंह ने आज आर्म्स एक्ट के एक मामले में गोपालगंज की MP MLA विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के बाद अदालत ने दोनों को जमानत दे दी। यह मामला मीरगंज थाना क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से हथियार लहराने का है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने वर्ष 2019 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज बेगूसराय की MP MLA अदालत में आत्मसमर्पण किया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 10,000 रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी। पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलानाड़ी पुल के पास दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। दरभंगा मंडल कारा के सहायक अधीक्षक नंदू कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ पत्नी की हत्या का मामला दर्ज है। इस मामले में न्यायालय ने उनके विरुद्ध वारंट भी जारी किया है। पटना के दीदारगंज से पुलिस ने कृषि विभाग के आयुक्त की बोर्ड लगी कार से 1 लाख रुपए मूल्य की शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा की एक अदालत ने मारपीट के 6 साल पुराने मामले में 5 दोषियों को 3-3 साल कारावास और 5 अन्य दोषियों को 2-2 साल कारावास की सजा सुनाई है। अररिया व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कानूनी सहायता क्लिनिक की शुरुआत की गई है। यहाँ बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा समाप्त। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, जन सुराज के प्रशांत किशोर और जन शक्ति जनता दल की वीणा मांडवी ने दाखिल किया पर्चा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार हेली और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत की। अनुदानित दर पर लोग ले सकेंगे सेवा का लाभ। पटना में कल से शुरू होगा राज्य स्तरीय सहयोग शिविर। मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे शिकायतों की समीक्षा। और मौसम विभाग ने कल दरभंगा, सुपौल, भागलपुर, किशनगंज, मधुबनी और सहरसा समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

0: जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
8: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है औरंगाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर।
9: औरंगाबाद जिले के बारून में सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने 11 जुलाई को प्रस्तावित परियोजना स्थल का निरीक्षण करने के बाद बताया कि बारून प्रखंड के मेह और शेखपुरा गांव के निकट 150 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाले सोलर पार्क के निर्माण को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना का निर्माण 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के पूरा होने के बाद औरंगाबाद न केवल बिहार के प्रमुख सौर ऊर्जा केंद्रों में शामिल होगा, बल्कि राज्य की ऊर्जा व्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 पर औरंगाबाद और ओबरा में बाईपास की योजना को स्वीकृति मिल गई है। इसके बनने से औरंगाबाद और ओबरा में जाम की समस्या से नागरिकों को राहत मिलेगी। इधर औरंगाबाद पटना सड़क को 4 लेन किए जाने की मांग के मद्देनजर पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह और विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। जनप्रतिनिधियों ने लोगों की मांग का समर्थन करते हुए इस सड़क निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा है। ग्रामीण विकास तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर श्रवण कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आधुनिक हाट बाजार विकसित किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर जीविका दीदियों और किसानों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री की जाएगी। डॉक्टर कुमार ने बताया कि इसके लिए नाबार्ड ने आवश्यक धनराशि देने की सहमति दे दी है। जन शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए मदनपुर प्रखंड के नीमा अंजन पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन विधायक प्रमोद कुमार सिंह, जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा तथा पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने किया। इस अवसर पर विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की पहल से प्रशासन के अधिकारी स्वयं पंचायत स्तर पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। प्रशांत कुमार की पुस्तक चरैवेती एक जीवन यात्रा का विमोचन पिछले दिनों औरंगाबाद में आयोजित एक समारोह में किया गया। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, विधान पार्षद जीवन कुमार, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिलीप केसरी और सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से पुस्तक का विमोचन किया। पंजाब नेशनल बैंक के औरंगाबाद मंडल के तहत रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जिले में स्थापित 75 बैंक शाखाओं में ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए मंडल प्रमुख कंदर्प कुसुम ने आवश्यक निर्देश दिया है और लगातार बैंक शाखाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने औरंगाबाद जिले में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पटना में उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात की। श्री सिंह ने इस दौरान उत्तर पुल सिंचाई परियोजना और बटाने जलाशय परियोजना के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। मगध विश्वविद्यालय के सबसे पुराने सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में शैक्षणिक सांस्कृतिक साहित्यिक और खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेला जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। रामलखन सिंह यादव कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का संकल्प लिया गया है। प्राचार्य डॉक्टर विजय रजक ने बताया कि महाविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों की ओर से विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर 5,000 वृक्ष लगाए जा रहे हैं। जिले में एनटीपीसी लिमिटेड की स्टेज 2 के तहत 2,400 मेगावाट बिजली उत्पादन की कुल 3 इकाइयों के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक सह परियोजना प्रमुख एलके बेहरा ने बताया कि स्टेज 2 के निर्माण कार्य को निर्धारित समय पर पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण कार्य पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एनटीपीसी लिमिटेड और भारतीय रेल के संयुक्त उपक्रम भारतीय रेल बिजली कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर AJ राजकुमार की नियुक्ति की गई है। श्री राजकुमार ने अपना कार्यभार संभालने के बाद कहा कि बिजली उत्पादन के साथ साथ क्षेत्र के सामुदायिक विकास पर भी उनका विशेष ध्यान होगा। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा ने औरंगाबाद के नए पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभाल लिया है। श्री वर्मा ने जिले में आपराधिक तथा अन्य अवैध गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए सघन अभियान चलाने और पुलिस गश्त तेज करने का निर्देश दिया है। जिले के दाऊदनगर के रहने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विकास कुमार को पटना में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
8: अभी आप सुन रहे थे औरंगाबाद जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कमल किशोर।
10: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। शाम के 7:52 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। आज इस कार्यक्रम में गायक कलाकार हैं सुशील ठाकुर। आरंभ में इनके स्वर में सुनवाते हैं आपको विद्यापति की ये भक्ति रचना।

सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। पहला गाना हमने फिल्म गैम्बलर से लिया है। लता मंगेशकर एवं साथियों की आवाजें हैं। क्षमा करेंगे, पहला गीत हमने जॉनी मेरा नाम से लिया है।

0: है जाने कहां गए।
1: कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म प्यासा का एक नगमा। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं सचिन देवबर्मन।

0: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just Rs. 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
1: इसी के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8:15 हुए हैं। पेश है साप्ताहिक गतिविधियों खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। प्रस्तुत करता है मोहम्मद सरशार अहमद।
2: श्रोताओं, खेल जगत के तमाम छोटे बड़े और रोचक खबरों को समेटे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी सुन रहे हैं आप, और खेल खिलाड़ी के नए अंक को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं मिलिंद गुंजन। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले एक नजर आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर कि क्या कुछ सहेजा है हमने आज के इस कार्यक्रम में खास आपके लिए। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे समसामयिक खेल गतिविधियां, खेल जगत की रोचक खबरें, स्पोर्ट्स कॉर्नर में बात करेंगे भारत इंग्लैंड T20 क्रिकेट श्रृंखला में भारत की पराजय पर, वह कार्यक्रम के आखिरी स्तंभ में होगी आप सबों के खेल ज्ञान की परीक्षा, हमारे सवाल आपके जवाब में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेल जगत के ताजा तरीन हलचलों से हमारे नियमित स्तंभ खेल गतिविधियां में, और खेल गतिविधियों की शुरुआत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बड़ी खबर से। खिताब बचाने के अभियान पर निकली अर्जेंटीना इतिहास रचने से सिर्फ 2 जीत दूर है, लेकिन फाइनल का टिकट पाने के लिए उसे मंगलवार को अटलांटा में इंग्लैंड की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। दोनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल में रविवार को अतिरिक्त समय में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। 24 साल के बाद विश्व कप में आमने सामने उतरने जा रही इन दोनों दिग्गज टीमों की भिड़ंत में दुनिया की निगाहें लियोनेल मेसी और हैरी केन की कप्तानी वाली जंग पर टिकी होंगी। गत चैंपियन अर्जेंटीना ने रविवार को 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही स्विट्जरलैंड को अतिरिक्त समय में 3-1 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। हालांकि स्कोरलाइन जितनी आसान दिख रही है, अर्जेंटीना के लिए यह जीत उतनी ही टेढ़ी खीर थी। पिछले मैच में मिस्र से बमुश्किल बचने के बाद टीम मेसी को लगातार दूसरे नॉकआउट मैच में कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। स्विट्जरलैंड के स्टार स्ट्राइकर ब्रिल एम्बेलो को 72वें मिनट में मिला दूसरा पीला कार्ड टर्निंग पॉइंट बन गया। 2 पीले कार्ड के रेड कार्ड में बदलने से एम्बेलो बाहर हो गए। इस फैसले के बाद वह रोते हुए मैदान छोड़कर गए और स्विस टीम को करीब 60 मिनट 10 खिलाड़ियों से ही खेलना पड़ा। एक और टर्निंग पॉइंट मैच के अतिरिक्त समय में तब आया जब अर्जेंटीना के जूलियन अल्वारेज ने पेनल्टी बॉक्स के बाहर करीब 28 मीटर की दूरी से अपने करियर का संभवतः सबसे यादगार गोल दागा। बाएं फ्लैंक से मारा गया शॉट इन स्विंग होता हुआ ऊपर के नेट के कोने में जा घुसा। यहां मैच बिल्कुल पलट गया और निर्धारित समय तक 1-1 से बराबर पर रही अर्जेंटीना अब 2-1 से आगे हो गई। गोल खाने के बाद स्विट्जरलैंड को मजबूरी में डिफेंसिव खेल छोड़ना पड़ा। इसका फायदा अर्जेंटीना को मिला और एक काउंटर आक्रमण में लौतारी मार्टिनेज ने 120+1 मिनट में विपक्षी गोलकीपर से रिबाउंड होकर आई गेंद को नेट में डाल दिया। स्विट्जरलैंड के खिलाफ लियोनेल मेसी के लगातार 9 विश्व कप मैचों में गोल करने की ऐतिहासिक लय भी टूट गई है। मेसी ने विश्व कप में अपना 10वां असिस्ट किया और 1966 के बाद सबसे ज्यादा असिस्ट करने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं। लियोनेल मेसी ने अपने पिछले 8 विश्व कप नॉकआउट मैचों में 13 गोल में सीधा योगदान दिया है, इसमें 7 गोल और 6 असिस्ट हैं। मेसी ने इस बार साथियों को 20वां ऐसे पास दिए जिसने शॉट लगाए। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड और नॉर्वे की। इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच मुकाबले में निगाह दुनिया के युवा स्ट्राइकरों हैरी केन और इलिंग हॉलैंड पर थी, पर जादू चला इंग्लैंड के 23वें मिडफील्डर जूड बेलिंगहम का। उनके 2 गोल के दम पर इंग्लैंड ने नॉर्वे का 2-1 से सफर खत्म कर 8 साल बाद अंतिम 4 में जगह बनाई है। इंग्लैंड 60 साल में अपने पहले फाइनल से बस 1 कदम जीत से दूर है, लेकिन वहां मुकाबला अर्जेंटीना की टीम से है। बेलिंगटन 45+2 और 93वें मिनट ने पहले हाफ पिए इंजरी टाइम के बाद अतिरिक्त समय में गोल किए। उनके केन के बराबर 6 गोल हो गए हैं। नॉर्वे के लिए आंद्रियास स्लज ड्रेप ने 36वें मिनट में गोल करके टीम को बढ़त दिला दी। इस जीत से ही नॉर्वे का जश्न मनाने का अनूठा अंदाज भी छा गया। निर्धारित समय तक मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। अतिरिक्त समय के 30वें मिनट में बेलिंगहम ने गोल कर इंग्लैंड को 2-1 से बढ़त दिलाई, जो निर्णायक साबित हुई। बेलिंगहम ने 11 मिनट के बाद ही बराबरी का गोल कर इंग्लैंड के समर्थकों में जोश भर दिया। इससे ठीक पहले नॉर्वे की गोल किक के दौरान गेंद हवा में लगे कैमरे के केवल से टकराकर इंग्लैंड के इलियोट एंडरसन के पास गिरी। उन्होंने तुरंत बेलिंगहम को पास दिया। उन्होंने एक लो शॉट दूर वाले पोस्ट की ओर दागा, जिससे गोलकीपर ओरिजन लाइनिंग रोक नहीं सके। फीफा के नियमों के अनुसार अगर गेंद केवल से टकराने का पता चल जाता तो खेल रोक दिया जाता। गेंद पर नियंत्रण तय करने के लिए ड्रॉप बॉल का इस्तेमाल किया जाता। कुछ रिकॉर्ड की बात करें तो 23 साल 12 दिन की उम्र में जूड बेलिंगहम लगातार 2 विश्व कप नॉकआउट मैचों में 2-2 गोल करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे आगे सिर्फ पेले हैं, 17 साल 249 दिन 1958। बेलिंगहम के नाम अब विश्व कप में 7 गोल हो गए हैं। इंग्लैंड के लिए उनसे आगे केन 14 और लाइनेकर 10 हैं। उनके 6 नॉन पेनल्टी गोल 1986 में गैरी लाइनेकर के रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी कर ली है। 24 साल की उम्र में पहले उन्होंने सबसे ज्यादा गोल एम्बापे ने किए। इस उम्र में जूड ने पेले की बराबरी की है। पहली बार एक ही विश्व कप में इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों ने 5 या इससे ज्यादा गोल दागे हैं। नॉर्वे ने 56वें मिनट में 2-1 की बढ़त बना ली थी, जब टोरबर्ने हेंगम ने कॉर्नर किया था पर रिबाउंडर पर गोल किया। हालांकि वीडियो रिव्यू के बाद उसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि हॉलैंड ने बॉक्स के भीतर फाउल किया था। और अब बात एक और अहम मुकाबले की। स्पेनिश टीम के लिए एक बार फिर से सुपर सब स्थानापन्न खिलाड़ी मिकेल मेरिनो संकटमोचक बने। आर्सेनल के मिडफील्डर मेरिनो ने बेंच से मैदान पर उतरने के 117 सेकंड के अंदर मैच का पासा ही पलट दिया। उनके इस मैजिक से स्पेन ने शुक्रवार की रात बेल्जियम को 2-1 से हराकर 16 साल बाद फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए फैबियान रुइज 30वें मिनट और मेरिनो ने गोल किए, जबकि बेल्जियम के लिए एकमात्र गोल फॉरवर्ड चार्ल्स डी कैटलेरो ने 41वें मिनट में किया। फाइनल में जगह बनाने के लिए स्पेन को मंगलवार से प्रबल दावेदार फ्रांस की चुनौती से बाहर पाना होगा। जो 4 टीमें हैं उन 4 टीमों का फैसला हो गया है कि कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में इस बार पहुंची हैं फीफा विश्व कप में। उसकी अगर हम बात कर लें तो फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना, ये 4 टीमें हैं। और पहला सेमीफाइनल मुकाबला फ्रांस और स्पेन के बीच होगा 15 जुलाई बुधवार की रात में, जबकि दूसरे सेमीफाइनल की अगर हम बात करें तो दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच 16 जुलाई को अटलांटा स्टेडियम अटलांटा में। तीसरे स्थान का मैच 19 जुलाई को खेला जाएगा और 20 जुलाई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इस फीफा विश्व कप 2026 का। लेकिन जो शानदार तरीके से अगर हम बात करें तो जो जिन टीमों ने इसमें जगह बनाई है उसने फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, और जो टीम बाहर हो गई उसने ब्राजील एक बहुत बड़ा नाम है। और ब्राजील की टीम जब हार के बाहर हो गई तो उनके कप्तान नेमार रोते हुए मैदान से बाहर हुए और ब्राजील की टीम बाहर होगी। ब्राजील, आप श्रोता जानते हैं इस बात को कि ब्राजील वो टीम है जो ब्लैक पर्ल पेले का कहते हैं कि फुटबॉल विश्व कप में पेले से बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं हुआ। उसी पेले की जो ब्राजील की टीम है वो सेमीफाइनल में नहीं क्वालिफाई कर पाई। और सेमीफाइनल में केवल 4 टीमें जो क्वालिफाई करने में सफल रही है इस बार, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच मुकाबला बहुत रोचक और जबरदस्त होने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से जूड बेलिंगहम ने अपना जादू दिखाया क्वार्टर फाइनल में, उससे राहें आसान नहीं हैं अर्जेंटीना की। चूंकि अर्जेंटीना भी यहां तक पहुंची सेमीफाइनल में जरूर है, लेकिन अब उन्हें अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, बेस्ट प्रदर्शन करना होगा, तभी उस मुकाबले में आप इंग्लैंड की टीम से पार पा सकते हैं। क्योंकि जूड बेलिंगहम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और इंग्लैंड की टीम को वहां हराना अर्जेंटीना के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं जो एक और सेमीफाइनल है फ्रांस और स्पेन का, यहां पर बहुत मजबूत दोनों टीमें आपस में टकराएंगी और इस मैच का परिणाम किसके पक्ष में पड़ना भारी होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और सब लोगों की निगाहें इस पर टिकी होगी, फ्रांस और स्पेन के मुकाबले में आखिर क्या बाजी फ्रांस मार ले जाएगी या स्पेन एक बार फिर से फ्रांस को मात देने में कामयाब होगी। तो हमारी भी नज़र लगातार इस पर बनी रहेगी और इस पर फीफा विश्व कप से जुड़ी और भी खबरें हम आप श्रोताओं तक पहुंचाते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं विंबलडन की। विंबलडन में बात सबसे पहले महिला एकल की। 21 साल की युवा टेनिस खिलाड़ी लिंडा नेस्कोवा ने विंबलडन के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। चेक गणराज्य की लिंडा शनिवार को अपने ही देश के साथी खिलाड़ी 29 साल की कैरोलिना मुचोवा को हराकर पहली बार साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की मलिका बन गई हैं। इसके साथ ही अपने देश की दूसरी सबसे युवा विंबलडन चैंपियन है। इससे पहले पेत्रा क्वितोवा ने 21 साल 116 दिन की उम्र में 2011 में ये ट्रॉफी अपने नाम की थी। नोसनकोवा एक समय 6-2 5-2 से एडवांटेज पर खिताब से बस एक अंक दूर थी। ऐसी स्थिति से मुचोवा ने करिश्माई वापसी करके मुकाबला तीसरे सेट में खींच दिया। हालांकि उसके बाद वह लय बरकरार नहीं रख सकी। नोसनकोवा ने बेहतरीन सर्व और वाली के साथ ही पावरफुल बैकहैंड रिटर्न के साथ अपनी संघर्ष क्षमता जज्बे के दम पर खिताबी मुकाबला जीत लिया। नोसनकोवा ने अंत में 6-2 7-5 6-3 से मैच जीतकर चैंपियन की सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया। नोसनकोवा पिछले 4 साल में चेक गणराज्य की तीसरी चैंपियन है। इससे पहले 2023 में मार्केटा वोंडुसोवा और 2024 में बारबोरा किजिकोवा ने खिताब जीता था। पिछले साल हालांकि पोलैंड की इना स्वैतेक ने ट्रॉफी उठाई थी। नोसनकोवा पिछले 16 साल में विंबलडन चैंपियन बनी चेक गणराज्य की कुल 5वीं खिलाड़ी हैं। करियर में 3 एकल खिताब जीत चुकी मुचोवा ने ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने 9 साल लगातार कोशिश की और आखिरकार 28वें प्रयास में पहली बार ग्रैंड स्लैम के खिताबी मुकाबले में पहुंचने में वो सफल हुई, पर इसमें भी उन्हें निराशा हाथ लगी।

वह तीन बार क्वार्टर और तीन बार सेमीफाइनल तक पहुंची थी। वह दो बार क्वार्टर तक पहुंची जबकि पिछले चार साल से पहले दौर में ही वो बाहर हो रही थी। उधर अगर हम बात कर लें विंबलडन में युगल मुकाबलों की, विंबलडन के युगल मुकाबलों में क्रिस्टियाना म्लादेनोविच और गुओ हानयू की जोड़ी ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिलाओं का युगल खिताब जीत लिया है। उन्होंने रविवार को साल के तीसरे ग्रैंडस्लैम के फाइनल में कनाडा की गैब्रिएला ड्राबोस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी को 6-3, 7-5 से शिकस्त दी है। फ्रांस की माल्देनोविच का यह सातवां युगल खिताब है। इससे पहले उन्होंने अलग अलग साथियों के साथ चार बार फ्रेंच ओपन और दो बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी जीता है। म्लादेनोविच और चीन की गुओ ने इस साल ही साथ खेलना शुरू किया। जोड़ी के तौर पर यह उनका पहला ग्रैंडस्लैम खिताब है। यूएस ओपन में दो बार युगल चैंपियन रही डाबो की तीसरी बार विंबलडन युगल युगल में उपविजेता रही। वर्ष 2019 और 24 के फाइनल में भी वो हार चुके हैं। ब्राजील की स्टेफनी का पहला ग्रैंडस्लैम युगल फाइनल था। इस बीच ब्रिटेन के प्रिंस विलियम रविवार को विंबलडन में अपनी पत्नी केट और बच्चों के साथ वहां पहुंचे थे। इस दौरान रॉयल बॉक्स में हॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी शामिल थे। और अब बात कर लेते हैं लॉर्ड्स टेस्ट की, महिला क्रिकेट टीम की। भारतीय युवा क्रिकेटर यास्तिका भाटिया ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। वह क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स मैदान में शतक जड़ने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जहां जारी एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन रविवार को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उनकी इस पारी की मदद से भारतीय टीम जीत की दहलीज पर पहुंच गई है। यास्तिका ने अपने 113 रन की पारी में 158 गेंदों पर 14 चौके लगाए। इससे भारत ने दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित करके मेजबान को 457 रन का विशाल लक्ष्य दिया है। भारत की पहली पारी के 285 रन के जवाब में मेजबान टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई थी। दूसरी पारी में विशाल लक्ष्य के सामने मेजबान टीम का शीर्ष क्रम पूरी तरह से बिखर गया। दिन का खेल खत्म होने के समय टीम का स्कोर 6 विकेट पर 130 रन था। टीम अभी लक्ष्य से 327 रन दूर है। क्रांति गौर, स्नेह राणा और सियालीस सतघरी ने 2-2 विकेट लिए। 25 वर्षीय यास्तिका का पहला टेस्ट शतक है। उन्होंने 145 गेंदों पर 12 चौकों के साथ शतक पूरा किया। यास्तिका भाटिया ने पारी के दौरान मैदान के चारों ओर स्ट्रेट ड्राइव पुल हुक की मदद से रन बटोरे। भारत ने सुबह 154 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर आगे बढ़ाना शुरू किया। भाटिया पहली ही गेंद पर अपनी 39 रन पर आउट हो सकती थी जब लॉरेन बेल की गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा से लगकर स्टंप से टकराई पर बेल्स नहीं गिरी। यहां पर किस्मत का साथ मिला और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाते हुए 6 चौके समेत 86 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। कुछ रिकॉर्ड की बात कर लें तो इससे पहले अब तक 3 टेस्ट मैचों की 5 पारियों में 98 रन बनाने वाले यास्तिका ने लॉर्ड्स में ऐतिहासिक शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। बाएं हाथ की विकेट कीपर बल्लेबाज इसके साथ ही भारत की ओर से किसी टेस्ट की तीसरी या चौथी पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गई हैं। उन्होंने संध्या अग्रवाल 98 रन चौथी पारी बनाम न्यूजीलैंड 1985 का 41 साल पुराना रिकॉर्ड भी इसके साथ तोड़ दिया। बड़ोदरा की यास्तिका को क्रिकेट ही नहीं बल्कि कई अन्य खेलों में भी महारत हासिल है। वह कराटे की ब्लैक बेल्ट धारक होने के साथ ही बेहतरीन तैराक और जिला स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। 5 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण करने वाली यास्तिका ने 11 साल की उम्र में बड़ोदरा की अंडर 19 टीम में जगह बना ली थी। मध्यम तेज गेंदबाज से करियर शुरू करने वाली खिलाड़ी ने चयनकर्ताओं की सलाह पर विकेट कीपिंग शुरू की थी और अब इस तरह से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम का चयन किया गया है उसकी अगर हम बात करें 3 जिम्बाब्वे सीरीज के लिए, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चयनकर्ताओं ने विश्व कप विजेता टीम के बल्लेबाज संजू सैमसन को इस महीने के आखिर में जिम्बाब्वे में होने वाले 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया है। हरारे में 23, 25 और 27 जुलाई को होने वाले मैचों के लिए चयनकर्ताओं ने पहली बार तेज गेंदबाजों यश ठाकुर और अशोक शर्मा को 15 सदस्य टीम में जगह दी है। बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे को भी पहली बार टीम में जगह मिली है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मुकाबलों के लिए चोटिल नीतीश कुमार रेड्डी की जगह शिवम दुबे को टीम में शामिल किया गया है। सैमसन की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को शामिल किया गया। सूत्र बताते हैं संजू सैमसन सितंबर में होने वाले एशियाई खेलों की टीम का हिस्सा है, इसलिए चयन समिति ने शायद उन्हें मौका नहीं दिया है कि थोड़ा उन्हें होमवर्क करना है और अपने प्रदर्शन में और सुधार लाना है। जो टीम चयनकर्ताओं ने जिम्बाब्वे सीरीज के लिए चुनी है वो इस प्रकार है। T20 टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ श्रेयस अय्यर कप्तान, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन, शिवम दुबे, सूर्यांश सेडगे,
रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्र

चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह। इंग्लैंड के खिलाफ जो वनडे टीम चयनकर्ताओं ने चुनी है वो शुभमन गिल कप्तान रहेंगे भारतीय टीम के, रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार और शिवम दुबे। ये टीम चयनकर्ताओं ने चुनी है और अब देखना होगा कि टीम किस तरह से प्रदर्शन करती है इंग्लैंड के विरुद्ध वनडे मुकाबलों में, और साथ ही साथ वनडे के अलावा जिम्बाब्वे के विरुद्ध जो तीन T20 मुकाबले खेले जाने हैं उस श्रृंखला में। यह तो थी खेल जगत की रोचक खेल जगत की ताजा तरीन खबरें हमारे स्तंभ खेल गतिविधियां में, और श्रोताओं हम आपको ले चलते हैं अपने अगले खबर खेल जगत के रोचक खबरों की तरफ।

खेल जगत के रोचक खबरों की शुरुआत करते हैं श्रोताओं, और इंग्लैंड के टेस्ट कोच की दौड़ में द्रविड़ शामिल हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ इंग्लैंड की टेस्ट टीम के अगले मुख्य कोच बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अगर माने तो टेस्ट टीम में कोच पद से हटाए जाने के बाद इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड संभावित उम्मीदवारों पर विचार कर रहा है, क्योंकि ब्रेंडन मैकुलम को हटा दिया गया है। संभावित जो कोच हैं उसमें द्रविड़ का नाम प्रमुखता से शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक मैकुलम 4 साल का कार्यकाल न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 1-2 के हार के बाद उनका समाप्त कर दिया गया। हालांकि यह इंग्लैंड की वनडे और T20 टीमों के मुख्य कोच बने रहेंगे। इसी भी अगले साल होने वाले एशेज से पहले टेस्ट टीम के लिए नया कोच नियुक्त करना चाहती है। 53 वर्षीय द्रविड़ ने भारत को 2024 T20 विश्व कप को जिताने के साथ 2023 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तक पहुंचाया था। उनकी रणनीतिक सोच, अनुशासन और टेस्ट क्रिकेट की गहरी समझ उन्हें इस पद के लिए मजबूत दावेदार बनाती है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि द्रविड़ की फिलहाल पूर्णकालिक कोचिंग में खास रुचि नहीं है। इंग्लैंड का टेस्ट कोच पद उन्हें अधिक समय घर पर रहने का अवसर दे सकता है। दौड़ में पूर्व इंग्लैंड कोच एंडी फ्लावर, रिचर्ड डॉसन, संगकारा, फ्लिंटॉफ, माइक हसन और जस्टिन लिंगर भी शामिल हैं, लेकिन कह सकते हैं कि राहुल द्रविड़ का पलड़ा इन सब पर भारी पड़ता दिख रहा है। और अब बात कर लेते हैं सौरभ गांगुली की। जी हाँ, पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को बुधवार को उनके 54वें जन्मदिन पर एक शानदार तोहफा मिला है। एडिनबर्ग में हुई ICC की सालाना बैठक में उन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। गांगुली ने लिखा है कि मुझे हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के लिए ICC और चेयरमैन जयसा का धन्यवाद। यह एक बहुत बड़ा सम्मान है, हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10 भारतीयों में से एक बनाना। इस महान नामों का हिस्सा बनना अद्भुत है। जी हाँ, ये शब्द हैं सौरभ गांगुली के। और अब बात विंबलडन के सबसे लंबे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की। जहां नोवाक जोकोविच ने फिर से दिखाया है कि क्यों वह घसियाले कोर्ट के बादशाह हैं। पहले ही सेट में टकने और पिंडली में परेशानी के चलते मेडिकल टाइम आउट लेना पड़ा। 39 साल के जोकोविच 14 साल छोटे फेलिक्स ऑगर एलियासमे के खिलाफ पट्टी बांधकर खेले दर्विन के जोश और जुनून के आगे टिक नहीं पाया। उन्होंने मंगलवार को विंबलडन इतिहास का सबसे लंबा क्वार्टर फाइनल जीतकर एक और रिकॉर्ड बना दिया। सेंटर कोर्ट पर जोकोविच ने कनाडा के 25 वर्षीय फेलिक्स को 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 से हराया। यह मैराथन मुकाबले 5 घंटे 15 मिनट तक चला। उन्होंने सबसे लंबे क्वार्टर फाइनल मुकाबले का 18 साल पुराना रेनर सुटलर और अर्नो क्लेमेंट 5 घंटे 12 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जोकोविच ओपन युग में सबसे ज्यादा 5 सेट के ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 50वां मैच 5 सेट में खेलकर स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका 49 बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वे ओपन युग में 1 ग्रैंड स्लैम में 15 एकल सेमीफाइनल खेलने वाले भी तीसरे खिलाड़ी अब बन जाएंगे। रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश में जुटे जोकोविच ने लगातार 8वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचकर फेडरर 7 को पीछे छोड़ दिया है। इस मुकाबले के बाद नोवाक जोकोविच ने कहा कि ये वो पल है जिनके लिए मैं आज भी टेनिस खेलता हूं। मैं अब भी उन युवा खिलाड़ियों से मुकाबला करने में सक्षम हूं जो मुझसे 15 साल छोटे हैं। मैं उन्हें बेहद करीबी मुकाबलों में हरा सकता हूं। काश यह फाइनल होता ताकि मुझे यह चिंता न करनी पड़ती कि कल मेरा शरीर कैसा महसूस होगा। जी हाँ, ये शब्द थे नोवाक जोकोविच के, जिन्होंने विंबलडन का सबसे लंबा क्वार्टर फाइनल मुकाबला न केवल खेला बल्कि उसमें जीत भी हासिल की। ये तो थी खेल जगत की रोचक खबरें श्रोताओं, और अब हम आप

स्पोर्ट्स कॉर्नर में आज हम बात करेंगे श्रोताओं, भारत और इंग्लैंड के बीच T20 मुकाबले की श्रृंखला जो है वो खेली गई, जिसमें भारत बुरी तरह से पराजित हुआ। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए लगातार सातवें मैच में सिक्के के साथ देने के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं रहा। जोस बटलर और हैरी ब्रुक की तूफानी पारियों से इंग्लैंड ने शनिवार को पांचवें और अंतिम T20 मुकाबले में टीम इंडिया को 56 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने भारत को पांच मैचों की सीरीज में 4-0 से पूरी तरह से पराजित कर एक नंबर की कुर्सी भी से छीन ली। बटलर ने 64 गेंदों में 131 रन की धुआंधार पारी खेलकर करियर का दूसरा शतक जड़ा। ब्रुक ने 45 गेंदों में नाबाद 95 रन बना दिए, तो दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरे विकेट के लिए 103 गेंदों में रिकॉर्ड 233 रन जोड़े। इसमें इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 257 रन बनाकर भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा स्कोर भी बना दिया। विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 8 विकेट पर 201 रन ही बना पाई। ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन ने 56, तिलक ने 53, श्रेयस ने 28 और संजू सैमसन ने 27 रन बनाए। इससे पहले ब्रुक ने आक्रामक रुख अपनाया और 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। बटलर ने शुरुआत में संयम बरतने के बाद मैदान के हर कोने से रन बटोरे। हर तरह का स्ट्रोक उनके बल्ले से निकला। बटलर ने स्कूप, रिवर्स स्कूप, स्ट्रेट ड्राइव और लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार हिट से गेंदबाजों पर दबदबा बनाए रखा। उन्होंने गैप में शानदार ड्राइव, कट और पुल शॉट खेलते हुए रनों की रफ्तार पूरी तरह से कम नहीं होने दी। उनका कृष्णा की गेंद पर फाइन लेग के ऊपर खेला गया पुल शॉट पारी का सबसे आकर्षक स्ट्रोक रहा। वहीं ब्रुक ने तेज गेंदबाजों के खिलाफ फुल लेंथ गेंद पर बेहतरीन तकनीक दिखाई। छोटी गेंदों पर लेग स्टंप की ओर हटकर एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के ऊपर शानदार शॉट लगाए। टीम इंडिया ने नंबर वन का ताज भी गंवा दिया है। इस हार के साथ इंग्लैंड ने पहली बार भारतीय टीम का क्लीन स्वीप कर नंबर एक की आईसीसी रैंकिंग से भी उसे हटा दिया है। भारतीय टीम 1601 दिन से शीर्ष पर थी। यही नहीं, भारतीय टीम ने 2019 के बाद पहली बार एक साल लगातार दो सीरीज हारी है। अब इस मुकाबले की बात करें, इस श्रृंखला की बात करें और इसमें कोच और कप्तान की भूमिका की भी बात करें, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी गई थी, आयरलैंड के खिलाफ भी पराजय का स्वाद चखना पड़ा भारत की टीम को, और साथ ही साथ जब इंग्लैंड के दौरे पर गई तो वहां एक मुकाबला तो बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका पूरा और वो निर्णित ही समाप्त हुआ। लेकिन उसके बाद जो चार मुकाबले हुए, उन चारों मुकाबलों में भारतीय टीम को पराजय का स्वाद चखना पड़ा। कई एक्सपेरिमेंट कर रहे लगातार गौतम गंभीर, जो एक बड़ा सवाल है, और तमाम जो क्रिकेट के दिग्गज हैं वो इस बात को मानते हैं कि गौतम गंभीर जिस तरह से टीम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और कभी भी किसी खिलाड़ी को अपना स्थान सुरक्षित लग नहीं रहा, अपने फेवरेट खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका देना चाहते हैं, ज़्यादा अवसर देना चाहते हैं। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी, पहले तो संजू सैमसन को जिस तरह से खिलाया गया, फिर उसके बाद टीम से ड्रॉप किया गया, और जिसकी वजह से जिम्बाब्वे की जो श्रृंखला है उस श्रृंखला में संजू सैमसन को जगह नहीं मिली है और प्रभसिमरन सिंह को उनकी जगह पर चुना गया है टीम में। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया, उन्होंने दो छोटी छोटी पारियां खेली, अच्छी पारियां थी, लेकिन वो बड़ी पारी में तब्दीली से नहीं कर पाए और इसलिए पांचवें और आखिरी मुकाबले में एक बार फिर से संजू सैमसन को मौका मिला। संजू सैमसन ने बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए छोटी सी पारी खेली लेकिन 27 रन अहम बनाए। इसे और बड़ी पारी में अगर वो तब्दील कर देते तो फिर से कह सकते हैं कहीं ना कहीं उनके आलोचकों को करार जवाब मिलता। लेकिन यहां पर संजू सैमसन को अब जिम्बाब्वे सीरीज से भी बाहर कर दिया गया है और भारत के लिए जिस तरह से गौतम गंभीर लगातार टीम के साथ बदलाव कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम पर भारी पड़ रहा है और भारतीय टीम न केवल जीत की पटरी से नीचे उतर रही है बल्कि जो एक नंबर का पोजीशन था आईसीसी का वो भी उन्होंने गंवा दिया है भारत ने। तो श्रेयस अय्यर के लिए भी चीज़ें ठीक नहीं रही और उनके साथ साथ गौतम गंभीर के कोचिंग पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में और क्षेत्ररक्षण में, तीनों क्षेत्र में भारतीय टीम को पराजय का स्वाद चखना पड़ा है और विपक्षी टीम ने उन्हें जमकर धराशायी कर दिया है। अब जिम्बाब्वे के विरुद्ध जो मुकाबले खेले जाने हैं T20 के, उस पर निगाहें रहेगी क्योंकि उसमें भी श्रेयस अय्यर ही कप्तान हैं और अब देखना होगा कि श्रेयस अय्यर जिम्बाब्वे के विरुद्ध किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। उनका निजी प्रदर्शन भी कोई व्यक्तिगत बहुत अच्छा नहीं रहा कि इंग्लैंड के विरुद्ध वनडे मुकाबलों के लिए भी उन्हें टीम में जगह दी गई है, लेकिन वनडे की टीम इसलिए मजबूत है क्योंकि शुभमन गिल हैं, रोहित शर्मा हैं, वहाँ पर विराट कोहली हैं, KL राहुल हैं, ये तमाम खिलाड़ी हैं और इस

0: भारतीय टीम कहीं ना कहीं मजबूत होती दिख रही है वनडे में, लेकिन अब यहां पर शुभमन गिल किस तरह की कप्तानी करते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। श्रेयस अय्यर के लिए अब अग्नि परीक्षा होगी जिम्बाब्वे की, अगर जिम्बाब्वे से टीम हारती है तो फिर श्रेयस अय्यर के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। तो आज के स्पोर्ट्स कॉर्नर में श्रोताओं इतना ही, अब हम आपको ले चलते हैं अपने अगले स्तंभ जहां लेते हैं आपके खेल की परीक्षा, हमारे सवाल आपके जवाब में। हमारे सवाल आपके जवाब में श्रोताओं, आप तैयार बैठे होंगे हमारे सप्ताह के दो प्रश्न नोट करने के लिए, तो नोट कीजिए। हमारे सप्ताह का पहला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कितने देश संयुक्त रूप से कर रहे हैं। पहला प्रश्न एक बार फिर से, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कितने देश संयुक्त रूप से कर रहे हैं। हमारे सप्ताह का दूसरा प्रश्न है, विश्व कप 2026 पुरुष फुटबॉल का कौन सा संस्करण है। दूसरा प्रश्न एक बार फिर से, विश्व कप 2026 पुरुष फुटबॉल का कौन सा संस्करण है। इन दोनों प्रश्नों को आपने नोट कर लिया होगा, इसके सही हल 7 दिनों के अंदर अंदर हमें हमारे पते पर लिखकर भेज दें। हमारा पता है, हमारे सवाल आपके जवाब, कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड 812001। और आप हमें मेल से भी अपने सही जवाब भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है phirbhagalpur@gmail.com। तो हमें इंतजार रहेगा आपके सही जवाब का। और अब बारी पिछले सप्ताह पूछे गए सवाल, सवाल के सही जवाब और सही जवाब भेजने श्रोताओं के नामों की। तो पिछले सप्ताह हमने आपसे पूछा था, फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितनी टीमें भाग ले रही है। इसका सही जवाब है 48 टीमें। यह पहली बार है जब विश्व कप में 48 टीमें भाग ले रही है। हमारा दूसरा प्रश्न था, मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है। इसका सही जवाब है शतरंज। इन दोनों प्रश्नों के सही से जवाब आप श्रोताओं ने लिख भेजे हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय आवासीय परिसर आशियाना दीघा रोड पटना से, अरशान अहमद, जारिस वसी अहमद, नबा कौसर, शाजली ममसी व शादाब अहमद, लुत्फ अली लेन मोहल्ला काजीवली चक भागलपुर से, फोजल नसीम रोज, सोमेरा शहरीन व फैसल नसीम, बौसी भुरना से अंजना कुमारी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मीका विरक, बलविंदर विरक, जयतेश विरक व हरदेव मीका, भानपुर भोपाल मध्य प्रदेश से रामगोपाल विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, हिमायु विश्वकर्मा व योगिता विश्वकर्मा, भीकनपुर चौक भागलपुर से सलाउद्दीन परवाज एवं आयशा खातून, बड़ीगंजलपुर बसीदन भागलपुर से भई गुलफराज आलम, बेगम समारा, दोस्त जमालुद्दीन नेपाली, मायागंज दुर्गास्थान बरारी भागलपुर से संतोष यादव, आशीष व दीपक, मुजाहिदपुर प्रपटला भागलपुर से मोहम्मद खालिद अंसारी, ताहिर अंसारी, कादिर नूरुल्लाह, ईशान अकरम व एम के नाज। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए खेल खिलाड़ी की पूरी टीम के साथ हमें यानी मिलिंद गुंजन को अनुमति दीजिए।
1: आप सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। प्रस्तुतकर्ता थे मोहम्मद सरशार अहमद। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इवनिंग न्यूज और फिर उर्दू खबरें। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली केंद्र के प्रसारण में।
2: दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं समाचार संध्या।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार एन को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
4: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
3: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
5: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
6: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
7: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
8: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
7: Other operating income is not included.
3: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
9: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: नागालैंड के चूमू केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
10: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
3: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ 232 अरब डॉलर से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
11: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस: India and US engaged for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, dismisses media reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and four others convicted for killing of IB officer during 2020 Delhi riots. The US and Iran exchange another wave of strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in the region. In cricket, India scripts history beating England by 270 runs in first ever women's test at the Lords. And 16 Indian boxers enter finals at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with US Trade Representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. He added that both sides also exchanged views on the India-EU FTA and explored ways to deepen business ties and expand India's commercial engagement with Spain as a valued partner. Mr. Goyal is currently on a 5-day visit to Spain, Belgium and Finland from today. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewellery, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. The electronic goods exports increased by around 19% from $4.14 billion in June last year to $4.93 billion in June this year. India's retail inflation accelerated to 4.38% year-on-year in June, breaching the Reserve Bank of India's midpoint target. The June inflation reading was moderately higher than the 3.93% recorded in May. Retail inflation continued to rise for the sixth consecutive month under the new Consumer Price Index or CPI series. According to data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, inflation in rural areas edged up to 4.74%, while in urban regions it rose to 3.92%. Food inflation rate based on the All India Consumer Food Price Index stood at 5.32% last month, up from 4.78% in the preceding month. A Delhi court today convicted former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and four others for the killing of Intelligence Bureau officer Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots. Additional Sessions Judge Praveen Singh was hearing the case against a total of 11 accused, including Hussain, and convicted five of them. The court found Tahir Hussain guilty under the charges of promoting enmity, rioting, assault, criminal force and murder. The case pertains to an FIR registered at Dayalpur Police Station on the complaint of Ravinder Kumar, father of Ankit Sharma. In his complaint, Ravinder Kumar alleged that his son was murdered by the then AAP councillor Hussain and others. Hussain was suspended by the Aam Aadmi Party after his name came up in the case. On 24th March 2023, a Delhi court framed charges against Hussain and 10 others. Defence Minister Rajnath Singh and Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, today inaugurated the Lucknow-Kanpur Expressway. Before the inauguration of the Lucknow-Kanpur Expressway, all these leaders inspected the expressway in Unnao. Later, they came back by the same expressway and participated in the function at Sainik School in Lucknow, where projects worth 4,850 crore rupees were launched today, which includes inauguration of the expressway and four-lane construction of a part of Lucknow-Hardoi Highway, along with laying of the foundation stone of a flyover in Lucknow. A report.
6: The 63-kilometer, six-lane Lucknow-Kanpur Expressway is expected to reduce

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका एक मुतवाजिन और तिजारती लिहाज से मौसर तिजारती माहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तिजारती मुजाकिरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रवां माली बरस की पहली सहमाही में भारत की मजमुई बरामदात 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर गईं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले 11.37% ज़्यादा हैं। आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर ताहिर हुसैन और दीगर चार अफराद को साल 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। अमरीका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं। आबनाए हुरमुज पर कंट्रोल के तनाज़े के बायस खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। ख्वातीन क्रिकेट में भारत ने तारीख रकम करते हुए लॉर्ड्स के मैदान में खेले गए पहले ख्वातीन टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया। और

जकार्ता में जारी 19 साल और 23 साल तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कम से कम चांदी का तमगा यकीनी बना लिया है। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती मुजाकरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को बेबुनियाद, गुमराहकुन और मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका की टीमें एक ऐसे तिजारती माहदे पर पूरी संजीदगी से काम कर रही हैं जो मुतवाजन हो और तिजारती एतबार से बामानी हो। नीज दोनों ममालिक के कारोबारी तबकों, किसानों, मजदूरों और सार्फिन के हकीकी फवायद फराहम करे। उन्होंने बताया कि पिछले महीने नई दिल्ली में अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर के साथ उनकी मीटिंग मुस्बत रही थी। दोनों फरीकों ने ऐसे मुतवाजिन और मुफीद माहदे के लिए अपने अज़्म का इदा किया और इस मकसद को हासिल करने के लिए दोनों ममालिक की टीमें मुसलसल रबते में हैं। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज स्पेन के अपने सरकारी दौरे का आगाज किया। उन्होंने स्पेन हुकूमत के अव्वल नायब सदर और कॉमर्स, तिजारत और कारोबार के वजीर कार्लोस कैपेबेलेरो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत और स्पेन के इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबों में मुफीद बातचीत की है। उन्होंने बताया कि मुजाकरात में काबिले तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और इख्तियारात के मौजूदात पर भी तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक ने भारत और यूरोपीय यूनियन के आजादाना तिजारती माहदे पर भी ख्यालात का तबादला किया और कारोबारी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और स्पेन के साथ भारत के तिजारती तआवुन को मजीद वसअत देने के तरीक़ेकार पर गौर खौज किया। जनाब गोयल आज से स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सरकारी सेक्टर के बैंकों पर जोर दिया है कि वो बैरून मुल्क भारतीयों NRI तक अपनी रसाई को मजीद बढ़ाएं और उनके लिए जिद्दत तराजी पर मबनी नई जमा पूंजी स्कीमें मुतारिफ कराएं। उन्होंने आज नई दिल्ली में बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान और सरकारी मालियाती इदारों के सरबराहान से गैर मुल्की करंसी NRI बैंक डिपॉजिट्स और गैर मुल्की करंसी कर्जों के तबादले के इकदाम के सिलसिले में बातचीत के दौरान ये बात कही। वजीर खजाना ने इस बात पर भी जोर दिया कि NRI बिरादरी से राबते को मजीद बढ़ाया जाए ताकि गैर मुल्की सरमाया और रकूम की आमद का सिलसिला जारी रहे। मीटिंग के दौरान बैंकों और सरकारी मालियाती इदारों के सरबराहान ने वजीर खजाना को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तबादले की सहूलत की स्कीमों के तहत होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया। उन्होंने मजीद कहा कि बैंकों और सरकारी मालियाती इदारों की सरगर्म शिरकत से ये साबित होता है कि तबादले की सहूलतें मुल्क में गैर मुल्की करेंसी की आमद को बढ़ाने में मौसर रोल अदा कर रही हैं। इस साल अप्रैल से जून की मुदत के दौरान भारत की मजमू बरामदात का तखमीना 232 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा लगाया गया है, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुदत के मुकाबले 11.37% ज्यादा है। तिजारत और सनत की वजारत के मुताबिक जून 2026 के दौरान मजमू बरामदात का तखमीना 73.45 अरब अमरीकी डॉलर रहा, जो गुज़िश्ता साल के जून के मुकाबले 9.48% की मुस्बत नमू को जाहिर करता है। जून में जिन अहम शोबों की बरामदात में इजाफा हुआ है उनमें कीमती पत्थर और जेवरात, इंजीनियरिंग साजो सामान, नामियाती व गैर नामियाती केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान और चावल शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान की बरामदात गुज़िश्ता साल जून के 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस साल जून में 4.93 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। इसी तरह इसमें तकरीबन 19% का इजाफा दर्ज किया गया। वजारत ने मजीद बताया कि जून में अशिया और खिदमात की मजमू बरामदात का तखमीना 88.76 अरब अमरीकी डॉलर रहा, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 26% से ज्यादा का इजाफा है। इस दौरान जून 2026 में भारत की खुर्दा इफरात जर सालाना बुनियाद पर बढ़कर 4.38% हो गई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हदफ की दरमियानी हद से ज्यादा है। मई में इफरात जर की यह शरह 3.93% थी। इसी तरह जून में महंगाई में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सारिफीन कीमत इशारिया CPI के तहत ये मुसलसल छठा महीना है जब खुर्दा इफरात जर में इजाफा देखा गया है। आदाद शुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद की वजारत के मुताबिक देही इलाकों में इफरात जर 4.74% रही, जबकि शहरी इलाकों में ये 3.92% रही। कुल हिंद सारिफीन खुराक की कीमतों के इशारे के मुताबिक खुराक की इफरात जर की शरह 5.32% रही, जो पिछले महीने के 4.78% से ज्यादा है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और दीगर

0: चार अफराद को साल 2020 के शुमाल मशरिकी दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया है। एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह इस मामले की समाअत कर रहे थे, जिसमें कुल 11 लोगों को नामजद किया गया था। अदालत ने इनमें से 5 अफराद को मुजरिम करार दिया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने, फसाद, हमला, ताकत के मुजरिमाना इस्तेमाल और कत्ल के इल्जामात में कसूरवार गर्दाना। ये मुकदमा दयालपुर पुलिस स्टेशन में अंकित शर्मा के वालिद रविंद्र कुमार की शिकायत पर दर्ज FIR से मुतालिक है। शिकायत में इल्जाम लगाया गया था कि उनके बेटे को उस वक्त आम आदमी पार्टी के काउंसिलर ताहिर हुसैन और दीगर अफराद ने कत्ल किया। इस मामले में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को मुअत्तल कर दिया था। 24 मार्च 2023 को दिल्ली की एक अदालत ने ताहिर हुसैन और दीगर 10 मुलजिमीन के खिलाफ बाकायदा तौर पर फर्द जुर्म आयद की थी। अमेरिका और ईरान दोनों ने अपने हुरमुज पर कंट्रोल का दावा किया है। मगरबी एशिया में अख्ताम हफ्ता के दौरान हमलों में इजाफे के बाद इलाकाई सलामती और सिफारती कोशिशों के अहिया के लिए की जा रही कोशिशों को नई तशवीश लाहक हो गई है। हालिया कशीदगी ईरान के जरिए ओमान के साहिल के करीब आबनाए हुरमुज में एक कंटेनर बरदार जहाज को निशाना बनाए जाने के बाद शुरू हुई है। इसके बाद से आबनाए हुरमुज से, जो कि आलमी तेल और गैस की तरसील की एक अहम आबी गुजरगाह है, कोई भी तिजारती जहाज नहीं गुजरा है। अमेरिका का कहना है कि उसने रात भर ईरान के कई फौजी अहदाफ पर हमले किए हैं, जिसमें फिजाई दिफाई निज़ाम, साहिली रडार मरकज, मिज़ाइल और ड्रोन तनसीबात और छोटे बहरी जहाज शामिल हैं। वॉशिंगटन का कहना है कि इस कार्रवाई में पहली बार यकतरफा हमलावर समंदरी ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए और ये कार्रवाई ईरान की जानिब से तिजारती जहाज रानी पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। दूसरी जानिब इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि उसने उर्दुन, बहरैन और कुवैत में मौजूद अमरीकी फौजी ठिकानों को और ओमान में रडार तनसीबात को निशाना बनाया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और जापान ने आज आज़ाद, खुले और उसूलों पर मबनी भारत बहरुल काहिल खित्ते के फरोग के लिए अपने अज़्म का इरादा किया है। जापान के शहर टोक्यो में मुनक़िदा 8वीं दिफाई पॉलिसी मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी की मौजूदा सूरतेहाल पर जामे बातचीत की और बाहमी मफाद के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। भारतीय वफ़ की क़्यादत दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने की, जबकि जापानी वफ़ की क़्यादत बैनुल अक़वामी उमूर के नायब वज़ीर दिफा कानो कोजी ने की। मुज़ाकरात के दौरान दोनों फरीकों ने गुज़िश्ता दिफाई पॉलिसी मुज़ाकरात के बाद से दोतरफा दिफाई तआवुन में हुई अहम पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह से कबल तीनों रहनुमाओं ने ज़िला उन्नाव में एक्सप्रेस वे का मुआयना भी किया। इसके बाद तीनों रहनुमा एक्सप्रेस वे के जरिए वापस लखनऊ पहुँचे और सैनिक स्कूल में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की, जहां तकरीबन 4,850 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया और संगे बुनियाद रखा गया, जिनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, लखनऊ हरदोई शाहराह के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का प्रोजेक्ट और लखनऊ में एक फ्लाईओवर की तामीर शामिल है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 2 बरस में उनकी वजारत उत्तर प्रदेश में तकरीबन 5,00,000 करोड़ रुपये मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को मुकम्मल करेगी।
1: अगर उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, संपन्न होगा, प्रगतिशील होगा तो हिंदुस्तान की भी तरक्की होने वाली है, और इसलिए मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आने वाले 2 साल में मैं उत्तर प्रदेश में 5,00,000 करोड़ रुपए के कार्य हम पूरे करेंगे। लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ।
0: जनाब गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को एक तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इससे उत्तर प्रदेश में सड़क रابطे के निजाम को मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 63 किलोमीटर तवील 6 लेन पर मुश्तमिल इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के दरमियान सफर का वक्त कम होकर सिर्फ 35 से 45 मिनट रह जाएगा। इस शाहराह पर कार का टोल टैक्स 275 रुपये होगा, जबकि दोपहिया गाड़ियों को दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। ये मुल्क का पहला एक्सप्रेसवे है जो खुदकार और तेज मशीनों से रहनुमाई हासिल करने वाली तामीराती टेक्नोलॉजी के जरिए तामीर किया जा रहा है। इस तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका और जर्मनी जैसे ममालिक में इस्तेमाल होती है। इस एक्सप्रेसवे पर मस्नूई ज़हानत, AI पर मबनी रफ्तार की निगरानी का निज़ाम, हर 2 किलोमीटर पर हंगामी कॉल बॉक्स और 24 घंटे काम करने वाले 2

0: क्या जो आम आदमी के लिए आपने जो बात बताई कि वर्षा जल का संचयन किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और कितना खर्च आएगा अगर हम वर्षा जल संचयन करना चाहें अपने घर की छतों पर तो।
1: थैंक यू मैडम। और इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे बचपन में हम लोग सर्वप्रथम पहले कहते थे कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए
0: जी।
1: कहते थे पहली बारिश से जो धूल निकल जाए, धूल मिट्टी निकल जाए, उसके पश्चात नहाना चाहिए। उसी तरह से जैसे हमारे छतों पे अगर धूल मिट्टी है तो फर्स्ट फ्लश जो अंग्रेजी में कहा जाता है, वो फर्स्ट फ्लश का पानी सारी धूल मिट्टी को साफ कर दे। तो छतों पे अगर हमारे एकत्रित हमारे छत का एरिया निर्धारित होता है सभी के घरों के छत, उसको पाइप के माध्यम से जैसे मैंने पहले बताया नीचे ले जाए, लूज सैंड ऑफकोर्स ये सब उस रीजन के हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन और जियोलॉजिकल कंडीशन, वहां कैसी भूमि कैसी है, वहां का एक्विफर लेवल कैसा, उस पे निर्भर करेगा। बट यदि मैं एक जनरल ज्ञान दूं तो फर्स्ट फ्लश सिस्टम लगाएं, सैंड का प्रयोग करें, बजरी डाल लें ताकि पानी दलदल बनने के बजाय वो सीधे भूजल में जाए, और चारकोल या कार्बन फिल्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट बोलूं तो मल्टीपल लेयर फिल्टर, ताकि जो अगर कोई धूल मिट्टी आ रही है वो भी फिल्टर होके ताकि भूजल में जब जाए तो स्वच्छ पानी जाए। इसका खर्चा अंदाजन अगर ये 3x3x3 का करते हैं तो मुझे बताया गया कि 10 से 15 हजार। ऑफकोर्स ये रीजन स्पेसिफिक होगा, वहां पे पत्थर की क्या है, भूमि कैसी है, उस पर निर्धारित करेगा, बट अंदाजन इतना खर्चा आना चाहिए। जो कि अगर हमारे एक कॉलोनी में हम बनाने की कोशिश करें तो एक सार्वजनिक रूप से ये शायद, चूंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे अपने भविष्य के निर्भर करता है इस इन चीजों पे, तो शायद मेरा मानना है कि हम इतना खर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।
0: हमारे दूसरे श्रोता हैं सासाराम बिहार से अमित
2: जी। नमस्कार। मेरा ये सवाल था कि जैसे हम लोग रेन हार्वेस्टिंग का जिसे सरकार की तरफ से कुछ जिसे कैसे अभी घर सूर्य घर योजना के तहत बहुत व्यापक तौर से इसको व्यापक तौर पर सरकार प्रचार प्रसार करे, उसी टाइप से इसको भी एक लेकर जल संचय को लेकर बहुत लोग सोचते हैं कि घर में हम रेन हार्वेस्टिंग करें या फिर अपने कॉलोनी में जैसे सर अभी बता रहे थे कि इसको संचय करने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे इसमें सरकार कुछ सब्सिडी दे ताकि अधिक से अधिक लोग इस ओर झुकाव करें और बचाने के लिए इस बारे में सोचे।
1: अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, और आपके माध्यम से मैं आपके सभी अपने सभी भाइयों बहनों और बाकियों को भी ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जल संचय जन भागीदारी नाम की एक अभियान का इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयत्न है कि कैसे, जैसे ये नाम ही सजेस्ट करता है जल संचय जन भागीदारी, तो कैसे अधिकाधिक इसमें जनता, समुदाय, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएं, उद्योग और जो कहते हैं ना नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, उनका भी अधिक से अधिक इसमें वो सम्मिलित हो सके। और सम्मिलित होने का मतलब यह है, जैसे इसमें कई उदाहरण भी मैं देना चाहूंगा
0: जी।
1: कुछ एग्जांपल अगर बोलूं तो छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, और इसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने एक और मन की बात में भी इसका जिक्र किया है। वहां के किसानों ने अपने 5% भूमि जल संरक्षण के लिए यूटिलाइज किया। उसी क्रम में जैसे बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहां की बानस डेयरी ने वाटर कंजर्वेशन के लिए अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन किया। मैं इस तरह एग्जाम्पल दे सकता हूँ। नॉर्थ त्रिपुरा में एक कम्युनिटी करीब 500 घर हैं, वहां कम्युनिटी ने मिलकर ही अपने सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया और इम्प्लीमेंट किया। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, मगर सबसे बड़ी बात इस अभियान का या इस इनिशिएटिव का मैं बोलूं तो इसमें जन जागरूकता एक, जन पार्टिसिपेशन दो, एंड कम्युनिटी ओनरशिप, ताकि ये मेरा भविष्य है, मेरे बच्चों का भविष्य है,
0: मेरी जिम्मेदारी है,
1: उस पे जोर डाला जा रहा है। और अधिक आप सभी जगह जान के ये खुशी भी होगी कि जेएसजेबी जल संचय जन भागीदारी के सीरियल जो 1.0 था, जो कि 24 से 25 में था, 31 मई 2025 को खत्म हुआ था। माफी चाहूंगा यदि मेरा जवाब ज्यादा लंबा हो रहा है,
0: नहीं, नहीं।
1: बट जनता को बताना भी जरूरी है कि जो
0: है।
1: जी तो 10 लाख का टारगेट, मतलब इस पीरियड में इतने आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था जन भागीदारी से, और जो मैंने बनस का अठा कर एग्जाम्पल दिया और जो अदर एग्जाम्पल जी, 10 लाख के अगेंस्ट करीब 25 लाख से अधिक स्ट्रक्चर्स बने, और उसका एक आकलन के हिसाब से 2.4 बिलियन क्यूबिक मीटर रिचार्ज हुआ। अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंस के टर्म में बोलूं तो एक रंजीत सागर डैम है थेम रावी रिवर पे, या उसकी कैपेसिटी करीब इतनी है। तो ये मानना होगा कि 6-8 महीने में, सितंबर से लेकर मई तक, इतने स्ट्रक्चर्स बने कि उसने एक, और जन भागीदारी से बने कि उसने एक डैम के बराबर का
0: पानी इकट्ठा,
1: जल इकट्ठा एक्वीफर में कर दिया।
0: बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और तो ये भी प्रेरणा,
1: ये प्रेरणा है, ये सभी के लिए हौसला अफजाई का भी है, और हमको ये आगे के लिए भी इंस्पायर करती है कि हम कैसे और से आगे कर सके।
0: फोन लाइन पर उड़ीसा से है अब देशदीप दास। देशदीप जी आप हमें सुन रहे हैं?
3: जी नमस्ते जी, नारायण जी और कनकलता जी, मेरा सादर नमन आपसे।
0: नमन
1: प्रणाम आपको भी देशदीप जी।
3: जी जी नमस्ते जी। जी मेरा सवाल है
0: जी,
3: एक सामान्य आवासीय घर या बड़ी इमारत के लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने में कितना खर्च आता है और इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या है?
1: देशदीप जी धन्यवाद। मैं मुख्य कंपोनेंट्स आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को दोबारा बता देना चाहूंगा कि इसके मुख्य आम तौर पे जो फिल्टर, सो छत में पानी जो एकत्रित हुआ उसको एक पाइप के माध्यम से नीचे ले गए जमीन के स्तर पे, और जमीन में एक रिचार्ज पिट बनाया जिसमें फिल्टर लगाया, जो मैंने फर्स्ट फ्लश सिस्टम बताया, फिर मैंने सैंड का, सो ताकि सैंड ऊपर फाइन मटेरियल हो, नीचे ग्रेवल हो ताकि वो पानी को दलदल ना बने या मिट्टी इकट्ठा ना हो, तो और धीमे धीमे सीप करे, इस तरह से बड़ी ही सिंपल तरीके से एक आम नागरिक, आपके और मेरे जैसे लोग इस भूजल को मतलब रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक समाज इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। बहुत ही सिंपल प्रणाली है, इसको अपनाएं और अपने और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें।
0: एक बात और बताइए कि क्या ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है, ये सिर्फ नई इमारतों में ही लगाया जा सकता है या जो पुराने घर बने हुए हैं कहीं पर भी इसको स्थापित किया जा सकता है?
1: मैडम इसको कहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जब वर्षा होती है
0: जी,
1: वो पुराने और नए घरों में डिफ्रेंशिएट नहीं करती, वर्षा तो प्रकृति से आ रही है। ये हमको ध्यान देना है कि जो पुरानी अगर इमारत है तो जो छत है उस कितनी समतल है, क्या स्लोप है, उससे वो निर्धारित, ताकि जो पाइप में जो पानी एकत्रित हो इधर उधर एकत्रित होने के बजाय पूरा अधिक से अधिक जल पाइप के माध्यम से भूजल तक पहुंच जाए। शॉर्ट आंसर, There's no differentiation. Long answer, मैंने आपको बताया।
0: इस तरह का जो पानी जो इकट्ठा किया जाता है वो क्या पीने में और खाना बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है?
1: बहुत ही अच्छा सवाल किया मैडम आपने। इस तरह से पानी हम लोग ये सोचेंगे कि अगर जैसे फर्स्ट फ्लश से सारी धूल मिट्टी निकल गई, फिर हम इसको भूजल में रिचार्ज करें। अगर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया है, फिल्टर्ड ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, इनफैक्ट आज भी जो हम दोहन कर रहे हैं, जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में या गांवों में या ब्लॉक्स में हम दोहन कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर दोहन कर रहे हैं, वहां तो हम आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं,
0: उसी तरह से भी कर सकते हैं। रमाकांत वाजपेयी जी हैं उत्तर प्रदेश से।
4: नमस्कार
0: रमाकांत जी।
1: नमस्कार
4: रमाकांत
1: जी। नमस्ते।
4: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि जिस तरह से जल सुरक्षा और जल पुनर्भरण, भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो जल सुरक्षा का मतलब है कि जब हम 1 लीटर पानी खर्च करते थे आज उस जगह जो है नए व्हीकल आ गए, नए नई परंपराएं हो गई।

0: नई चीजें, इसमें हजारों लीटर पानी खत्म होता। और दूसरी चीज है भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो कंक्रीट का सड़क, कंक्रीट की गली, ऊपर से नीचे पानी जाता नहीं है, कुंड सूख दिए गए हैं, तो बताइए कैसे जो है जल पुनर्भरण हो।
1: रमाकांत जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, हमारे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, हमारे समुदाय बढ़ रहा है, उनकी ग्रोथ जरूरी है, और कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो इन सब के लिए जल तो अति आवश्यक है। सो आपकी, मेरी, कनकलता मैडम की और पूरे समुदाय की यह जिम्मेदारी भी है कि कैसे हम अधिक से अधिक जल को संरक्षण कर सकें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, चाहे समुदाय के तौर पे हम कंटूर ट्रेंचेस बनाएं, या देर आर मतलब कई सारे तरीके होते हैं आर्टिफिशियल रिस्टार कृत्रिम स्ट्रक्चर बनाने के। एक उनमें से है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा कि जैसे किसान मैंने कोरिया वाला बताया, अगर कंटूर ट्रेंच बना ले या रिचार्ज पिट बना ले, सो ये छोटे छोटे तरीकों से जैसे जमीन हुई, जैसे इकोसिस्टम हुआ, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया, पानी का संरक्षण किया, भूजल का अपग्रेडेशन हुआ, और साथ ही साथ ऐसे समझे कि जो बारिश अगर सरफेस रन ऑफ या पानी का व्यर्थ बह जाती, वो पानी मैंने एकत्रित कर लिया जो मैं अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सकता
2: हूं। भविष्य के लिए निवेश है,
1: भविष्य का बिल्कुल निवेश है, जैसे हम पिगी बैंक में अपना एक एक पैसे डालते हैं,
2: बच्चे डालते हैं,
1: बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने भविष्य के लिए एक एक बूंद को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि एक एक बूंद को बचाना है, उसी तरह हमारे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी हो जाती है,
2: हर बूंद कीमती है।
1: जी बिल्कुल।
2: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप इस पर सवाल भेज सकते हैं, नंबर है 2331048 2371717 2371716 और 2331444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। अब हमारे साथ अगले श्रोता की अभी प्रतीक्षा है, तब तक आप हमें ये बताइए सुमंत जी कि जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, इसका रख रखाव भी क्या कठिन होता है, किस तरह करते हैं?
1: मैडम बिल्कुल आपका सही सवाल है कि बट जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बनाना, उसको कंस्ट्रक्ट करना या एस्टैब्लिश करना जितना सिंपल है, रख रखाव उससे भी अधिक मैं कहूंगा सिंपल है कि बस साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर 6-8 महीने में एक बार, जैसे मॉनसून से पहले एक बार सफाई कर दिए ताकि वो रिचार्ज होने के लिए, जैसे कहते हैं ना, तैयार होए, तो वो साफ सफाई हो गई, धूल मिट्टी हट गई, अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ गर्द आ गई हो वो साफ हो गया, ताकि जब जल आए वो धीमे धीमे भूजल पे मतलब अपग्रेड हो जाए,
2: स्तर ऊपर
1: हो जाए।
2: वर्षा जल संचयन योजना 2025 की काफी चर्चा है, आप इसके बारे में श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मैंने पिछले उत्तर में शायद आधा ही बताया था कि जैसे JSJB जल संचय जन भागीदारी 1.0 जो 2024 से 25 चली, उसमें क्या हुआ। अब ये अवसर मुझे आपके प्रश्न से मिलता है कि 2025 से 26 जो जल संचय जन भागीदारी, जिसको हम 2.0 कहते हैं, वो 1 जून 2025 को स्टार्ट हुई थी और 31 मई 2026 को खत्म हुई है। उसके अंतर्गत भी देश से बहुत करीब 700 डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पे वहां की जनता ने, वहां के क्राउड ने, वहां के डिस्ट्रिक्ट्स ने, वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, वहां की इंडस्ट्री ने, वहां के NGOs ने, सब ने मिलकर जो आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया रूफ टॉप रेन वाटर या हार्वेस्टिंग, या फिर जैसे रिचार्ज पिट हुआ या रिचार्ज शाफ्ट हुआ, इस तरह के जो मल्टी करीब 18-19 तरीके के लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, एक करोड़ का टारगेट हमारा, हमने इंटरनली जो जो हमारे लिए सेट किया गया था, उस एक करोड़ टारगेट के अगेंस्ट पूरे भारतवर्ष से करीब 1.5 करोड़ स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं,
2: ज्यादा बन गए,
1: मतलब
2: जितना लक्ष्य था
1: उस लक्ष्य से करीब 50% अधिक बने। और मैंने बताया ना कि अगर 2.4 BCM जो कि करीब 23-24 लाख स्ट्रक्चर से बने थे जितना रिचार्ज हुआ था, तो हम अभी ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका इसका कितना फायदा हमारे आने वाले समय में दिखेगा। सो इसमें भी जन समुदाय भागीदारी, नॉन गवर्नमेंटल, ऑफ कोर्स सरकार तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है, बट सभी लोग,
2: लोगों की भागीदारी बहुत
1: बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी कहते ना, कोई भी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी ये फोकस है कि जैसे इसको मास मूवमेंट बनाया जाए, कैसे इसकी जन ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप हो, ये हमारा भी प्रयत्न है कि इसको हम आगे से आगे कैसे लेके जा पाए। इनफैक्ट आज जो आपका रेडियो का कार्यक्रम है ये एक अपने आप में एक माध्यम है कि लोगों की अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे पता चले कि आप जैसे आपके स्टूडियो में मैं 3-4 लोगों को देख सकता हूं, जब हम अपने घर जाएं क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे।
2: आपने कहा लोगों तक हम पहुंच सके। देखिए शिमला से एक सवाल आया है राकेश जी का। राकेश जी
3: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला जिले की कोटखाई से।
2: नमस्कार।
3: और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारे सर्दी में जो कई बार जो है माइनस में तापमान चलता है और हमारी जो है बर्फबारी होती है काफी कोटखाई क्षेत्र में, तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो बर्फ का जो पानी है उसको किस तरह से जो है संरक्षण किया जा सकता है।
1: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, बिकॉज आप शिमलाई के लिए नहीं, ये प्रश्न मेरे ख्याल से हमारे पहाड़ी राज्यों में कई डिस्ट्रिक्ट्स पे ये लागू किया जा सकता
2: है। लद्दाख के बारे में बताइए।
1: आई एम सो ग्लैड आपने ये पूछा। इनफैक्ट लद्दाख का एक अभी कुछ हफ्तों पहले ही मुझे एक एग्जांपल बताया गया था कि लद्दाख में कैसे लोग अपना वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण कर रहे हैं। वहां डिटेल्स तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मगर जल स्तूपा का कॉन्सेप्ट वो लोग लाए हैं कि एक बर्फ के एक स्तूप बनाते हैं और उस स्तूप से ताकि वो धीमे धीमे जब वो पानी गलता जाए तो विंटर में जाड़ों में वो पानी एकत्रित हो गया, बर्फ बन गई, और वो समर में जब वो गलना स्टार्ट होती है तो धीमे धीमे पाइप के माध्यम से मेन स्ट्रीम में ले जाया जाता है। तो राकेश जी आपने बहुत सही सवाल पूछा कि हम शिमला हो, लद्दाख हो, सिक्किम में ये सब एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी गुड प्रैक्टिसेस अपनाई जा सकती हैं। हमने सभी राज्यों से शेयर भी किया है और आप वेबसाइट भी, अगर अपने वेबसाइट देखेंगे तो भी आपको इसके विस्तृत जानकारी मिल सकती है। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का।
2: एक और श्रोता हमारे साथ है, विवेक। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। विवेक जी
4: नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव जयपुर से बोल रहा हूँ
2: जी।
4: सर मेरा प्रश्न ये था, जैसे सोलर के लिए बहुत मार्केटिंग है, काफी लोग फोन आते हैं तो हम लोग इससे करा भी लेते हैं, बहुत सोलर के लिए जैसे अच्छा रेस्पॉन्स है, इस तरह के हम लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए या कोई टोल फ्री नंबर या कुछ संस्थाएं सरकारी प्रेरित करें, हमें बताएं कैसे लगाएं, हम क्या करें, तो एक यूजर फ्रेंडली जो चीज होना तो इसको करा कर सकते हैं।
1: विवेक जी बहुत सही सवाल है कि आम नागरिक के लिए इसको कैसे आसान किया जाए। तो आपको और मैडम आपके माध्यम से बाकी श्रोताओं को भी ये जानकर बताने से मुझे हर्ष हो रहा है कि देश भर में करीब 700 जल शक्ति केंद्रज हैं। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केवी केज हैं
2: जी,
1: उसी तरह जल शक्ति केंद्रज हैं। हर अब ये जयपुर से कर रहे हैं तो मुझे उनका टोल फ्री नंबर नहीं पता है, मगर डिस्ट्रिक्ट में जल शक्ति केंद्र में तो एक टोल फ्री नंबर है, आप उनको फोन करें, आपको जो सिंपल तकनीकी राय लेनी हो कि हम कैसे संरक्षण, बिकॉज जयपुर की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है अपितु शिमला से या उत्तर प्रदेश, जो हमारे डिफरेंट श्रोता हुए हैं, तो आपको रीजन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सबसे आसान और सुविधाजनक समाधान होगा वो आपको आपका जल शक्ति केंद्र ही बता सकता है, लोकल रिक्वायरमेंट।
2: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन के DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। सुमंत जी, मिशन अमृत सरोवर की चर्चा होती है और अटल भूजल योजना की भी चर्चा काफी हो रही है, ये सारी जो पहले है सरकार की ओर से की जा रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके, भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सके, इन सब के बारे में आप कुल मिलाकर क्या कहना चाहेंगे?
1: धन्यवाद मैडम आपके इस सवाल का। आप यही समझे कि जो होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मोटो है कि कैसे सरकार के सभी अंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से अडॉप्ट करके बनाए, उसी के अंतर्गत आपने अमृत सरोवर बोला या अटल भूजल योजना बोली, एक एक सरकार का अंग ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कैसे भूजल, कहीं पे सरोवर बनेगा कि बड़े सरोवर बने, कहीं पे भूजल डायरेक्ट इंजेक्शन वेल से चला जाए, किसी और स्कीम के अंतर्गत अगर रिचार्ज पिट बन जाए, या अगर मैं होल ऑफ सोसाइटी की बात करूं तो अगर मैं रायपुर का एग्जांपल दूं तो वहां पे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनवाए। इस तरह मैं एग्जांपल्स, देश भर में अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो जन भागीदारी होती जा रही है, मगर अभी रास्ता लंबा है। हम सबको अपना, रिपीट कर रहा हूं, मगर अपना और अपने बच्चों का भविष्य इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुदृढ़ करना आवश्यक,
2: को भी जागरूक किया जाना चाहिए इसके लिए।
1: एब्सोल्युटली कहते हैं ना कि बच्चों से ही जितना बिहेवियर चेंज होता है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो बच्चों के सिलेबस में
2: इसको जोड़ा जाना चाहिए।
1: कई कक्षाओं में जुड़ा हुआ है, जैसे छठवीं सातवीं कक्षा के सिलेबस में चैप्टर्स हैं। इसको हम और अवेयरनेस मॉडल्स, जैसे एक ये रेडियो प्रोग्राम हुआ या यूट्यूब हुआ या सोशल मीडिया हुआ,
2: आकाशवाणी पर भी इसके बारे में प्रचार किया जा रहा है।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी पे डेली जिंगल्स चल रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे इस मिशन को या अभियान को हम और इंटेंसिफाई कर सकते हैं।
2: सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी प्रभावी भूजल प्रबंधन आवश्यक है, और जैसा कि आपने बताया कि जो बावड़ियां हैं पुरानी, उन सबको भी, उनका ही पुनरुद्धार करने की कोशिश चल रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव सुमंत नारायण स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIR@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन राग शंकरा में।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन राग शंकरा में। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, 10:31 हुए हैं। पेश है आप श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

मोहम्मद रफ़ी एवं लता मंगेशकर को अब आइए सुनते हैं फिल्म मेरी सूरत तेरी आँखें में। गीतकार शैलेंद्र और संगीत तैयार किया है सचिन देवबर्मन ने, और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आप श्रोताओं ने। सुभानपुर कटोरिया खजांची टोला से ये पत्र है, लिखने वाले हैं शहादत अली, शालिक शहादत, सिदरा शहादत और शाहिना परवीन, फिरोज शेख और मोहम्मद यासीन अनजान, इनका पत्र आया है, लिखते हैं कहलगांव से। मधेपुरा से ये पत्र है, लिखने वाली हैं संगम कुमारी और ऋषभ राज। मधेपुरा अनिरुद्ध चौक से ये पत्र है, लिखने वाले हैं प्रेमचंद ठाकुर, मीना ठाकुर, राज ठाकुर, मुरारी ठाकुर, ऋषि ठाकुर, सुभाष मिश्र, संजू मिश्र, भवानी लवकुश, अरुण झा और इनके परिवार के सभी सदस्य। किशनगढ़ अजमेर से ये पत्र है, लिखने वाले हैं शैलेश झा। नौगछिया मुमताज महल्ला से ये पत्र है, लिखने वाले हैं जफर अंसारी, अथर अंसारी, शौकत अंसारी और परिवार के सभी लोग। कहलगांव पूरब टोला वार्ड नंबर 15 पांडे गली से ये पत्र है, लिखने वाले हैं सुजीत रॉय, दीपांकर रॉय और तमाम रॉय परिवार। मोहल्ला सदरुद्दीन चौक से ये पत्र है, लिखने वाले हैं मोहम्मद शहजाद हाशिम, मोहम्मद हाशिम और परिवार के सभी सदस्य। सैलबाग भागलपुर से ये पत्र है, लिखने वाले हैं अभिजीत, अभिषेक, सोनू, मोनू, भाव्या, पारस, आदित्य, प्रीति और मोनी। दिल्ली शहर से ये पत्र है, लिखने वाले हैं हीना नाज और आदिबा और फातिमा नाज। सुल्तानगंज सीता रामपुर से ये पत्र है, लिखने वाले हैं प्रमोद पासवान, सुष्मिता सागर, दीपा करीना और सूरज। भट्टा बाजार पूर्णिया से ये पत्र है, लिखने वाले हैं लीनू निशु और उनके मम्मी पापा। कुनौनी बांका से ये पत्र है, लिखने वाले हैं डब्लू बब्लू, नीपू, चंदा और ललन। और ये पत्र आया है ग्राम कुड़रो से, लिखने वाले हैं पप्पू, लिपि, आपरा, वैष्णु और कौशिक। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी को अब आइए सुनते हैं फिल्म लैला मजनू में। गीतकार शाहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं मदन मोहन, और इस गीत की फरमाइश आई है असम से हितेंद्र दास। ये ईमेल से हमें अपनी फरमाइश भेजे हैं। गांव फरांसी जिला हिसार से ये ईमेल आया है। लिखने वाले हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। भागलपुर से ये अपनी फरमाइश लिख भेजी है ईमेल के माध्यम से। लिखने वाली हैं रिद्धिमा यदुवंशी। गांव जाखोद राजस्थान से ये ईमेल है। लिखने वाले हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदर लाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है। लिखने वाले हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश और मिथिलेश वर्मा। ये पत्र आया है लोथपली लेन मोहल्ला काजवाली चक से। लिखने वाले हैं फौजैल नसीम रोज, सोमेरा शहरीन, फैसल नसीम, शादान शिमरा, सिदरा जोया और अनम। नज़ीर मोमिन लेन से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं शब्बीर अहमद, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर और तारिक अनवर। भागलपुर भीखनपुर भट्टा रोड से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं योगेंद्र राय, विभा राय, विप्लव वैभव, यामिनी और यशा। मुंगेर से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं शिवम कुमार और इनके परिवार के सभी लोग। अलीबख्श लेन मोहल्ला नाथ नगर से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं हिवा फौजैल, दानियल उमर, मायरा उमर, उमर फारूक, मोहम्मद फौजैल और जुबैद अंसारी। और ये पत्र आया है मोहल्ला ततारपुर भागलपुर से। लिखने वाले हैं नवा कौसर, अरशान अहमद, जरीश अहमद, हाजिक अहमद, सुमरन, सफक, साजली, सुमी और सगुफ्ता। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर आइए सुने ये गीत।

और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बैजू बाबरा से, मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया है, गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार हैं नौशाद। और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आप श्रोताओं ने। बड़े खंजरपुर एकता रेडियो श्रोता संघ भागलपुर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं भाई गुलफराज आलम, बेगम शमारा, दोस्त जमालुद्दीन नेपाली और इनके परिवार के सभी सदस्य। धोरैया गंगदौरी से ये पत्र आया। लिखने वाले हैं रामविलास, रविकांत, नीरज, अमर, मारुति, सावित्री देवी, कावित्री, तनुजा और सांदेव हरी। मुंदीचक भागलपुर से ये पत्र आया। लिखने वाले हैं विशाल कुमार, ऋतिक रोशन और डोलू। बैजानी चौबे टोला से ये पत्र आया। लिखने वाले हैं वर्षा, वंदना, कन्हैया, मेघा, शालू, सानू, निहाल, साक्षी, कुक्कू, चीकू, पवन, कल्लू, मल्लू, सोनी, नीतू, मीतू, ईशु, अन्नू और आया। बूढ़ानाथ रोड भागलपुर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं गोपाल प्रसाद शाह और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम बात से ये पत्र है। लिखने वाले राजू, सुमन, हिमांशु, छोटी बाबू, कंचन, डब्लू, बबलू, फूचन और बब्बू। और दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से ये पत्र है। लिखने वाले हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद मिकरा नवाज। मुजाहिदपुर पुरबटोला भागलपुर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं मोहम्मद खालिद अंसारी, ताहिर अंसारी, नूरुल हुदा, जिसान अकरम और एम के नाज। धनौरी तेलावल उत्तराखंड से हमें ये ईमेल प्राप्त हुआ है। लिखने वाले हैं निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू। जैन मंदिर वाली गली से ये पत्र ईमेल हमें प्राप्त हुआ है। लिखने वाले हैं कविता अरोरा, नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से ये पत्र है। लिखने वाले हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जागेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। मेरठ कैंट से ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है। लिखने वाले हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है। लिखने वाले हैं ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू। और ये पत्र आया है छत्तीसगढ़ राज्य से। लिखने वाले हैं रामचंद मखीजा, सविता मखीजा, बेबी स्वाति मखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा, छुटकी शरद कुमार डोडवानी और पूरा मखीजा कुटुंब। तो आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर अब आइए सुनते हैं ये गीत।

अगर आप भी अपने पसंद के गीत इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख भेजें इस पते पर, कार्यक्रम पसंद आपकी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी आदमपुर भागलपुर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल के लिए हमारा ईमेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। तो हमें इस पते पर आपके फरमाइशी पत्रों का रहेगा इंतजार।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे पहले हिंदी में, फिर 11:05 पर अंग्रेजी में। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अम्बरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम

0: एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said, both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewelry, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice.